0: वैसे तो एक लक्षण कर दिया गया, श्रेष्ठा कृतिर या इति प्रकृति, जो श्रेष्ठ कृति है उसी का नाम क्या है? प्रकृति। और किसकी है? तो वो बोबरी समास कर देते तो माने जिसकी है, तो उसी परमात्मा की है श्रेष्ठ कृति। और वो जब नेत्र उसने दूसरा खोला तो उस प्रकृति के श्रृंगार को देख रहा, उसके सौंदर्य को देख रहा, लेकिन अन्यत्र भी कहीं दृष्टि उसकी गई। और फिर कहने लगे, फिर क्या हुआ आगे दो नेत्र खुलने के बाद? तो अन्य दूर निरस्त चाप मदनस्त क्रोधा नले दीपिते संवोर भिन्न रसम समान समय नेत्रत्रय पात व। ये संकेत, इसका मतलब क्या? अकार उकार मकार आदि को हम लेते, ओम को सबसे श्रेष्ठ माना गया, तो यहां पर भगवान के नेत्रों को भी अकार उकार मकार भी कहा, त्र्यंबकम को कहा। और वहां संकेत किया गया हृस्व दहत पापानी। जब ओम का हम केवल हृस्व रूप से उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? वो हमारे पापों को नष्ट कर देता। दीर्घ प्रणव उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, और दीर्घ प्रणव का उच्चारण करते हैं तो क्या होता? हमारे मनोराज्य को ही वो विजय कर लेता, माने हमारा मन अन्यत्र नहीं जाता, प्रकृति के श्रृंगार को दिखता। ये भगवान शंकर से संकेत किया। और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो जब ये स्थिति हो गई, ये सब साधन संपन्न स्थिति हो, ऐसी स्थिति होने पर ही फिर क्या है तीसरा जो ज्ञान नेत्र करके कहते, उस ज्ञान में क्या होता? कहा कामना ही भस्म, वहां कोई कामना शेष नहीं है। तो क्रोधा नले दीपिते, जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो वो जो काम जो था पहले ही उसने चाप आदि फेंक दिए और भागने लगा। देवता कहने लगे संगर संगर महाराज ठहरो ठहरो, लेकिन तब तक तो वो जल गए। अर्थात ऐसे आश्रय तत्व में सदा रहने वाले भगवान शिव हैं, और ऐसे आश्रय तत्व का ही जब हमें बोध होता है और संसार प्रकृति का कार्य का बोध होता है, तब हमारे अंदर ये निश्चय होने पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं को लेकर के, जैसे सुसुप्ति अवस्था में वहां कुछ भी नहीं रहता है लेकिन अविद्यादि है, लेकिन वो एक अवस्था विशेष है, और वहां पर जो स्थिति होती वो हमें अनुभव कराती है कि इससे आगे जो स्थिति है वो मात्र क्या है? वो अखंड है, और ये खंड से, तो उस अखंड का ही निश्चय हम जब खंडों में कर लेते हैं, और निश्चय जब खंडों में हो जाता है तो खंडों में रहते हुए भी वह खंड हमें दुखित, वह खंड हमें नूतनता प्रदान करते रहते हैं, और उन खंडों में भी फिर विद्या विनय ब्राह्मणे गव्यस्तिनी इत्यादि की स्थिति बनी रहती है। तो यहां संकेत ये है, हमारे भारतवर्ष की ये संस्कृति है, जैसे कार्तिक के बाद आप जो है क्या मानते हो? नववर्ष मानते हो कार्तिक को लेकर, उधर जो है चैत्र मास को लेकर के नवरत्र मानते हो। तो दोनों की जगह पर जब ऐसी चेतना आ जाती जो फल्गुता है व्यर्थता है उसको जब हमने जला दिया, फाल्गुन शब्द का तात्पर्य ये, और कार्तिक का मतलब है कृंत कतरणी अर्थ में धातु, अर्थात जहां पर जो अशुभ है, अर्थात जो दुखद है, जो हमारे रोग कारक है, जो वर्षा होती तो दुनिया की कीकरण पैदा हो जाती, लेकिन अब सफाई आदि करके दीपक आदि के माध्यम से जिनको हमने जला करके नष्ट कर दिया, तब क्या होगा? उनको जब काट दिया, उनका खत्म कर दिया, तब हमारे जीवन में वो आश्रय और सुंदर मार्ग आता है, और उस मार्ग में को लेकर के जब हम चलते हैं तभी हमारे जीवन में नूतनता, तभी हमारा खंड हमारा वर्ष नवीन होता है। इसलिए यहां से उसको संकेत किया, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जो विद्या आदि का कार्य है उस सारे के सारे कार्य का आश्रय क्या है, और जो विद्या का कार्य है उसका भी आश्रय क्या है। उस आश्रय का जब निश्चय हो जाता और उसका निश्चय हो करके और हम फिर व्यवहार करते हैं, तो चाहे जो व्यवहार हो लेकिन वहां पर भी हम देखते हुए नहीं देखते और न देखते हुए भी देखते, और ये स्थिति जब हो जाती है उसका मतलब क्या? सर्वत्र एक आत्म तत्व को हम देखते हैं, और जब ऐसा देख करके हम व्यवहार करते हैं खंड से करते हैं, तो उस खंड में भी नवीनता बनी रहती है। ऐसा तात्पर्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is spiritual discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Shvetashvatara Upanishad ke dusra adhyay ka satva mantra dekhna.

0: पूर्वियम् तत्र योनिम् प्रिणवसे नहि ते पूर्तमक्षिपात्। ये क्या बतला रहे हैं? सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा माने सविता देव, ये दोनों अर्थ है। सविता सूर्य को भी कहते हैं, सविता परमात्मा को भी कहते हैं। तो कहते सवित्रा, सविता परमात्मा, परमात्मा को खुश करने से क्या फायदा है, अनुज्ञा लेने से क्या फायदा है, ये पूछते हैं। और ना लेने से क्या नुकसान है? तो कहा ना लेने से नुकसान होगा, कर्म में आसक्ति होगी, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा। और लेने से क्या होगा? अंतकरण शुद्ध होगा, ज्ञान होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। है नहीं बात? ये बात इसमें होता रहे। सवित्रा माने सविता, ये सवित्रा है ना, ये तृतीयांत है, याद रखना। तो सवित्रा प्रसवेन, सविता देवता के प्रसन्नता से, प्रसव कहते हैं उत्पन्न करना, है नहीं बात? माया प्रसवितम जगत, जगत जो है संसार माया के द्वारा प्रसवित हुआ माने उत्पन्न हुआ। तो अन्न खेती, अन्न को प्रसव करते हैं, खेती होते ना, खेती खेत करते हैं ना, धान और मिलते, तो अन्न पैदा करते हैं। अन्नाद भवंती भूतानि, है ना? गीता में आया कि नहीं? इष्टान भोगाने बोधेवा दश्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ द्वारा प्रेरित होकर के तुम्हारे को क्या देगा? देवता लोग इष्ट भोग देगा। इष्टान भोगाने देवा दश्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर अप्रदाय, अनिवार्य उन देवताओं के दिए बिना यदि तुम अन्न खाते हो तो उसका नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? अंतकरण की अशुद्धि होती है, अंतकरण की अशुद्धि होती है। इसलिए देवताओं के भोग लगा करके खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, है नहीं बात? ये गीता में लिखा है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवित, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। ये मंत्र के द्वारा भोग लगाना चाहिए। वेद में मंत्र आता है, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष पुंशीष्णो दियो समवर्तत, पद्भ्याम भूमिर्दिश श्रोत्रात्र लोकान अकल्पयन्ना। ये इस मंत्र के द्वारा भोग लगाते, याद रखना। क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, परंतु ऐसा है ना, किसी व्यक्ति को आपके घर में कोई व्यक्ति आया, कोई महापुरुष आया, कोई अतिथि आया, तो उनको मीठी वाणी के, उनके वाणी के द्वारा स्वागत करेंगे, खुश होता है, है नहीं बात? होता है कि नहीं? तो यदि अपने ढंग से करेंगे तो आप खुश होंगे, समझे कि नहीं? इसीलिए कहना, देखो भगवान भाव भी देखते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना, विधि को प्रधान, विधि प्रधान होते हैं। कुछ कर्म ऐसा होता है ना, विधि प्रधान, वहां भाव नहीं दिखता है, विधि दिखता है। जैसा कर्मकांड जितना भी है, सब विधि के अनुसार। वो भक्ति करते हो, भाव प्रधान है, भक्ति करते हैं ना, वहां भाव प्रधान है। और कर्मकांड विधि प्रधान है, जैसा विधि करेंगे ना ऐसे फल मिलेगा। विधि निषेध है। आर्य समाज विधि ही है। वो हवन आदि कराते हैं हमेशा, आहुतियां देते हैं वैदिक, वो वेद को मानते ज्यादा, आपका वो भक्ति भक्ति नहीं मानते।
1: पौराणिक नहीं मानते
0: ना,
1: अपना यहाँ पौराणिक भी होता है ना स्वामी।
0: वो तो स्मार्त कर्म होता है, श्रोत कल के प्रसंग में बतलाया था ना, इष्ट अनिष्ट श्रोत स्मार्त कर्म है नी बात। इष्ट कर्म पूर्त कर्म, पूर्त कर्म पुराण पौराणिक है, इष्ट कर्म स्रोत है वैदिक है। तो इसी का भाष्य चला था, कहाँ तक हुआ आपको बतलाया है ना, ब्रह्म अन्य ईश्वर जीव नहीं, ईश्वर माया विशिष्ट चेतन का नाम ईश्वर है। माया में पड़ा हुआ जो शुद्ध ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है उसको ईश्वर कहते, और अविद्या में मौलिंदा सत्वगुण प्रधान जो प्रकृति है अविद्या है उसमें शुद्ध ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा है वो जीव बना है। तो जीव ईश्वर दोनों माया के कारण है। आप दोनों उपाधि को हटाए बिना तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा अभिद नहीं होता है। अभिद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपाधि हटाना पड़ेगा। तो उपाधि केवल एक का हटाने से अहम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं होगा, समझे कि नहीं, दोनों की उपाधि हटाना पड़ेगा। ईश्वर की उपाधि जो माया है और जीव की उपाधि जो अविद्या है, तो अविद्या का आवरण और माया का आवरण दोनों हटाना पड़ेगा। तो शुद्ध चेतन एक ही है, शुद्ध चेतन एक ही है। जैसे हमें पंचदशी में आपको बतलाया गया, स्वत चीज अंतर जामितु मायावी सूक्ष्म सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि स्वत चित, स्वतः जब रहेगा अविद्या अविद्या के कार्य से परे आता, माया माया के कार्य से जो परे रहेगा स्वतः, उनका नाम चीत है, उसको कहेंगे सदघन चितघन आनंद घन है आनी बात। ये सत रहेगा माया और माया के कार्य से, अथवा प्रकृति प्रकृति के कार्य से जो परे रहेगा, उस जो इसके यहाँ पूर्व बतलाया काल के प्रसंग में, पूर्वीयम ब्रह्म निष्ठा कराओ दूषित, पहले ब्रह्म के निष्ठा करो, पहले पहले पूर्व माने पहले किससे पहले, कल बताया था ख्याल नहीं है, पूर्व में जाओ पश्चिम को छोड़ो और पहले पश्चिम से शुरू करो। जैसे आपको कल बताया था ये गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल या गुलाब का फूल था आप गुलाब का फूल है, दोनों में अंतर क्या है, गुलाब का फूल था ये भूतकाल है, भूतकाल आनी बात। तो था जो भूतकाल है अभी नहीं है, परंतु गुलाब का फूल है ये वर्तमान में है, आप गुलाब का फूल देख रहे हो आनी बात। तो गुलाब का फूल देखने वाला कौन है, नेत्र है, तो नेत्र को पहले गुलाब के फूल से पहले रहना चाहिए कि नहीं, नहीं रहना चाहिए। अच्छा नेत्र है तो फूल से पहले नेत्र है, और नेत्र से पहले कौन है, अरे मन है कि नहीं, मन नहीं है, मन है हाँ? क्या हाँ, मन से पहले कौन है, बुद्धि है, बुद्धि से पहले अहंकार है, अहंकार से पहले महातत्व है, महातत्व बुद्धि तो एक ही है समझ लेना, समस्ती बैठे महातत्व से परे अहंकार है, अहंकार से परे प्रकृति, प्रकृति हाँ, तो प्रधान उसको प्रधान कह दे प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से सोलह गण। आप यहां से आप ऊपर से नीचे आओ, तो ऊपर से नीचे आने के लिए पहले कहां जाने का वाला, वो प्रकृति जिसके आश्रम में रहते, माया। माया ऐसा है ना, विशुद्ध सत्य प्रधान जो, विशुद्ध सत्य गुण प्रधान जो प्रकृति है ना, उसको माया कहते हैं। पर अविद्या भी उसी का ही, प्रकृति का ही एक अंश है। उसमें मलिन सत्यगुण प्रधान, मलिन सत्यगुण प्रधान जो प्रकृति है ना, उसको अविद्या कहते हैं। बात माया अविद्या विहाय एवं, माया अविद्या दोनों को छोड़ करके, त्याग करके शुद्ध ब्रह्म को जानो। तो माया और अविद्या दोनों क्या है, उपाधि है। और शुद्ध ब्रह्म कैसा है, निरुपाधिक है, उपाधि रहित। आवरण तो उपाधि से आएगा ना, जैसे पर्दा डाला आपने, पर्दा ने क्या किया, आवरण आच्छादन किया, तो उपाधि तो आवरण हुआ कि नहीं, क्या आच्छादन किया, भीतर वाला को बाहर देखने नहीं देता, बाहर वाला को भीतर नहीं देखता। जैसे स्टेज बनाते ना, कल बनाएंगे ना आप यहाँ, कल बनाएंगे ना साक लीला में, तो जो बढ़िया भैया सब मिठाई बैठे अंदर ढक देंगे कि नहीं ढक देंगे, सब पन्नों को ढक देंगे, तो बाहर वाला ऐसा देखते रहा क्या क्या सजाया, क्या क्या सजा, बाहर वाला देखेगा कि नहीं, दिखता रहेगा, जरा सा पर्दा हटा ऐसे देखेगा। तो पर्दा जब डालते हैं ना, पर्दा वाणी आवरण, तो आवरण क्या करते हैं, बीच में रुकावट पैदा करते हैं, तो बाहर वाला भीतर वाला को नहीं देखता, पर्दा के भीतर जो रहता है, और पर्दा के भीतर जो रहने वाला बाहर वाला को नहीं देखता है। तो दोनों का जो एक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे हमारे भीतर एक आवरण पड़ा है अविद्या का, उस अविद्या के आवरण ने कुटस्थ और जीव दोनों को अलग कर दिया। कुटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्रचित प्रतिबिंबक प्राणानाम धारण जीवा संसार न सयुज्यते, कुटस्थ आत्मा है हाँ, कुटस्थ में कल्पित जो बुद्धि है, बुद्धि में पड़ा हुआ जो चेतन का आभास है, उस आभास का नाम जीव। तो बीच में बुद्धि आ गई, बुद्धि का आवरण आ गया, तो आवरण ने क्या कर दिया, बाधित करे, आवरण ने ढक दिया, क्या ढक दिया, कुटस्थ को। तो वह पंचदशी में इसको समझाने के लिए कुटस्थ आनी बात, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश, एक ही आकाश को चार भाग किया है। पहला कारण महाकाश, महाकाश के बाद जलाकाश आता है, नहीं मेघाकाश, मेघाकाश के नीचे कुटस्थ हाँ, घटाकाश, घटाकाश के बाद जलाकाश, ये चार आकाश है। तो और आकाश महाकाश के जगह में ब्रह्म समझ लेना, मेघाकाश के जगह में ईश्वर समझ लेना, और घटाकाश के जगह में कुटस्थ समझ लेना, जलाकाश के जगह में जीव समझ लेना, है बात। ये चार चेतन हो गया, जीव चेतन, कुटस्थ चेतन और ईश्वर चेतन और ब्रह्म चेतन।

कूटस्थ चेतन को ढक दिया। जैसे घटाकाश को जल ने ढक दिया ना, ऐसे कूटस्थ आत्मा को जीव चेतन ने ढक दिया। तो ढकने से क्या हुआ, जैसे वो जलाकाश में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है बाहर का, वो भीतर के जो आकाश है वो देखने में नहीं आता, ऐसे कुटस्थ जो आत्मा है, कुटस्थ आत्मा को जीवात्मा ने ढक दिया। कैसे ढक दिया? हाँ, जल रूपी उपाधि से, जलाकाश। अब ढकने के बाद में ये जीव चेतन अपने को शरीर मान करके अथवा कर्ता भोक्ता मान करके सुखी दुखी हो रहा है। बात समझ में आई ना? जलाकाश रूपी जो जीव चेतन है, ये जीव चेतन ने क्या कर दिया, अपने स्वरूप को अज्ञान के कारण, आवरण के कारण, अविद्या के कारण ढक दिया। तो ढक देने से अपने स्वरूप को जानता नहीं, मैं जो कुटस्थ स्वरूप हूं इस बात को नहीं जानता, न जान करके अपने को अज्ञान के कारण अपने को शरीर मान रहा है, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी मान रहा है। ये अब कहते साहब, ये तुम आपने को मान्यता दे रखा है मैं शरीर हूं देह हूं, तो इसका हटा दो। तो कैसे हटाएंगे? तो अविद्या हटेगा। हाँ, सदा विचार है तस्मात, हमेशा विचार करो, विचार के द्वारा। क्या विचार करे? जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, जीव जगत और परमात्मा, ये तीनों का विचार करो। तो विचार करते करते करते करते जीव भाव और जगत भाव बाधित हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे, बिना विचार से नहीं होता, क्योंकि शास्त्रकार कहते न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधने। तुम कर्म करो, उपासना करो, ध्यान करो, धारणा करो, सब कुछ करो, परंतु ज्ञान होने वाला नहीं है। अब तुम एमए पास करने के लिए तुमको तो ना धूप दीप ध्यान करके उपासना करके बैठ जाओ तो होगा? एमए पास करोगे? क्यों? भगवान के नाम लेने से एमए पास हो जाता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण करते रहो, राम राम राम राम राम राम करो, दिन भर करते रहो, एमए पास हो जाओगे? एमए पास करने के लिए करना क्या पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, ए बी सी डी से शुरू करके तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक ए बी सी डी पढ़ोगे नहीं तो आगे सी ए टी कैट आर ए टी रेट फैटी फैट कैसे करोगे? पहले ए बी सी डी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो ऐसे ए बी सी डी पढ़ करके आगे बढ़ो, आ का खा पढ़ करके आगे बढ़ो, तब आगे बढ़ोगे। तो जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे वो तब तक तो एमए का सर्टिफिकेट ले नहीं सकते हो, है नहीं बात? ऐसे नौत पद्धति बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधन। जब तक तुम वेदांत वाक्यों का विचार नहीं करोगे, वेदांतार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, वेदांत के अर्थ का जब विचार करोगे तो उत्तम ज्ञान होगा। और कोई साधन तुम्हारे पास है नहीं, कर्म ज्ञान नहीं देता है, कर्म क्रिया प्रधान है, समझे नहीं? क्रिया करो, क्रिया करो, करो। चित्त से शुद्ध कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, भाष्य का शंकराचार्य महाराज जी ने विवेक चूड़ामणि में बतला दिया। चित्त से शुद्ध कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारे न, वस्तु की सिद्धि विचार से ही होगा। तो तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का विचार करो, वेदांत वाक्यों का विचार करो, वेदांत वाक्यों का विचार किए बिना ज्ञान होने वाला नहीं है। हाँ, वेदांतार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, उत्तम ज्ञान होगा। ये तो ज्ञान है, संसार के खाने पीने का भी ज्ञान है, लेन देन का भी ज्ञान है, सोने जागने का भी ज्ञान है, ज्ञान तो है, परंतु ये ज्ञान तुमको संसार के बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। अनिवार्य ज्ञान तो सब सभी जीवों में है। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको खाने पीने का ज्ञान नहीं है? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको सोने

0: करने का ज्ञान नहीं है। ऐसा कौन सा जीव है शत्रु मित्र का ज्ञान नहीं है। देखो चींटियों में लड़ाई होती है, पशुओं में लड़ाई होती है, पक्षियों में लड़ाई होती है कि नहीं होती है? क्यों, वो भी दुश्मन समझते हैं कि नहीं? अरे इसका तो जानना चाहिए। डिस्कवरी टीवी देखो, टीवी में डिस्कवरी आता है एक, और फॉक्स आता है, फॉक्स हिस्टोरिकल, उस जियोग्राफिकल, उसको देखो। फिर संसार में जो ईश्वर की सृष्टि के विषय में आपको ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। गजब की अनुसंधान किया करते हैं इन लोग, जलीय जंतुओं का, जल के अंदर रहने वाला कैसे भयंकर भयंकर जीव है, पर्वत में रहने वाला, गुफा में रहने वाला, बिल के अंदर रहने वाला, प्राणियों के विषय में ज्ञान करना, प्राप्त करना है। हम तो कल सुनते हैं 84 लाख दुनिया, कितना दुनिया है 84 लाख दुनिया, तो आप कितना दुनिया को जानते हैं? बोला हम अपने को नहीं जानते, 84 लाख अभी 84 लाख होने के विषय में जानना। ये टीवी का देखो खोज किया है उसने, खोज करता, नया नया खोज करता, इन लोगों के इतने साहस है। अभी उसमें आदमखोर मच्छी के अंदर घुस गया, मच्छी ने निकल दिया एक आदमी को भयंकर।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

नमः वर्ष्याय नमः वर्षरूपाय नमः कुमाराय नमः कुशलाय नमः अमलाय नमः मेघ्याय नमः अवर्ष्याय नमः।

धनाधिपाय नमः, यजुर्मूर्तये नमः, साममूर्तये नमः, ऋङ्मूर्तये नमः, मूर्तिवर्जिताय नमः, व्यक्ताय नमः, व्यक्ततमाय नमः।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Ittham Sheetam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगम वारी मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् नमः शिवाय सोमाय सगुणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंतहेतवे शक्तिरप्रतिमायस्य ह्यैश्वर्यञ्चापि सर्वगम् स्वामित्वं च विभुत्वं च ஸ்வபாவம் சம்ப்ரசக்ஷதே தமஜம் விஸ்வகர்மாணம் சாஸ்வதம் சிவமவ்யயம் மகாதேவம் மகாத்மானம் வ்ரஜாமி சரணம் சிவம். ஸ்ரீமத் க்ஷீரதரங்கிணி தடகதே புண்யே விரிஞ்சே புரே நித்யம் சந்நிஹிதம் கிலாகலயிதும் க்ஷீராபிஷேகாதரம் ஸ்ரீகாருத்மத வல்லிகா சஹசரம் மார்கே சஹாயம் நிருணாம் ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய த்விதீய ஸ்லோக. ஸ்லோகேஸ்மின் பித்ரோ தாரித்ர்யவசாத் பேயக்ஷீராலாபரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானஸ்ய வியாக்ரபாதசூனோ உபமன்யோ ஆர்த்திஹந்தாரம் ததிஷ்டப்ரதம் பகவந்தம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. க்ஷீரம் ஸ்வாது நிபீய மாதுல கிரஹே கத்வா ஸ்வகீயம் கிரஹம் க்ஷீராலாப வசேன கிண்ண மனசே கோரம் தபஹ குர்வதே காருண்யாதுபமன்யவே நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ய பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி ஸ்வாது க்ஷீரம் மாதுலகிருகே நிபீய ஸ்வகீயம் கிருஹம் கத்வா க்ஷீராலாப வசேன கிண்ண மனசே கோரம் தப குர்வதே உபமன்யவே யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. ஸ்லோகேஸ்மின் பிரயுக்தஹ ஏகைகோபி சப்தஹ ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயயோஹ கதிபய ஸ்லோகானாம் சாரஹ. ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயாப்யாம் பிரதிபாதிதம் உபமன்யு அனுக்ரஹ வ்ருத்தாந்தம் சங்க்ருஹந்தி கோரம் தபஹ குர்வதே கிண்ண மனசே உபமன்யவே யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. கோரம் துஷ்கரம் தபஹ குர்வதே தபஹ அனுதிஷ்டதே கிண்ண மனசே கிண்ணம் சோகாக்ரஸ்தம் மனஹ யஸ்ய தஸ்மை உபமன்யவே வியாக்ரபாத சூனவே தௌம்யாக்ரஜஸ்ய ச பகவத்யவஹித மனசே இதி யாவத் யஹ இதி வாக்யசேஷஹ. காருண்யாத் தத்துஹ்க பிரஹாணேச்சாதஹ நிரவதிம் நிஸ்ஸீமானம் க்ஷீராம்புதிம் க்ஷீரசமுத்ரம் தத்தவான் சஹ பூதபாவனஹ ஆர்த்தத்ராணபராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி. தத்ர உபமன்யோஹ மனஃகேதே ஹேதுமாஹுஹ. ஸ்வாது க்ஷீரம் மாதுல க்ருஹே நிபீய ஸ்வகீயம் க்ருஹம் கத்வா க்ஷீராலாபவசேன இதி. ஸ்வாது ரசனேந்திரியேஷ்டம் க்ஷீரம் கவ்யம் பயஹ मातुलगृहे इत्यनेन मातुर्जन्मगृहे इत्यर्थः। निपीय आस्वाद्य स्वकीयं गृहं गत्वा इत्यनेन स्वपितुर्गेहमेत्य इत्यर्थः। क्षीरालाभवशेन क्षीरस्य अहरः पेयस्य पयसः अलाभः अप्राप्तिः तस्य वशः अभिभवः क्षीरालाभवशः तेन इति एवं वर्तते कथा। अस्ति शिवं नाम शिवमधिकृत्य प्रवृत्तं चतुर्विंशतिसहस्र ग्रन्थसङ्ख्याकं चतुर्थं पुराणं यथोक्तं तदन्तर्गतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परं आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः। तत्र शैवं तुरीयं यत् शार्वं सर्वार्थसाधकम् इति तस्य भेदाः एव मुक्ताः। यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसम्मितं तस्य भेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधत इति व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितं विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी कथिता चोमा षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इति। वायवीयसंहितायाः भेदः पुनरुच्यते। चतुस्साहस्रकं यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भागद्वयसमन्वितम् इति। अत्र सप्तम्यां वायवीयसंहितायां भगवता वायुना नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः परमेश्वरस्य कथाः निवेदिताः। पुरा हि शौनकादयः महर्षयः शिवतत्त्वं ज्ञातुकामाः ब्रह्माण्डं प्रपेदिरे। स च तान् महर्षीन् सहस्रवर्षपर्यन्तं क्रतुं कञ्चित् अनुतिष्ठितमादिदेश। तत्समाप्तौ पितामहनिदेशात् वायुभगवान् तत्र आविर्भूय शिवतत्त्वं तान् ऋषीनुपदिश्य तानजग्राह। शिवात् वायोः उत्तमत्वकथनेन यस्य विषराजाशिनः परमेश्वरस्य अपकर्षः मध्वाचार्यैः श्रीमद्भागवतवचनविरुद्धं कृतः तस्य भगवतो विषकण्ठस्य स्तुतिः प्रथमे श्लोके कृता श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। शिवभक्तवर्येण भगवता वायुना यस्य गुणकथाः शिवपुराणे वर्णिताः तस्य श्रीपार्वतीपतेः स्तुतिं विधातुमेवायं द्वितीयश्लोकः निबद्धः इति प्रतीयते। तत्र उपमन्युवृत्तान्तजिज्ञासुभिः महर्षिभिः वायुदेवं प्रति कृतः प्रश्नः। धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थं हि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना इति। तान् प्रति वायुदेवकृतम् उत्तरं कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमं पीत्वा स्थितं यथा कामं दृष्ट्वा वै मातुलात्मजम् इति। पुनरुच्यते तत्रैव उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् इति। क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसः उपमन्योः प्रवृत्तिमाह। मातर्मातर्महाभागे मम देहि तपस्विनि गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहम् इति। पुनरुच्यते भगवान् वायुः तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनि व्याघ्रपादस्य महिषी दुःखमापत्तदा च सा उपलाल्यात सुप्रीत्या पुत्रमालिङ्ग्य सादरं दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः क्षीरम् उपमन्युः स बालकः देहि देहीति तामाह रुदन्भूयो महाद्युतिः। तद्धटं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्धटस्याथ शुभोपायमरीरचत् ಉಂಛವೃತ್ಯಾರ್ಜಿತಾನ್ ಬೀಜಾನ್ ಸ್ವಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಸಾ ತದಾ ಬೀಜಪಿಷ್ಟಮಥಾಲೋಡ್ಯ ತೋಯೇನ ಕಲಭಾಷಿಣಿ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಮಮ ಪುತ್ರೇತಿ ಸಮಪೂರ್ವಂ ತತಸ್ವತಂ ಆಲಿಂಗ್ಯಾದಾಯ ದುಃಖಾರ್ತಾ ಪ್ರದದೌ ಕೃತ್ರಿಮಂ ಪಯಃ ಪೀತ್ವಾ ಚ ಕೃತ್ರಿಮಂ ಕ್ಷೀರಂ ಮಾತ್ರಾ ದತ್ತಂ ಸ ಬಾಲಕಃ ನೈತತ್ ಕ್ಷೀರಮಿತಿ ಪ್ರಾಹ ಮಾತರಂ ಚಾತಿ ವಿಹ್ವಲಃ ದುಃಖಿತಾ ಸಾ ತದಾ ಪ್ರಾಹ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾಘ್ರಾಯ ಮೂರ್ಧನಿ ಸಮ್ಮಾರ್ಜ್ಯ ನೇತ್ರೇ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕಮಲಾಯತೆ ಇತಿ. ಜನನ್ಯುವಾಚ ತ್ವಂ ಮಾತುಲ ಗೃಹೇ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಪೀತ್ವಾ ಸ್ವಾದುಪಯಶ್ರಿತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ್ವಾದು ತ್ವಯಾಪೀತಂ ತಜ್ಜಾತೀಯಮನುಸ್ಮರನ್ ದತ್ತಂ ನ ಪಯ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ರುದನ್ ದುಃಖೀಕರೋಷಿ ಮಾಂ ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿನಾಶಂ ಭೋಃ ಪಯಸ್ತವ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಪಾದಪಂಕಜಯೋಸ್ತಸ್ಯ ಸಾಂಬಸ್ಯ ಸಗಣಸ್ಯ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಯತ್ತತ್ ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಅಧುನಾ ವಸುದೋಸ್ಮಾಭಿಃ ಮಹಾದೇವೋ ನ ಪೂಜಿತಃ ಸಕಾಮಾನಾಂ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಯಥೋಕ್ತ ಫಲದಾಯಕಃ ಧನಾನ್ಯುದ್ದಿಶ್ಯ ನಾಸ್ಮಾಭಿಃ ಇತಃ ಪ್ರಾಗರ್ಚಿತ ಶಿವಃ ಅತೋ ದರಿದ್ರಾಸ್ ಸಂಜಾತಾಃ ವಯಂ ತಸ್ಮಾನ್ ನತೇಪಯಃ ಇತಿ. ಅನೇನ ಯೋ ಭಕ್ತಃ ಯೇನ ಭಾವೇನ ಭಗವಂತಂ ಆರಾಧಯತಿ ತಥೈವ ಸ ಭಗವಾನ್ ಅನುಗೃಹಾತಿ ತಂ ಭಕ್ತಂ ಇತಿ ಸೂಚಿತಂ. ಅಥ ತತ್ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಹೇತುಭೂತ ದುರಿತಶಮನಾರ್ಥಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಭಗವಂತಮೇವ ಉಪಾಸಿತುಂ ತನ್ ಮಾತಾ ತಂ ಶಶಂಸೇತ್ಯಾಹ ವಿಲಂಬಂ ಮಾ ಕೃಥಾಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಭಜಸಾಂಬಂ ಸದಾಶಿವಂ ತಸ್ಯ ದೇವಾಧಿದೇವಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ವರದಾಯಿನಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ ನಮಃಶಿವಾಯೇತಿ ಮಂತ್ರೋಯಂ ವಾಚಕ ಸ್ಮೃತಃ ಪ್ರಬಲಶ್ಚ ತಥಾ ಹ್ಯೇಷಃ ಮಂತ್ರಃ ಮಂತ್ರಾಂತರಾದಪಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕ್ಷಮೋಪ್ಯೇಷಃ ನಾಪರಃ ಕಶ್ಚಿದಿಷ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಮಂತ್ರಾಂತರಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರೋಭವ ತಸ್ಮಿನ್ ಜಿಹ್ವಾಂತರಗತೆ ನ ಕಿಂಚಿದಿಹ ದುರ್ಲಭಂ ಇತಿ. ಮಾತುರ್ಗಿರಮಾಕರ್ಣಯತಃ ಉಪಮನ್ಯೋಃ ಅಗ್ರಿಮಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾಃ ಏವಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಮಾದಿಶ್ಯ ಶಿವಮಸ್ತ್ವಿತ್ಯುದೀರ್ಯ ಚ ವಿಸೃಷ್ಟಸ್ತದ್ವಚೋ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕುರ್ವನ್ನೇವ ತದಾ ಮುನಿಃ ತಾಂ ಪ್ರಣಮ್ಯೈವ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಚ ತಪಃ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮೆ ತಮಾಹ ಚ ತದಾ ಮಾತಾ ಶುಭಂ ಕುರ್ವಂತು ತೇ ಸುರಾಃ ಅನುಜ್ಞಾತಸ್ತಯಾ ತತ್ರ ತಪಸ್ತೇಪೇ ಸ ದುಶ್ಚರಂ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಾಯುಭಕ್ಷಃ ಸಮಾಹಿತಃ ತಪಸಾ ತಸ್ಯ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ಚೋಪಮನ್ಯೋರ್ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಚರಾಚರಂ ಚ ಮುನಯಃ ಪ್ರದೀಪಿತಮಭೂತ್ ಜಗತ್ ಇತಿ. ಏವಂ ಉಗ್ರೇ ತಪಸಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಉಪಮನ್ಯೋಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಶಿವಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಯ ವಾಂಛಿತಾದಪ್ಯಧಿಕಂ ಫಲಂ ದದೌ ಇತ್ಯಾಹ. ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸಹಸ್ರಂ ಚ ಪೀಯೂಷಾರ್ಣವಮೇವ ವಾ ದಧ್ಯಾದೇರರ್ಣವಾಂಶ್ಚೈವ ಘೃತೋದಾರ್ಣವಮೇವ ಚ ಫಲಾರ್ಣವಂ ಚ ಬಾಲಸ್ಯ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾರ್ಣವಂ ತಥಾ ಅಪೂಪಾನಾಂ ಗಿರಿಂ ಚೈವ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಸಪ್ರಭುಃ ಇತಿ. ಪುನರುಚ್ಯತೆ ಅತ್ರೈವ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿರಪಿ ಸಾಕಾರಃ ಕ್ಷೀರಂ ಸ್ವಾದು ಕರೇ ದಧತ್ ಉಪಸ್ಥಾಯ ದದೌ ಪಿಂಡೀಭೂತಂ ಕ್ಷೀರಮನಶ್ವರಂ ಯೋಗೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸದಾ ತುಷ್ಟಿಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮನಶ್ವರಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ತಸ್ಮೈ ದದೌ ಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ಇತಿ. ಅಥ ಉಪಮನ್ಯುಃ ನಿಶ್ಚಂಚಲಾಂ ಶಿವಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ ಭಗವಂತಂ ಇತ್ಯಾಹ. ಪ್ರಸೀದ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಭಕ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಪರಮಾಂ ದಿವ್ಯಾಮವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ದೇಹಿ ಮಹಾದೇವ ತ್ವತ್ಸಂಬಂಧಿಷು ಮೇ ತದಾ ಸ್ವದಾಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಸ್ನೇಹಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಚೈವ ಸರ್ವದಾ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಹರ್ಷಗದ್ಗದಯಾಗಿರ ಸತುಷ್ಟಾವ ಮಹಾದೇವಂ ಉಪಮನ್ಯುರ್ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ಸಾಂಬಶಂಕರ ಸರ್ವದಾ ಇತಿ. ಅಥ ಭಗವಾನ್ ಏತದಪ್ಯನುಗೃಹ್ಯ ಅಂತರ್ದಧೆ. ಅನೇನ ಕಥೇಯಂ ಸಮಾಪ್ತ ಅನೇನ ಚ ಭಾಷಣಮಿದಂ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.
3: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಶೈವಂ ಡಾಟ್ ಆರ್ಗ್ ರೇಡಿಯೋ ದಿ 24/7 ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಶೈವಂ ಡಾಟ್ ಆರ್ಗ್.
4: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम ओम। आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है।
4: विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी

तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत स्वप्ने जाग्रति वा यये सपुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।

दक्षिणामूर्ति का प्रसंग चल रहा है। भगवान की जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के चलते बड़े से बड़े विचारक और विद्वान भी व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं। परिणाम ये होता है कि जो वस्तु जैसा है पारमार्थिक, उसको उसी रूप में अनुभव नहीं कर सकते। व्यामोह, माया का व्यामोह है ये। अन्यथा अन्यथा निश्चय करते हैं और यही कहते हैं कि यही मेरा सिद्धांत सत्य है, यथार्थ है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भ्रांत पुरुष यदि कोई कह दे कि ये बात सही है, तो समझदार पुरुष को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं। भ्रांत पुरुष कोई कह दे कि ये बात सही है, तो समझदार पुरुष को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं, नहीं कहना चाहिए। मदिरा के नशे में धुत हुआ हुआ व्यक्ति यदि कोई कह दे कि ये बात है, तो नशा रहित व्यक्ति, होश वाला व्यक्ति को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बोले सभी नशे वाले हैं और सभी यही बात करेंगे तो फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई, कोई ना कोई तो एक होश वाला होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जगत में सभी नशे वाले हैं। यदि सभी नशे वाले हैं तो ये सब नशे वाले हैं, कहने वाला कौन होगा? हैं? सभी नशे वाले हैं तो फिर ये नशे वाले हैं, ये बात कहने वाला कौन होगा? एक तो होश वाला होना चाहिए कि नहीं? हाँ, सबके सब माया के व्यामोह में पड़कर अन्यथा अन्यथा करके, निश्चय करके वाद विवाद कर रहे हों, तो उन वाद विवाद के बीच में कोई निर्विवाद यथार्थ सत्य को बताने वाला सामने आना चाहिए। और जब सामने वाला आता है और कह देता है कि ये वस्तु तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ये सही है, तब वो बात उन नशे वाले को भी स्वीकार करनी पड़ेगी, तब जब उनके नशा उतर जाता है। तो यही है, सबसे पहले नशा उतारना पड़ेगा। सही बात समझाने के लिए भी होश वाले व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, होश वाले व्यक्ति को, नशेड़ियों को सही बात समझाने के लिए भी सबसे पहले उनका नशा उतारना पड़ेगा, तभी उसको सही बात समझाया जा सकेगा। नहीं तो होश वाला व्यक्ति लाख कोशिश करे, नशा उतारे बिना सही बात समझाने के लिए वो सफल नहीं होगा। तो कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी, नहीं जवाहरलाल नेहरू जी पहले बार रांची गए, कहते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद। देखें तो सही, रांची में उस जेल में रहने वालों का हाल क्या है। रांची में तो पहले तो एक ही हॉस्पिटल था, है ना, रांची में मेंटली हॉस्पिटल, पागलों का हॉस्पिटल था वो, पागल खाना। तो वो उसका निरीक्षण करने के लिए चले गए, कहते जब वो अंदर घुसे तो सब पागल लोग हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। किस लिए हंसने लगे तो पूछा, तो बोले एक और पागल आ गया। तो पागलों के समाज में समझदार भी पागल ही होता है, है? इसलिए नशेड़ियों के समाज में होश वाला व्यक्ति भी नशेड़ी ही होता है। तो उनकी बात होश वाले व्यक्ति को अपनी बात समझानी हो तो उनके नशा को उतारे बिना समझाने लगे तो लाख कोशिश करे नहीं समझा पाएगा। तो सबसे पहले उनको उसके नशे को उतारना होगा, तब फिर उसको अपनी बात समझानी होगी। और नशे के उतर जाने के बाद हर व्यक्ति बात समझ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नशे उतर जाने के बाद न समझाओ, समझ जाता है। ये प्रसंग ठीक लगभग इसी प्रकार का है।
ये जो छठा श्लोक है आज की जो व्याख्या श्लोक है छठा, राहो ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादना सन्मात्र करुणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इससे पहले ये बात पांचवें श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी ने ये कह दिया है, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह, उस व्यामोह के चलते सभी लोग अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, अन्यथा होता हुआ आत्मा को अन्यथा ही मानता है, सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा को असत जड़ दुख रूप और द्वैत रूप मानने लग जाता है। इसका कारण क्या है? माया शक्ति विलास कल्पित महासम्मोह, इसी के चलते ऐसा हो रहा है। तो उस समझदार गुरु जो दक्षिणामूर्ति गुरु मूर्ति हैं, शिव हैं या गुरु हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सही बात को समझाने के लिए उसकी नशे को उतारते हैं, व्यामोह संहारिणी। भगवान शिव की कृपा हो तब ये अनादि व्यामोह, अनादि व्यामोह उसका संहार होगा, ये जड़ से ये नशा उतरेगा। भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तब जाकर जड़ से ये नशा उतरेगा। गुरु नानक कहते हैं कि दो प्रकार के नशे हैं जगत में, गांजा भांग अफीम मद, गांजा भंग अफीम मद उतर जात प्रभात। ये जो चार नशे हैं ये तो शाम को सेवन करो सुबह उतर जाता है, लेकिन एक नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ा तो फिर कभी नहीं उतरता। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो तो न रात में उतरता है न दिन में उतरता है, एक बार चढ़ना है, बार बार चढ़ना भी नहीं है, एक ही बार चढ़ना है। और ये और जो चार नशे हैं तो बार बार सेवन करो बार बार उतरता है, बार बार सेवन करो बार बार उतरता है। इसी प्रकार के ये माया मोह रूपी जो नशा है वो एक बार चढ़ा था जीव को, पता नहीं कब चढ़ा था, ये तो न जीव को पता है न शिव को पता है, पता नहीं कब चढ़ा था, एक बार चढ़ा था बस, अनादि सृष्टि है। शिव को जीव मानने की जो मान्यता है वो भी अनादि है। आपने अपने को जीव कब से मानना शुरू किया है? आपने अपने को जीव कब से मानना शुरू किया? अनादि है, इसलिए अनादि मोह माया है। ये ऐसा चढ़ गया है कि ये अपने आप उतरने वाला नहीं है, चढ़ तो अपने आप गया है लेकिन उतरेगा नहीं अपने आप, कोई उतारने वाला होना चाहिए, इस नशे को उतारने वाला कोई होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया गीता में, दैवी है सा मम माया दुरत्या गुणमयी, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये अपने आप छोड़कर जाने वाली नहीं है, इसको तो तुम चाहो कि मैं छोड़ू तो भी नहीं छूटने वाली है। होता है ना, आप लोग शादी करते हो तो कभी कोई गलत स्त्री के साथ विवाह हो गया, उसके साथ जीवन व्यतीत करना दुभर हो गया, कठिन होने लगा, तो बाबा चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, छूट जाए, तलाक हो जाए,
लेकिन कानून यह है कि एक तरफ से होता नहीं है, दो तरफ से होनी चाहिए। तो अभी तो शायद कानून में कुछ सहूलियत कर दिया, ऐसा कुछ दिन पहले के पेपर में था। तो यदि सामने वाले भी राजी न भी हो तो पेपर सबमिट होने के बाद उसको लंबाया जा नहीं सकता, एक तरफी फैसला करके भी डिवोर्स हो सकता है, ऐसा कुछ संशोधन कर रहे हैं, ऐसा सुना है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, या अन्यथा नहीं लेना माताओं, फिर आप लोग ऐसा नहीं लेना, क्योंकि यहां माया का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए मैं माया के बारे में कह रहा हूं। तो आप भी पुरुष हैं, है? इसके सामने, माया के सामने तो आप भी पुरुष हैं, और वो माया आपकी स्त्री है, और क्योंकि वो आपसे चिपक गई है, आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो मानती नहीं है, है ना? आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो मानती नहीं है, आप चाहते हैं कि छूट के चला जाए, ये इसके साथ मेरा जीना दुभर हो रहा है, कठिन हो रहा है। माताओं, आप लोगों का ऐसा हो रहा है कि नहीं, बोलो, है? उसके साथ शादी करके पश्चाताप हो रहा है कि नहीं? न जाने कब शादी किया था, किया, वो मरती भी नहीं है, है? न वो मरती है न छोड़ती है, मर जाए तो भी झंझट छूटे। नरसिंह मेहता ने कहा इस तरह, प्रसन्न हो गए वो, भलो थयो भागी जंजाल, मर गई तो अच्छा हुआ। और ये स्त्री ऐसी जबरी है कि न मरती है न छोड़ कर जाती है, अब क्या करोगे भाई? तो हैरान पड़, तब फिर एक ही उपाय है, भगवान ने कहा ये तुझे अपने आप छोड़ के भी नहीं जाएगी, और तू यदि उसको धक्का मारकर निकालना चाहेगा तो नहीं जाएगी। फिर महाराज इससे कैसे छुटकारा होगा? तो गीता में कह दिया है, दैवी है सा मम माया गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मेरे शरण में यदि तू आ जाएगा तब फिर मेरे इशारा से ये छोड़ देगी, क्योंकि ये जो माया है मेरी माया है, माया मेरी है, तूने न जाने कब भोगने के लिए अपना अपना लिया था, हमने कहा कि तू अपना रहा है इसके द्वारा सुखी होता है तो हो ले, है? तूने पहले विचार नहीं किया कि इसको अपना से पहले ये किसकी है, हम भी यही करते हैं, उसको अपनाने से पहले विचार नहीं किया कि ये किसकी है, उसी समय विचार किया होता तो आज ये पश्चाताप न होता, सुखदेव को नहीं हुआ, उन्होंने विचार किया किसकी है, है? उन्होंने कहा कि तो परमात्मा की है, परमात्मा की है तो फिर मैं कैसे इसका भोगूं, इसको मैं कैसे अपना सकता हूं, दूसरे की चीज मैं यदि जबरदस्ती इसको अपनाऊंगा तो मुझे दुख होगा, अशांति होगी। तो सुखदेव जी ने कहा कि जिसकी है उसी के पास रहे, हमारे पास ना आवे यही अच्छा है, हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं मिला उसको, नहीं मिला तो सुखी हो गए, वो हुए कि नहीं, सुखदेव सुखी हुए है? और हमें पता नहीं कहां से हमारी मति मारी गई थी, किस दिन हमारी मति मारी गई, कैसे मारी गई, ये भी हमको पता नहीं है, किस दिन मारी गई ये भी हमको पता नहीं है, क्यों मारी गई ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन मारी गई, हमने अब दूसरे की चीज को चाहा और फंस गए, अब क्या करोगे? तो रो उसके सामने, किसके सामने? बोले जिसकी है उसके सामने, जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसके सामने रोने से फायदा नहीं, वो तो और हंसेगा, वो तो और हंसेगा। तो यही कहा ना गीता में भगवान ने, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है तो वो व्यक्ति इससे आराम से छूट सकता है, माया मेताम एताम मायाम ते तरंती।

का ये दो भेद हैं, एक शून्य को यथार्थ मानने वाले, पारमार्थिक मानने वाले, असत को, अभाव को, शून्य को सारे जगत का उपादान कारण मानकर उसी शून्य से सारा जगत उत्पन्न हुआ ऐसे मानने वाले, दूसरे लोग नहीं क्षणिक विज्ञान को मानने वाले, क्षणिक आत्मा, आत्मा क्षणिक है ना। तो ये दोनों के मोह को भंग करने के लिए शंकराचार्य जी ने इस छठे श्लोक में बड़े सुंदर युक्तियों से उनके व्यामोह को भंग किया है। राहु ग्रस्त

0: யோ புத் சுசுப்தஹ புமான் ப்ராகப்ஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோத சமயே யா ப்ரத்யவிஜ்ஞாயதே தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே.
1: சப்சே பஹலே திருஷ்டாந்த தியா. ஆப் திருஷ்டாந்த சம்ஜோகே தப் சித்தாந்த யானி திராஷ்டாந்த கோ ஆசான் சே சமஜ் பாவோகே. இசிலே வேதாந்த கே பிரக்ரியா ஹை கி ஹர் பாத் கோ சம்ஜானே கே லியே கோயி ந கோயி திருஷ்டாந்த உபஸ்தாபித் கர்த்தே ஹை. தோ சீஜ் தீன் சீஜ் கா பிரயோக் கர்த்தே ஹை வேதாந்த. சப்சே பஹலே தோ ஸ்ருதி கே பிரமாண கோ பிரஸ்துத் கர்த்தே ஹை. प्रमाण सकवर और प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं, उससे नहीं बना तो श्रुति प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं अपनी बात स्थापित करने के लिए, सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए. दूसरी बात उस श्रुति के अनुसार दृष्टांत को प्रस्तुत करते हैं. और दृष्टांत का शब्द का अर्थ ही होता है आपके द्वारा देखा गया को प्रयोग करना, आपके अनुभव में आए हुए को प्रयोग करना. इसका अर्थ होता है दृष्टांत. दृष्ट अंत सिद्धांत दृष्टांत. आपके अनुभव में आए हुए युक्तियों का प्रयोग करना, आपने देखे हुए को ही प्रयोग करके न देखे हुए को समझाना. देखो न देखे हुए को दिखाने का उपाय क्या है, देखे हुए का प्रयोग करना. देखे हुए का प्रयोग करके न देखे हुए को दिखाना है. अनुभव में आए हुए को प्रयोग करके अनुभव में न आए हुए का को अनुभव में लाना है. इसको कहते हैं दृष्टांत. यहां सबसे पहले शंकराचार्य जी ने दृष्टांत दिया, वो पौराणिक दृष्टांत. क्या आज का वैज्ञानिक दृष्टांत नहीं है ये? वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं मानते. पौराणिक दृष्टांत. यह दृष्टांत कोई वैदिक भी नहीं है, कोई आधुनिक भी नहीं है. यह दृष्टांत पुराण काल का पौराणिक दृष्टांत है. आप लोगों को आपके नाना नानियों ने दादा दादियों ने सुनाया ही होगा. समुद्र मंथन हुआ था, यह भी कहानी सुनाया होगा ना. और उन्होंने नहीं सुनाया होता, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुराणों में पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन हुआ था. एक बार की बात है कि पृथ्वी में कोई ऐश्वर्य नहीं था, जो ऐश्वर्य थे वो 14 ऐश्वर्य रत्न वो सब के सब देवताओं के अपराध से चलते पृथ्वी से वह पाताल में चला गया था. ये भी नहीं कि देवलोक में था. देवताओं के अपराध के चलते, गलती के चलते, दुरुपयोग के चलते ये 14 रत्न पाताल में चले गए थे. भारत में नवरत्न बोलते हैं ना, कि कोई बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नवरत्न बोलते हैं. बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको नवरत्न बोलते हैं, बड़ी फैक्ट्री है. तो यहां तो 14 रत्न है, भारत तो केवल 9 रत्न, बाकी रत्न कहां चले गए? 5 रत्न उसकी है. इसीलिए भारत में कमी है, कमजोरी है, गरीबी है. वो 5 रत्न और आ जाए तो फिर भारत की गरीबी खत्म हो जाए. ये तो मैं मजाक कर रहा हूं. वो 5 रत्न क्या, 50 रत्न आ जाए तो भी ये गरीबी खत्म नहीं होगी.

0: कि गरीबी खत्म करना ही नहीं है। किसको? कोई राजकारणी हो तो फिर नाराज नहीं हो जाना, राजनेताओं को गरीबी खत्म करना ही नहीं है। गरीबी खत्म हो गई तो राजनीति खत्म हो गई है? तो इसीलिए उनको तो चाहे 500 रत्न आ जाएं तो भी देश को गरीब बनाए ही रखना है, उनकी उनके फायदे में, उनके हित में, क्योंकि राजनीति करने को मिलती है। तो चला गया समुद्र में, अब क्या करें? रत्न रहित है, ऐश्वर्य रहित है, और उसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है किसको? तो देवताओं को। तो देवता लोग छटपटाने लगे, गए भगवान नारायण के पास, महाराज हम क्या करें, देखो हमारे सारे ऐश्वर्य गायब हो गए, सारे रत्न गायब हो गए, हम निरीह हो गए हैं, कुछ नहीं है हमारे पास।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉटर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kari Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum aur ek mahan sant ya Shiv Bhakt ki kahani sunenge, jinka naam Kariyar hai. Tirukadavur mein janme Kariyar ka Periya Puranam mein apna alag sthan hai. अपनी विद्वता और काव्य रचने की योग्यता द्वारा उन्होंने धन अर्जित किया और उससे शिव मंदिरों और शिव भक्तों की सेवा की। कारियार को तमिल भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने ललित, सुंदर और सार्थक पदों की रचना की और संकलन का नाम कारिकोवई रखा। वे अपनी काव्यकृति के अंश चेर, चोल और पांड्य राजाओं को सुनाते, उनकी प्रशस्ति प्राप्त करते और इस प्रकार जो धनराशि प्राप्त होती उससे वे मंदिर निर्माण करवाने का नेक काम करते थे। संतों की सेवा और दान धर्म द्वारा वे शिव आराधना करते थे। तमिल के संघकाल में से पूर्व ही पानर, वीरलियर आदि कवि हुए हैं जिन्होंने राजाओं की प्रशस्ति आदि द्वारा धन अर्जित किया। काव्य के अनेक प्रयोजन हो सकते हैं। सत्ता में स्थित नरेश या नेता की प्रशस्ति गायन द्वारा तत्कालीन लाभ प्राप्त करना उनका एक रूप है। संघकालीन काव्यों में तिरुमुरुगार, टरुपेड़ई और परिपाडल के अतिरिक्त अन्य काव्य प्रायः इसी कोटि के हैं। सातवीं शती में तमिल कविता को अपर तिरुज्ञान संबंधर आदि ने नवीन दिशा दी। मनुष्यों की स्तुति के स्थान पर परमतत्व ईश्वर की स्तुति का विकास हुआ। नरस्तुति को कवि के स्वाभिमान पर कलंक माना गया। आठवीं शताब्दी में सुंदरमूर्ति नायनार ने झूठों की प्रशंसा वर्जित की। मनुष्य का स्वभाव है विविध रूपों में चिंतन करना। कोवई ग्रंथों में मानव को नायक मानकर रचना की गई है। हमारी कथा के नायक कारियार ने माध्यम तो मानव की प्रशस्ति गाने को बनाया पर उससे प्राप्त धन संपदा को श्रेष्ठ धार्मिक कार्यों में व्यय किया। मंदिर निर्माण, संत सेवा आदि में अपनी समस्त अर्जित संपदा लगा देने के लिए प्रिय पुराण में उन्हें 63 श्रेष्ठ भक्तों में स्थान मिला। ओम नमः शिवाय।
4: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari. presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Giri Nibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojjwalangam Parasum Mrigabhara Bheti Hastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutam Amaraganir Vyagrakrityam Vasanam Visvadhyam Visvabandhyam Nikhila Bhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sisyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hasta Malakancha Sisyam Tantrotakam Bhartika Karamanyan Asmad Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreyaha Prapti Nimittaya Namaha Somartha Dharine Om Shantihi Shantihi Shantihi.

ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दैया प्रायोजित परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला अंतर्गत शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए 74वां श्लोक। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि

0: आशासाटी कस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु कल्याणीनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वेङ्गितम् सर्वेङ्गितज्ञाम् अनघम् ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेता समस्तजगतां वृषभाधिरूढ भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसंती कादम्बनीव कुरुते परितोषवर्षम् सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाग तज्जन्म सस्यमखिलम् सफलम् च नान्यत् बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्म सक्ताबधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरणदर्शनकीर्तनादि सम्मोहितेव शिवमन्त्रजपेन विन्ते आदिगुरु सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। आशा पास क्लेश दुर्वासनाधि वेदो दुक्तेर दिव्य गंधेई अमंदही आशा साटी कस्य पादारविंदम चेता पेटिम वासिताम में तनोतु। एक दृष्टांत से आप इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। आपने एक कमरा बना रखी है घर के लिए, आपको समझ में आवे वो दृष्टांत बता रहा हूं। संयोग से एक हफ्ते के लिए आपको बाहर जाना था और कमरा बंद करके ताला लगाकर जाना था। निकलने से पहले, कमरा ताला लगाने से पहले उस कमरे में एक बिल्ली घुस गई थी। आपको समझ में आए वो दृष्टांत दे रहा हूं। बिल्ली घुस गई थी, अपने उसके बारे में ख्याल नहीं रखा और हतार में फटाफट दरवाजा बंद कर ली, ताला लगा दिया और चल पड़े आप। तो वो बिल्ली चिल्लाने लगी थोड़ी देर के बाद। जब बाहर निकलने की कोशिश किया बिल्ली ने तो कहीं निकलने का रास्ता तो मिला नहीं और चिल्लाने लगी। सुनने वाला कौन है भाई, घर में तो कोई है ही नहीं, ताला लगा दिया, निकलने का रास्ता नहीं है। अब कमरे में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर एक दिन दो दिन तो वह चिल्लाती रही। बाद में किसी अलमारी के कोने में छुपकर मर गई। होता है ना, चूहा मर जाते हैं, छिपकली मर जाती है ना। तो हमने बिल्ली कह दिया और क्या। तो मर गई। अब वो बिल्ली सड़ गई, मरने के बाद तो सड़ना अनिवार्य ही था। पूरा का पूरा कमरा दुर्गंध से भरा हुआ है। जब आप हफ्ता 10 दिन के बाद अपने घर लौटे, ताला खोली और उस कमरे के अंदर घुस गए, तो क्या आनंद आया होगा आपको? नहीं है? आया होगा ना आनंद? दुर्गंध से उस कमरे के अंदर घुसने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। अब करें क्या? ये क्या हुआ? तो पता लगाया कि भाई कुछ न कुछ मरा है। क्या मरा है? कहां मरा है? खोजने लगे तो अलमारी के बीच में वह बिल्ली का अवशेष सड़ा हुआ अवस्था में, सड़े हुई अवस्था में मिल गया। तो पता चल गया ना कि ये बिल्ली मरने के कारण पूरा कमरा दुर्गंध हुआ है। तो अब क्या करोगे? आपके घर में यदि नौकर चाकर हो तो उनको कहोगे कि इसको निकाले फेंको और सफाई करो, और आपके नौकर चाकर न हो तो उसकी सफाई करने का काम खुद को है, खुद ही करना पड़ेगा भाई। तो बड़े मुश्किल से नाक में पट्टी बांधी, हाथ में झाड़ू लिया, उस मरे बिल्ली के सब अवशेष, सड़े हुए अवशेषों को हटाना जरूरी था, तो अपने हाथ से निकालकर ले जाकर बाहर फेंक दिया डब्बे में, घर से बाहर। उसके अवशेषों को तो फेंक दिया, लेकिन कमरे के अंदर दुर्गंध तो यथावत ही है। तो अब क्या करोगे बोलो? उस दुर्गंध को मंद करने के लिए तीव्र सुगंधित द्रव्यों को लाकर छिड़काव करोगे। यही करते हो कि नहीं? बढ़िया अगरबत्ती जलाओगे या कोई बढ़िया इत्र वगैरह, सेंट वगैरह चारों तरफ कमरों में छिड़कोगे, तब बढ़िया सुगंधित द्रव्य के तीव्र वासना से कमरे में विद्यमान दुर्वासना, दुर्गंध को तुम निस्तेज करोगे। हटाओगे तो क्या हटाएगा? जाएगा तो कहां जाएगा? निस्तेज करोगे वो। ये तो हो गया दृष्टांत भाई। शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा इसी भाव को प्रकट करते हैं। जहां तुम रह रहे हो वो कमरा, जिसके लिए इन्होंने, शंकराचार्य जी ने चेतह पेटी कहा। हालांकि हमने कमरे का दृष्टांत दिया है, यहां शंकराचार्य जी ने एक मंजूषा, बक्से का दृष्टांत दिया। चेतह पेटी, पेटी माने मंजूषा, बक्सा। अब उसी का दृष्टांत ही लागू कर लो। संयोग से कोई बक्सा था आपके पास, किसी दिन कपड़े जल्दी निकालने के चक्कर में फटाफट कपड़ा तो निकाल लिया, कपड़े निकालते ही फट से बंद करना था तो तुमने खुला छोड़ दी उसको। घर में एक छोटी सी चुईया जो है दौड़ती थी, दौड़े दौड़े आपको, अब ये पेटी के साथ मेल खाएगा वो दृष्टांत, अब समझ लो। उसी तुम्हारे बक्स में, उस पेटी में घुस गई वो चुईया, अब कपड़े के पीछे आराम से छुप के बैठ गई। कुछ दिन के बाद तुमको बाहर जाना था अमेरिका, है ना? लंदन जाना था, अमेरिका जाना था, तो अटल जी को अच्छी तरह बंद कर दी, कमरे को बंद कर दिया। अब वो चूहिया तो उस पेटी के अंदर ही बंद। अब इस बीच में वो मर गई चूहिया। 15 दिन के बाद जब वहां से आए और पेटी खोला तो मरी हुई चूहिया के चलते सारे कपड़े वो पेटी दुर्गंध से भर गया। ये क्या है भाई, एक एक कपड़ा खंगाला तो चूहिया के मरे हुए चूहिया के अवशेष मिल गए, उसको तो फेंका लेकिन पेटी स्वयं ही दुर्गंध से भर गई, कपड़े सब दुर्गंध से भरे हैं। अब संयोग से बढ़िया जो सूट उसी कपड़े में रखा था, शाम को पार्टी में जाना था और दुर्गंध से भरा हुआ कपड़ा उसको पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे बोलो, अपने कोई ही दुर्गंध से भरा है तो लोग तो कहेंगे। उसके दुर्गंध को मंद करने के लिए उससे तीव्र सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करोगे। दृष्टांत समझ में आया ना, तो पेटी में भी वही सुगंधित द्रव्य छिड़काव करोगे। अब एक पेटी तुम्हारे पास है, उस पेटी का नाम क्या है, चेतह पेटी, सबसे नीचे लाइन में चेतह पेटी। वो दुर्गंध से भरा हुआ है, दुर्गंध के कारण क्या है, दुर्गंध के कारण ऊपर बता दिया पहले लाइन से, आशा पास क्लेश दुर्वासनादि, आशा रूपी पास से बंधा हुआ है, आशा ही पास, आशा पास, और क्लेश पंच क्लेश, महर्षि पतंजलि का वो सूत्र को याद कर लो, क्लेश का अर्थ पांच भेद का क्लेश है वो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेश, ये पंच क्लेश हैं, यही वो चुनिया है, समझे कि नहीं। अब चुनिया भी एक तो बड़े बड़े चूहे होते हैं, दूसरे छोटी छोटी चूहियां होती हैं, एक और छछंदर बोलते हैं, समझे नहीं, लंबा मुख वाला, हाँ सेब चूहे के जैसे ही होता है लेकिन उसके मुख लंबे होते चोंच, और चूहा जैसे तेज नहीं दौड़ता, वो थोड़ा गति उसकी मंद होती है, ऐसी मान्यता है कि उस चूहे को भले मार लो छछंदर को नहीं मारनी चाहिए, और यह भी मान्यता है कि छछंदर कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करते, न कपड़े काटते हैं न कुछ करते, वो घूमते रहते हैं इधर उधर, कहीं गिरा हुआ है वो तो खा लेंगे छछंदर, लेकिन उसकी एक विशेषता है, वो जहां भी चलेगी छछंदर शरीर से दुर्गंध छोड़ते हुए चलती है, चूहे में दुर्गंध नहीं निकलता, छछंदर में तो जिधर गई कि वो दुर्गंध है, विशेष करके उसको किसी ने देख लिया और वो डर गई तो उसने दुर्गंध छोड़ा शरीर से, तो वैसे ही है ना, दुर्वासना दुर्गंध। आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, लहसुन और कांदा की सब्जी खाकर जब चलते हो तो डकार आता है तो भी दुर्गंध आता है कि नहीं? जो नहीं खाता है उसको तो आएगा। आपका ड्राइवर है वो बीड़ी सिगरेट पीता है और तुरंत कोने में बैठकर बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, तुमने कहा ये चलो, वो फटाफट उसने बीड़ी सिगरेट फेंका और आगे सीट में बैठकर स्टार्ट किया, उसी के बगल में तुम बैठे तो उसकी बदबू आती है। तो इसी तरह तो है, आशा पास अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का नाम आशा, इष्ट वस्तु प्राप्ति की अभिलाषा यही आशा है। महाभारत में एक श्लोक आया है, संसार में जीवों को जीने का एक ही आधार है आशा, हर व्यक्ति उसी के आधार पर जी रहा है। ये आशा खत्म हो जाए तो व्यक्ति जी भी नहीं पाएगा। मरते दम तक भी जीने की आशा है, उसी के चलते लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, है ना? यह निश्चित है कि मरने की तैयारी है, मरेगा जरूर, मरने दो ना, मरना तो ही है, गीता पढ़ी है, जातस्य ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अब मरने की तैयारी है, मरने दो, मन नहीं मानता, अंतिम दम तक हम कोशिश करें, उपचार करें, क्या पता ठीक हो जाए, क्या पता उस औषधि ठीक हो जाए, क्या पता ये करने से ठीक हो जाए, क्या पता ये करने से ठीक हो जाए। एक बहुत वृद्ध थे बेचारे, अच्छे वेदांती थे, बहुत पुराने सत्संगी और वेदांती और अद्वैत वेदांती, शंकर वेदांती के बड़े निष्ठावान व्यक्ति, 90 साल के लगभग उनकी उम्र हो चुकी है। तो जब हम काठमांडू से आए, यहां प्रवचन शुरू किया, तो उनको फोन किया हमने, तो वह हॉस्पिटल में भर्ती किया है, आईसीयू में भर्ती है। तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया, हमने कहा फलाना भाई कैसे हैं? बोले महाराज तो ठीक न थी। बोले हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तमें आशीर्वाद आपो भगवान थी प्रार्थना करो, सारू थई जाए पाछा घर आवी जाए, ठीक हो जाए, घर में आ जाए, फिर तुम्हें बुलाए और साथ में बैठकर खाना खाए। देखो अब हम क्या कहें, अरे 90 वर्ष का हुआ है, आईसीयू में भर्ती है, उसको अब क्या ठीक होने का है भाई, मरने दो, कहा जा सकता है? कहा जा सकता है? ना हम कह सकते हैं, ना वो कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता है। हमने कहा सारू थई जैसे चिंता न करो, है ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाएगा, आएगा। आशा, व्यक्ति आशा से जी रहा है और इसी से बना हुआ है वो। क्लेश दुर्वासनादि, पांच रूप क्लेश रूपी दुर्वासना, यही तो दुर्वासना, यही दुर्गंधी है। और ये पांचों दुर्वासना चेता पेटी चित्त को दूषित कर रहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। भेद दुक्तेर दिव्य गंध ही रमंदे ही, तो चित्त के ये दुर्वासना को हटाने के लिए क्या करना है? आशा साठी कस्य पादार बिंदम, आशा को साड़ी बनाकर जिसने पहन रखा है, आशा साठी कस्य शब्द कैसा प्रयोग किया है देख लो। साड़ी बोलते हैं ना हम लोग, तो संस्कृत में उसको साटिका साटी और साटी शब्द अपभ्रंश होकर साड़ी हो गया। मूल शब्द है साटी, तो प्रचलित भाषा में उसका नाम हो गया साड़ी। और सामान्यतः साड़ी महिलाएं पहनती है ना, पुरुष तो नहीं पहनते ना। है? चलो धोती को ही साटी कह दो, अब और क्या कहोगे? अब भगवान शिव क्या पहनेंगे? हैं? अरे बाबा, आधा नारीश्वर है, आधा साड़ी पहनना पड़ेगा, आधा धोती पहनना पड़ेगा कि नहीं? शिव आधा नारीश्वर है कि नहीं बोलो ना? आधा महिला है आधा पुरुष है, आधा स्त्री आधा पुरुष, अर्धनारीश्वर। तो आधा तो साड़ी पहनना पड़ेगा और आधा धोती पहनना पड़ेगा। हा, लेकिन इस झंझट से बचने के लिए भगवान शिव ने क्या किया पता है? न धोती पहनी है न साड़ी पहनी, पहनोगे तो धोना पड़ेगा कि नहीं? मुसीबत बोलो। एक टांग में साड़ी पहन लो, एक टांग में पॉइंट पहन लो, फिर कैसा लगेगा भाई? और शिव जी ऐसे करेंगे, बोले झंझट की बात है, छोड़ दो, जाने दो। फेंक दिया साड़ी को भी, फेंक दिया धोती को भी, तो फिर क्या पहन लिया? आशा साठी पहन ली। आशा शब्द का अर्थ होता है आकाश, तो दिगंबर बोलते हो नहीं है? दिगंबर का मतलब क्या हुआ? आशा साठी कस्य है, आकाश को जिन्होंने वस्त्र बनाकर पहना रखा है, ऐसे भगवान शिव दिगंबर। और क्या, जिसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है उसी के शरीर का नाम आशा साटिकस्य आकाश वस्त्र। और उनके आशा साटिकस्य पादार बिंदम, चरण रूपी फूल में ऐसी सुगंध है, ऐसे सुगंध है। दूसरी लाइन से उस फूल के विशेष, दिव्यर गंधे ही अमंदे ही भेद युक्ता। देखो इस फूल में कितनी सुगंध है, लेकिन इस फूल का जो सुगंध है काफी मंद पड़ चुका है। बगीचे से जिस समय उसको तोड़ा होगा तो कितना तीव्र सुगंध होगा इसमें, और कब तोड़ा है? तीन चार दिन पहले तोड़ा होगा, कहां मार्केट कहां कहां से होते हुए यहां आया, तो यहां सुगंध है। तो जिस समय पहले तोड़ा होगा वहां कितनी सुगंध होगी बोलो? अमंदई दिव्यई गंदई, क्या दिव्य सुगंध रहा होगा उसमें। शुभ प्रवचन होता है ऊपर तीन चिड़ माले में, एक बहन नागफणी फूल लेके आती है, रख देती है ना शिवलिंगी, अंदर शिवलिंग रहता है और उसका नाग का फण रहता है, फिर ऊपर चारों तरफ फूल के पंखड़ी का सिंहासन रहता है। क्या सुंदर, क्या बढ़िया फूल है वो, उसमें भी सुगंध बहुत तीव्र है भाई, है? बहुत सुगंध है उसका भी। शंकराचार्य जी कहते हैं तुम्हारे चित्त रूपी पेटी में बक्से में आशा पास से ताला लगाकर बंधे हुआ वो बक्सा में पंच क्लेश रूपी दुर्वासना दुर्गंध से इतना दुर्गंधी हुआ हुआ है कि न तुम रह सको न परमात्मा रह सके। और वही चित्त में तुम परमात्मा को बुलाना चाह रहे हो, जो तुमको ही रहना मुश्किल हो रहा है तो परमात्मा कैसे रहेगा। और यदि परमात्मा को बुलाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो दुर्वासना दुर्गंध है पंच क्लेशों के चलते चित्त जो दुर्गंध युक्त हो चुका है, पहले तो उन पंच क्लेशों को हटाओ, मरे हुए चूहे को हटाओ, उसके चलते जो चित्त दुर्गंध हो गया है दूषित हुआ है उसको सुगंध से भरो। तो सुगंध कहां से लाओगे, तो बोले उस शिव के पादारविंद।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमना स्तोत्र इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री धर्मानंद जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ऋजं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामि प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदय शमनिजो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पति सन्नो भवतु भुवनस्यस्पति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। जैसा कि हमारे आदरणीय गिरीश भाई जी आप लोगों को संबोधित करते रहते हैं कि स्वनाम धन्य बंबई में इस प्रेमपुरी रूपी कल्प वृक्ष के बीजारोपण करने वाले, जिसे हम संस्थापक भी कहते हैं, प्रेमपुरी जी महाराज की यह स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। उपनिषद में बात आती है ह्यात्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः। उपनिषद का ये मंत्र है। जो लोग स्वाध्याय करते उन्हें श्रवण करने का मौका मिला होगा। यदि आपको भूति का अर्थ है दैवित मानुषवित्त, दैवित और मानुषवित्त हासिल करना है तो विधान किया है आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति कामः। ऐश्वर्य की कामना से आत्मज्ञानी की अर्चना का विधान है, क्योंकि श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्मही भवति। अन्यत्र भी आता है, वहां शंका किया है कि आत्मज्ञानी को पाप पुण्य लगते नहीं है, पर ज्ञान होने के अनंतर जो पाप होते हैं पुण्य होते हैं उसका फल किसे मिलेगा। चलता है पैसे चीटी मरेगी, कुछ इस तरह के स्वाभाविक कृत्य होते हैं। तो वहां पर श्रुति कहती है कि जो उसके सेवक हैं, उससे प्रेम करने वाले हैं, साधु कृत्याम उसके पुण्य कर्मों के फल को लेते हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ याग करा रहा है या ज्ञान यज्ञ कर रहा है, तो उस ज्ञान यज्ञ की जो महिमा है अनंत फल होता है, उस अनंत फल का अधिकार उसके सेवक या उसके अर्चना करने वाले प्राप्त करते हैं। द्विषंतः साधु कृत्याम, और जो द्वेष ईर्षा करते हैं उन्हें वह पापीय कर्म प्राप्त होता है।
क्योंकि ज्ञानी को पाप और पुण्य कर्म संश्लिष्ट नहीं होते हैं, इसलिए जैसा कि विधान है और इस वर्ष है बड़ा ही सुंदर स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है। अन्यत्र भी श्रुति कहती है कि यज्ञ महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, यज्ञ महोत्सव के द्वारा ब्राह्मीयम का अर्थ ब्रह्म ज्ञान की अनुकूल अपने अंतःकरण को संपादित करना चाहिए। हम जब व्रत महोत्सव मनाते हैं उससे हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, इसी के माध्यम से कम हम संसारी काम धंधों को छोड़ करके इधर अग्रसर होते हैं, क्योंकि संसार में इतने काम धंधे जंजाल हैं कि मनुष्य को मौका ही नहीं मिलता है। परंतु जैसे देखो आज अनंत गणेश चतुर्थी है, कहीं नवरात्रि है मनाते हैं, दीपावली है, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, शिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी है, तो ये ऐसे ही एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार जो व्रत करते हैं, इस व्रत उत्सव के माध्यम से हम जो है संसार के कार्यों से जरा विराम प्राप्त करके इधर लगते हैं। ऐसे छोटे बच्चे को जो विद्यालय में नहीं जाता है, साक्षरता के महिमा को नहीं समझता है, उसे हम मिठाई देकर, खिलौना देकर, फुसला करके उधर लगाते हैं। जैसे विद्या की महिमा समझ लेता है वैसे अपने आप जाता है। तो हमारे ऋषियों ने व्रत का यज्ञ का ये जो समायोजन का तरीका बताया है, इसके द्वारा हम अंतर्मुखता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां वयभूत हैं, प्राण चिखानी व्यतिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चिदिनांतरात्मन। इंद्रियां स्वभाव से बाहरी विषयों को ही ग्रहण करती हैं, चिंतन करती हैं और हमेशा विषयों को पाने के लिए लालायित रहती है। हालांकि ये विषय बिल्कुल व्यर्थ हैं, विषय से सुख असंभव है, फिर भी अनादिकाल से सुखाध्यास है। सुखाध्यास का मतलब होता है कि सुखत्व के अभाव वाले संसार में विषय में सुख बुद्धि हो रही है, तो सुखाध्यास से हमारे मन को हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए, यथार्थ ज्ञान कराने के लिए ऋषियों ने यज्ञ याग व्रत उत्सव महोत्सव का विधान किया है, जिसके जरिए हम लोग अंतर्मुखता को प्राप्त होते हैं। और अंतर्मुख होते ही जो जीवन का परम लक्ष्य है आत्मानंद, उसकी झलक मिलती है। तो आइए जो प्रकृत प्रसंग है, हम लोग शिव महिमा के ऊपर विचार कर रहे हैं। छठवां श्लोक चल रहा था, उच्चारण पहले कर लें। अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्र त्यमरवर संशेरत इमे। अजन्मानो लोकः किम अवयवन्तोऽपि जगताम्। पहले इसका शब्दार्थ देख लें अन्वय के साथ, क्योंकि संस्कृत के श्लोक होते हैं उनका अन्वय करना पड़ता है। अन्वय दो तरह होता है, दंडान्वय खंडान्वय। भगवान भाष्यकार अक्सर श्रुतियों का या उपनिषद का, ब्रह्म सूत्र का, जहां भाष्य लिखते हैं वो जो है दंडान्वय है, खंडान्वय नहीं, मतलब सीधा अन्वय करते हैं सुविधा के लिए। पर श्लोक में तो दोनों होता है, दंडान्वय भी खंडा। दंडान्वय बोलते हैं डंडा सीधा होता है, सीधे करना, और खंडान्वय मतलब कि आगे पीछे जहां जैसी सुविधा हो। तो यहां पर देखो खंडान्वय दंडान्वय नहीं है। अमरवर संबोधन बिल्कुल नीचे आया है, अंतिम है ना, यह तो मंदास त्वाम प्रत्यमरवर, तो अमरवर को पहले रखना पड़ेगा अन्वय करने के लिए। अमरवर मतलब कि देवताओं में श्रेष्ठ, अवयवंत का अर्थ है जो टूट न सके,
कहा अमरवर नीचे है अव्यंतो ऊपर है, फिर भी अन्वय करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हे देवाधिदेव महादेव, देवताओं से पूज्य, यह जो अवयवंत संसार है, जो अवयव होता है वही जुड़ता है और टूटता है। ये संसार अवयव वाला है, जैसे हमारे हाथ पाद आंख नाक कान सब अवयव हैं, शरीर से जुड़े हैं, अलग भी हो जाते हैं, ऐसी ये संसार भी अवयव वाला होने से इसका नाश भी होता है। अपि मतलब भी, लोकाकार ये जो आपके 14 भुवन हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, अतल नीतल सुतल गभस्तिमान तलातल महातल पाताल, इस 7 नीचे, और भूर भुव स्व मह जन तप सत्यम, इस 7 ऊपर है, ये 14 जो लोक है। अजन मानह किम, क्या यह बिना उत्पत्ति के हो सकता है? तार्किक आक्षेप करता है तो कहते हैं कि नहीं, असंभव है। जो भी अवयव वाला होता है उसको कोई न कोई बनाने वाला होता है। जगताम भव विधि, जगताम मतलब संसार का, भव विधि का अर्थ है उत्पत्ति सृष्टि क्रिया। अधिष्ठातारम अनादृत्य, अधिष्ठाता जो कार्थे कर्ता, उसका अनादृत्य कार्थे तिरस्कार करके, उसके बिना किम भवती, क्या संसार उत्पन्न हो सकता है? तो कहते नहीं, असंभव है। वा मतलब अथवा, अनिशा भुवन जन्ने कुरियात, अनिशा मतलब कि ईश्वर से भिन्न, चाहे वह परमाणु हो, प्रधान हो, या शून्य हो, या स्वभाव हो, कुछ भी ईश्वर से भिन्न है, वह क्या संसार को बना सकता है? कहते ये भी असंभव है। और बनाएगा तो कह परिकरा, सामग्रियां क्या होगी? यतः इमे मंदा, जिस कारण से, इमे मल ये जो मंद बुद्धि वाले हैं, ये लोग आपके प्रति, त्वाम प्रति संशयरते, ऐसा अन्वय करना, त्वाम प्रति संशयरते, देखो त्वाम पहले है, संशयरते में बाद में है, तो आपके प्रति इस प्रकार से संदेह किया करते हैं। ये तो हो गया शब्दों का अर्थ। अब जरा इसके ऊपर हम लोग विचार कर ले। सबसे पहला शब्द है कि यह जो अजन मानो लोका किम अवयवंतोपि जगताम, ये संसार है अवयव वाला, जो भी अवयव वाला होता है वह उत्पन्न होता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके माता पिता न हो, तो इतना बड़ा संसार जो बना है उसके भी कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। जैसे कि एक घड़ा है या मकान है, छोटे से घड़े को भी बनाने के लिए कारीगर की जरूरत पड़ती है। एक मकान को तैयार करने के लिए कुशल कारीगर को ढूंढते हैं, ऐसे ही यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई कारीगर होगा। हम लोगों में से कोई भी सब ब्रह्मांड को बना नहीं सकता है, क्योंकि जो हिमालय की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, ये नदियों का प्रवाह है, इसको जीव बना नहीं सकता है। एक छोटा सा चना है, उस चने को हम धरती में डालते हैं, उसमें से अंकुर निकलता है, उस अंकुर को किसने उत्पन्न किया? नैयायिक लोग अनुमान करते हैं, क्षित्यंकुरम सकर्त्रिकम कार्यत्वाद घटवत, ये क्षिति मतलब पृथ्वी में जो अंकुर उत्पन्न हो रहा है उसको जो बना रहा है वही ईश्वर है, चाहे वह भले ही हमें दिखाई न पड़े, परंतु नास्तिक लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, ये तो अवयव का पुंज है, परमाणुओं का पुंज है, परमाणु से द्वेणुक हुआ, द्वेणुक से तस्त्रेणुक, पंचाणुक, इस क्रम से ये पृथ्वी बन गई। तो ये जो जैन बौद्ध दार्शनिक है, इनका कथन है ये जो है परमाणुओं का पुंज है, उसको संघातवाद कहते हैं, इनका शब्द संघातवाद है, संघात का अर्थ समुदाय हिंदी भाषा में।
तो जैन बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि संघातवाद ये जगत है, परमाणु के समुदाय से संसार उत्पन्न हुआ, इसके लिए अलग से परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर इसको नहीं बनाता है, स्वाभाविक है। सृष्टि ये केवल परमाणुओं से नहीं बन सकता, जल चीज में तो संभव है, पर जो चेतन मनुष्य है ये चेतन में परमाणु से होना संभव है, ये परस्पर एक दूसरे के अदृश्य से बनता है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। संघातवाद का खंडन हमारे पूर्व मीमांसक जैमिनीय दर्शन करता है, वह कहता है कि बिना अदृष्ट के संसार उत्पन्न नहीं हो सकता है। अदृष्ट बोलते हैं पाप पुण्य धर्माधर्म, जैसे कि हम गाय को घास खिलाते हैं,

पूर्वमीमांसक ऐसा कहा करते हैं। परंतु वेदांत इसके विपरीत कहता है। वेदांत कहता है कि स्वयं ऋग्वेद की श्रुति है, पुरुष एवेदम इदम सर्वम, इस सब कुछ परमात्मा ही है। जितना भी जल चेतन आपको दिखाई दे रहा है ये परमात्मा का स्वरूप, और वास्तव में देखा जाए तो ये जड़ है नहीं, क्योंकि अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। ये वेदांत का सिद्धांत है। दृष्टांत के तौर पर हमारे सिर में जो जू होती है ना, जो काटती है, यदि आप उस जू से पूछें कि बताओ भाई तुम कहां रहती हो, तो क्या बोलेगी कि मैं जंगल में रहती हूं। ये जो हमारा बाल है ना, बाल है, उस जू के लिए बड़ा भारी जंगल है। अब आपके सर में कोई फोड़ा हो जाए तो जू को कोई लेना देना नहीं, उसके एक जंगल है, बढ़िया और हो गया फोड़ा हो गया। तो ऐसे ही अज्ञानियों के दृष्टि से जैसे जू को ये आपका सर और बाल ये जंगल है, पहाड़ है, क्योंकि वह छोटी सी जो जीव है जू, वो आपके पूरे अंग का अनुभव नहीं कर सकती, सामर्थ्य नहीं है। ऐसे जीवात्मा उस व्यापक चैतन्य के सत्ता का अनुभव न होने से एकता की जड़ है और चेतन है। इसी बात को कविकुल तार्किक कालिदास जी ने अपने निबंध में लिखा है, अस्तुत्तरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयोनाम नगाधिराज। अत्यंत प्रमाणिक श्लोक है। जब भारत का वर्णन करते हैं महाकवि कालिदास जी, तो वे कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में एक साक्षात देवस स्वरूप है हिमालय, जो कि पर्वतों का राजा है, नगाधिराज। महाकवि कालिदास जी ने भी हिमालय को जड़ नहीं माना है, बल्कि उसको कहा है कि साक्षात ये चैतन्य का स्वरूप है जो शत्रुओं से रक्षा किया करता है। अंतर्यामी ब्राह्मण में बृहदारण्यक के अंतर्गत जो आता है वहां भी आया है कि यह पृथिव्याम तिष्ठन, यम पृथ्वी न वेद यश पृथ्वी शरीरम तयेश आत्मा अंतर्यामी अमृत। बहुत लंबा प्रसंग है। अंतर्यामी ब्राह्मण के पाठ करने से जो है कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होता है। हमारे दशम कैलाश पिताश्वर जी महाराज प्रत्येक दिन किया करते थे, कई बार हमने देखा। छोटा सा अंतर्यामी ब्राह्मण है, उसमें बार बार बतलाया है कि वह परमात्मा मतलब कि विशिष्ट और सामान्य रूप से व्यापक है। पहले विशिष्ट वस्तु का चर्चा किया है पृथ्वीव्यादि का, फिर अंत में कह दिया कि वह सर्वत्र व्यापक है। तो जो पृथ्वी के अंदर परमात्मा है, पृथ्वी जिसका शरीर है, जिसको पृथ्वी देवता जान नहीं पाते हैं, वही तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं प्रत्येक दिन, और भक्त लोग प्रातःकाल उठने के बाद प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मे, प्रार्थना करते हैं ना। समुद्र तो आपका वस्त्र है, पर्वत आपके स्तन हैं, आप भगवान विष्णु की पत्नी हो, पर मैं मजबूर हूं, क्या करूं, बिना पैर रखे काम नहीं चल सकता है, आप इस अपराध को क्षमा करना। जहां पर हम रात दिन रह रहे व्यवहार कर रहे, उस देवी का भी हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, बस मान करके क्रिया करते हैं। तो विचार कीजिए, कोई चंद्रमा में जाए चंद्र लोक में, और वहां कहे कि चंद्रमा का दर्शन नहीं हुआ, जब बेचारा इतना बुद्धिमान तार्किक वैज्ञानिक हो करके भी इस पृथ्वी देवी का प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, तो चंद्रलोक में जाके चंद्र देवता कहां से प्रत्यक्ष करेगा। ये सब क्या है ना कि ज्ञान चक्षु से प्रत्यक्ष होता है। भगवान ने गीता में इस बात को बतला दी है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्म योग महेश्वरम। भगवान ने जब अर्जुन कहा कि मेरे दिव्य रूप को तू देख, अर्जुन चारों तरफ देखने लगा, ऊपर नीचे आंख घुमाकर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। भगवान ने कहा देख, इस तेरे चरम चक्षु से दिखाई नहीं पड़ेगा, तुझे मैं दिव्य

0: चक्षु देता हूं, तब जाकर तू इसका अनुभव कर सकेगा। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, तब जाकर अर्जुन को उस विराट रूप का दर्शन हुआ। विराट मतलब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वत्र चेतन रूपता को से अनुभूति हुई। तो वेदांत का सिद्धांत है कि ये जो जगत है चिन्मय है, ये पूरा ब्रह्ममय है। ये जो आकार प्रकार दिखाई दे रहा, जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर अपने लिए तो ये जो इसमें चैतन्यता अनुभूति प्रतीति है। कहीं इंग्लिश में वो कहानी पढ़ाते हैं ना कि कहीं व्यक्ति सागर के उस पार चला गया तो वहां के बहुत छोटे छोटे जीव चींटी जैसे उसके ऊपर चढ़ गए। बहुत लंबी कहानी है, अंग्रेजी में आती है। तो देखो उन जीवों के लिए हमारा शरीर पहाड़ बन गया, उनके लिए यही शरीर पहाड़ है। ऐसे ही जितना भी चराचर जगत है परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए वेदांत कहता है कि जगत का कारण अभिन्न निमित्तोपादान ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी हो नहीं सकता। ये वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत तर्क देता है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई माँ बाप न हो, कोई नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि ईसा मसीह बिना माँ बाप के पैदा हुए, पर गॉड को तो मानते हैं ना, उनसे पैदा हुए। आखिर में मजबूर होकर मानना पड़ा कि उनके पिता गॉड हैं, भगवान हैं। तो ये जो संसार है अवयव वाला है, इसलिए इसका भी कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। पारिशिष्या तो उसका कर्ता वह परमात्मा ही है। आगे आता है, अधिष्ठातारम अनादित्य किम भवविधि भवती। उस अधिष्ठाता को छोड़कर जगतकर्ता को क्या यह संभव है कि जगत उत्पन्न हो सके? जैसे कि हम घड़ी बनवाते हैं, तो घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी वाले के पास जाते हैं, उससे कहते घड़ी बना दो। तो क्या बोलता है कि मेरे पास घड़ी बनाने के भी औजार नहीं है, बिना औजार के मैं घड़ी ठीक नहीं कर सकता। वैसे उस वह जो ब्रह्म है परमात्मा है, इस संसार को बनाया तो कौन से हथियार थे जिससे कि संसार का निर्माण किया? ये दूसरे पद से ऐसा शंका किया है। तो यहां पर उत्तर दिया कि वह है माया शक्ति, तब ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य मतलब माया शक्ति से बनाता है। तीसरे तार्किक ने शंका किया, अनिशो वा कुरियाद, ये जीवात्मा ही संसार को बना दे, क्या फर्क पड़ना? इसे हम छोटे हैं, कोई बड़ा भारी हमसे जी होगा, उसने संसार को बना दिया। तो कहते हैं यदि उसने बनाया तो यह बताओ कि जब बनाया तो परिकर क्या था? परिकर बोलते सामग्री को, कौन सा धातु लिया, पदार्थ लिया, इसको लेकर के उस इस ब्रह्मांड को बनाया। और बनाने यदि आप ऐसा मानते जीवात्मा ने बनाया, या जो है कहते शून्य से हो गया, परमाणु से हो गया, क्षणिक विज्ञान से उत्पन्न हुआ, तो फिर चैतन्यता कैसे हो रही है? हमारे पूरे शरीर में चैतन्यता है। यदि हम चैतन्य को कारण नहीं मानेंगे तो चैतन्यता नहीं बन सकती है। रूस में एक बड़ा भारी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कुछ परीक्षण किया। एक कुत्ता को लिया, कुत्ते के पेट में एक यंत्र लगा दिया और दूर एक घंटी बांध दी। ठीक समय से घंटी बजाते 11-12 बजे और उसको भोजन देते। उन्होंने यह परीक्षण किया कि हम देखते हैं कि घंटी के साथ इस कुत्ते के पेट में क्या स्राव होता है। टाइम बांध दिया कि 12 बजे भोजन देना है, शाम को 4 बजे दूध पिलाना है, इसके बाद उसको मांस खिलाना है, 3 टाइम बांध दिया। जैसे ही घंटी बजती, उन्होंने यंत्र के माध्यम से देखा कि कुत्ता कान से घंटी सुनता, सुनने के बाद तत्काल, यंत्रों को हमेशा देखते थे, घंटी सुनते ही उसके पेट में एक विशेष स्राव होता था। जैसे हम लोग कोई नींबू काटता है ना तो देखते हैं तो जीभ में पानी अपने आप आता है, जीभ में जल का स्राव होता है। या सौंदर्युक्त पदार्थ देखे तो मन में मोह होता है, देखा देखी आंख ने रूप को पर मन में मोह हुआ। कोई मान लो हमारा दुश्मन हो जा रहा हो तो देखा हमने आंख से, पर विक्षेप कहां होता है? अंतःकरण में। कि आंख लाल हो जाती है, शरीर तमतमा जाता है। तो यही परीक्षण किया कुत्ते के ऊपर कि जैसे घंटी बजती उसके पेट में विशेष प्रकार से स्राव होता। कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, घंटी तो बजाए पर भोजन न दे, तो स्राव होता था, फिर कुत्ता चिल्लाता था, और बिना टाइम के फिर भोजन दे तो कुत्ता फिर बीमार हो गया। तो विचार कीजिए, आंख पेट से अलग है, कान भी अलग है। आंख ने घंटी सुनी, पेट में विशेष प्रकार से स्राव हुआ, और आंख इधर उधर देख रही है कि भोजन आ रहा कि नहीं आ रहा। तीनों एक दूसरे से भिन्न है, आंख कान से अलग है और ये दोनों पेट से अलग है, फिर भी एक ऐसा चैतन्य तत्व है जो तीनों का संबंध बनाता है, और तीनों के संबंध होने के कारण से एक साथ क्रिया होती है। तो बात धोकर के हमें यह मानना पड़ता है कि जगत कर्ता को एक नियंता है जो चैतन्य है। जड़ को मानेंगे तो संबंध नहीं बन सकता है, परमाणु को माने तो भी इस संबंध बनना असंभव है। तो इस श्लोक में नास्तिकों के तर्क वितर्क को दिखलाया। अब आप सातवें श्लोक में देखिए, वहां पर ये बतलाएंगे कि आस्तिक लोगों की क्या मान्यता है।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Santao Vasal Mimatao Snevi Vendo Aap Sarvavandu. So, Taittiriya Upanishad ko lekar ke प्रसंग चल रहा है। ऋषि प्रार्थना करते हुए संकेत कर रहा है कि जो वेदांत का रहस्य है या जो वेदांत तत्व है, ऐसे उस वेदांत तत्व का जिन हमारे पूर्व ऋषियों ने, पूर्व आचार्यों ने पद वाक्य के रहस्य को बतलाते हुए और प्रमाण पुरस्सर जिसका निरूपण किया है, जिसकी चर्चा की है, ऐसे उन ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा यहां संकेत किया। थोड़ा सा विचार ये करना है, ये वेदांत और वेदांत को लेकर के सीधा कह दिया जाता है कि तत्त्वमसी आदि महावाक्य जो है इसके विशेष प्रमाण हैं, कहा तू ही ब्रह्म है। लेकिन ये बात जब हमारे सामने आती है तो हमको ऐसा लगता नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूं। हम सुन लेते हैं और जो है इसकी चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में घटित नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर कहीं न कहीं संशय बैठा रहता। तो इसके लिए ही संकेत ये किया गया कि संसार के अंतर्गत विद्या अविद्या, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये जो दो रूप बतलाए गए वो विद्यमान हैं, और वो जो विद्यमान हैं ये दो रूप वो क्या हैं, तो इनके रूपों को यदि हम समझ लें तो इनके रूपों को समझने पर हमें पता चल जाता है कि वास्तव में मैं क्या है और वो ब्रह्म क्या है। और जब तक इसके दोनों ये रूप हमारी समझ में नहीं आते हैं, तब तक ये बात हमारे जो है निश्चय में नहीं आ पा। और इसका निश्चय ही होना, निश्चय हो जाए तो सब हो गया, यदि निश्चय नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए अन्यत्र भी शास्त्रों में चर्चा आती, संकेत किया गया कि बसवः अष्टवसवः, कितने वसु हैं तो संकेत किया आठ, और आठ वसुओं को बतलाते हुए फिर संकेत किया कि ये जो आठ वसु हैं ये क्या करते हैं, तो सबको बसाने का काम, सबको सत्ता देने का काम करने वाले कौन हैं, तो कहा ये वसु है। क्योंकि जो भी अंतरिक्ष, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, वायु, अग्नि, ये जो सब बतलाए गए, पृथ्वी आदि, इनको ही वसु शब्द से कहा गया। और ये वसु जो है वही क्या करते हैं, तो सबको बसाते, सबको बसाने वाले, ये संकेत किया गया। लेकिन एक बड़ी विलक्षण बात कही, वो विलक्षण बात क्या है, तो वेद के अंतर्गत एक मंत्र आया है, उस मंत्र में सबसे पहले यही चर्चा की, वसोह पवित्र मसी। पहला ही उसका शब्द है वसोह पवित्र मसी। जो ये आठ वसुओं के द्वारा ये सारा का सारा संसार बसा हुआ है, लेकिन वो वसु जो हैं, उन वसुओं के लिए पूछा गया तो क्या कहा गया, तो कहने लगे वसोह पवित्र मसी। तो पवित्र मसी और असी क्रिया जो है वो मध्यम पुरुष की क्रिया है, उसके साथ जब कर्ता का अध्याहार होगा तो किसका होगा, तो तुम का होगा, अन्य का अध्याहार नहीं होगा, क्योंकि असी क्रिया है, तो असी क्रिया के साथ में, असी क्रिया मध्यम पुरुष की है, इसलिए कर्ता भी मध्यम पुरुष का है। तो जब वहां पर कर्ता का अध्याहार होगा कि वसोः पवित्र मसी, वसुओं को पवित्र करने वाले हो, कहा कौन पवित्र करता है इन वसुओं को,
3: तो वहां पर तुम शब्द का ही प्रयोग होगा। तो वहां इसका अर्थ दिया गया कि तू वसुओं को पवित्र करने वाला, और तू शब्द से हम किसको लेते हैं, का जीव को। यहां तत्वमसी आदि भी जो वेदांत के वाक्य हैं, वहां भी तू शब्द से किसको लिया, तुम शब्द से किसको ग्रहण करते, तो कहा जीव को। और वहां पर यह कहा गया कि तू जो है वसुओं को पवित्र करने वाला, और क्रम से संकेत कर दिया आगे, देवरसी पृथ्वीरसी मातृसुनो धर्मो असी, और जो है आगे संकेत कर दिया विश्वधा असी, तू ही क्या है। तो कहने लगे इस देव को पवित्र करने वाला तू है, इस वायु को पवित्र करने वाला तू है, और इसी प्रकार से सभी जो वसु अंतरिक्षादि उनके लिए संकेत कर दिया, और अंत में कह दिया कि जो है विश्वधा या असी, तू ही सारे विश्व को धारण करने वाला, ये वहां मंत्र कहा गया। अब इसको हम देखें ये हमारे जीवन में कैसे, क्या ये जो कथन है वो सत्य है, तो आप विचार करके देखो। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का निर्माण किनके द्वारा, इस शरीर की सत्ता किसको लेकर के, पंचभूतों को लेकर के, और वो भूत आदि जो है किसको लेकर, तो माने मूल रूप से वसुओं को लेकर के, उसी को कह दिया। तो अब जो वसु जो है उन वसुओं को लेकर के ये शरीर है, लेकिन वह जो वसुओं को लेकर के शरीर है उन वसुओं को भी पवित्रता देने वाला कौन है। जब ये प्रश्न आया तो कहा गया तू, तू का मतलब जीवात्मा, यह जीवात्मा ही क्या करने वाला है, कहा वसुओं को पवित्र करने वाला है। जब तक तो इस शरीर के अंतर्गत जीवात्मा है तब तक शरीर कैसा, पवित्र है, यह सब मानते हैं। और इस जीवात्मा के न रहने पर क्या होता, यह शरीर ही क्या हो जाता, अपवित्र हो जाता। और इतना ही नहीं, इन सारे के सारे वसुओं को या शरीर को धारण करने वाला भी कौन है, तो जीवात्मा है। शरीर रूपी जो वसु जो धारण किए हुए हैं, ये वसु भी कब तक है और कब तक पवित्र है, ये तो कहने लगे जब तक जीवात्मा है। और जीवात्मा यदि नहीं है तो क्या होता, तो ये वसु भी बिखर जाते हैं, वो शरीर भी फिर जो है शरीर की स्थिति में रह जाता नहीं, सड़ने लगता है, गलने लगता है, इसकी दुर्दशा होने लगती, ये शरीर भी बिखर जाता, ये संकेत किया गया। अब जो है कहा कि ये जीवात्मा ही किसको धारण किए है, तो आगे ये भी संकेत कर दिया कि देव को भी धारण किए हुए, और जो है वायु को भी धारण किए हुए। तो देव, और देव क्या है, तो देवाह करके वहां संकेत किया गया, पुह माने इसके मस्तिष्क में ही सारे देव विद्यमान, अर्थात जो स्वर्ग लोक भी विद्यमान है, कहा वो भी क्या है, इसका मस्तिष्क है। जब तक मस्तिष्क की स्थिति है तब तक वहां देवत्व है, और मस्तिष्क की स्थिति न रह जाए तो देवत्व भी नहीं। इसी प्रकार से श्वास का आगमन और निर्गमन किसके बल पर होता है, तो कहा उसी जीवात्मा के बल पर, यदि जीवात्मा न हो तो श्वास का आगमन और निर्गमन भी नहीं होगा। और उस वायु को भी उष्णत्व देने वाला कौन है, जो वायु है जो प्राण वायु है उसे भी उष्णता देने वाला कौन है, तो ये जीवात्मा ही। और जीवात्मा यदि उसको उष्णता देना बंद कर दे तो क्या होता है, वायु ठंडी हो जाती है, तो बाप कहते शरीर ठंडा पड़ गया, इस सारी की सारी। तो वहां वेद के अंतर्गत कहा कि वसुहो पवित्रमसि, तुम सारे वसुओं को पवित्र करने वाले हो, और यही है अविद्या, हम इसी चीज को जान पा रहे नहीं। और इसको जानने तो आ जाती है विद्या, अब ये विद्या अविद्या इसी को लेखे प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म अधर्म आदि। अब यहां संकेत ये कर रहे हैं कि ये विद्या अविद्यात्मक धर्मों वाला जो ये जीवात्मा सारे वसुओं को पवित्र करने वाला, और भगवान ने गीता में भी अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन भी अविद्या को लेकर के ही शोक से ग्रसित हुआ, तो भगवान ने जब फटकार लगाई तो क्या कहा, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, क्या कहा, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, माने तू अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग कर। और दुर्बलता क्या है, तो दुर्बलता है अविद्या। यदि उसके अंदर ये विद्या आ जाए, ये ज्ञान आ जाए कि इन वस्तुओं को पवित्र करने वाला मैं हूं, तो क्या होगा। उसके बाद भगवान ने आगे जाके संकेत किया कि नाभिनंदन्ति नैष्कर्म्यम, नाभिनंदन्ति नैष्कर्म्यम और न कर्मसु अनुसज्जते। जब ऐसी विद्या उसके अंतर्गत आ जाती कि मेरा बल क्या है, तब कहने लगे वो जो है नैष्कर्म को लेकर के, कर्म को छोड़ करके भी प्रसन्न नहीं होता, माने कर्म की स्थिति को छोड़ करके भी प्रसन्न नहीं होता, और कहने लगे कर्म में आसक्त भी नहीं होता। ये स्थिति उसकी होती, और ये जब स्थिति होती है तब उसके लिए संकेत कर दिया सुसमो, वही क्या है, सुसमो यह परित्यागी। और ऐसा जो अपने में समन करता हुआ, इस अविद्यात्मक प्रवृत्ति का जो जिसने समन कर लिया है, और ऐसा समन करने वाला जो है वही वास्तव में क्या है, परित्यागी है। और वही क्या है, असंसक्तो, सो असंसक्तः इति स्मृतः, उसी को असंसक्त कहा गया, आसक्ति से रहित कहा गया। और इसके लिए जो निर्देश दिया गया कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, तुम असंग शस्त्र से सो असंगता कब आएगी, असंसक्तता कब आएगी, ये सारे के सारे भेद बतलाए। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है कि पहले तो ये बतलाने जा रहे हैं कि वास्तव में तुम क्या, और यही जो है बात भगवान ने जब प्रारंभ उपदेश किया तो क्या कहा, वेदा विनाशिनम नित्यम यये नमजम अव्ययम, क्या कहा, तुम क्या हो, कहा आत्मा हो, और आत्मा कैसा है, तो कहा नित्य है। और वेद क्या कहता है, कहा ये जिसे तुम जीवात्मा कह के कह रहे, ये जीवात्मा भी कोई सामान्य चीज नहीं है, क्या है, कहा उसी महान आत्मा का अंश ही तो है, मवयु अंश होकर के जो संकेत करते। और जब अंश है तो अंश होने पर क्या है, जो स्थिति उसकी है वही कार्य इसका, जैसे एक महान जो है प्रज्वलित अग्नि जो कार्य करती है वही उसकी चिंगारी भी काम करती, उसके अंदर उष्णता धर्म है तो उस चिंगारी के अंदर भी क्या है, उष्णता धर्म विद्यमान। ठीक इसी प्रकार से जिसे हम महान आत्मा कहते हैं उसके अंदर जो धर्म विद्यमान है वही धर्म किसके अंदर विद्यमान, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। अब विचार करो, जहां पर वेद के अंतर्गत कहा गया नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुं शीष्णो द्यौ संवर्ततो पद्भ्याम भूमिर्दिशा करके संकेत किया गया, तो क्या मतलब, वहां उस विराट पुरुष के वर्णन को करते हुए कहा कि अंतरिक्ष जिसका नाभि है और देव जो है देवलोक स्वर्गलोक आदि जो है जिसका सिर है और पैर ही जिसके भूलोक है पृथ्वी लोक, तीनों लोकों की कल्पना कर दी। ठीक इसी प्रकार से जो शब्द कहा जाता यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जैसा वहां पिंड में वैसा ही ब्रह्मांड में, जैसा ब्रह्मांड में वैसा पिंड। तो यहां पर भी संकेत करते हैं तो देवानाम पू करके संकेत कर दिया वहां वेद में कि ये जो मस्तिष्क है वही क्या है, समस्त देवताओं का वास है, वही एक स्वर्ग की तरह से है। अब जो है कब, तो पू शब्द का प्रयोग किया, जब मस्तिष्क के अंतर्गत पवित्रता रहती है माने विद्यात्मक स्थिति होती है तब वो स्वर्ग है, और जब उसी मस्तिष्क के अंतर्गत अविद्यात्मक स्थिति हो जाती है तब वही क्या हो जाता है, और नरक शब्द का अर्थ क्या है? नरक शब्द का अर्थ जीव है वो क्या है? तो नर शब्द है, और नर शब्द से अल्पार्थक का प्रत्यय होता है। तो जो नर को अल्प बनाए, जो नर को परिच्छिन्न बनाए, उसका नाम नरक है। और नर को परिच्छिन्न बनाने वाला कौन है? तो अज्ञान। अज्ञान अविद्या ही नरक है, और विद्या ही स्वर्ग है। अब ये जब चीज हमारी समझ में आ जाती है कि वाहन वायु कहां है, तो जो विराट का वर्णन किया गया उस आकाश में, और उसी का अंश रूपी वायु कहां है? कहा जो जीवात्मा का हृदय है वहां तक जाती, उसकी नाभि में वही विद्यमान है, और श्वास के द्वारा बाहर जाती। लेकिन अब करना क्या है? उस महान वायु के द्वारा हमारी जो इस परिच्छिन्नता में आने वाली वायु यदि असिद्ध हो जाती हो, फिर मान में जाती है तो फिर शुद्ध होकर के आती है और अपने को शुद्ध करती है। ये नियम है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उस महान वायु से जब हम अपनी वायु को मिला देते हैं तो उसमें बल आ जाता है। उसमें क्या आता है? वो बलवान हो जाती। और इसी प्रकार से केवल वायु ही नहीं, ये प्राणायाम की प्रक्रिया भी इसीलिए बतलाई गई। इसी प्रकार से जब हम अपने नेत्र के द्वारा देखते हैं, और उसका नेत्र क्या है? तो सूर्य ही उसका नेत्र। उसका नेत्र क्या है? सूर्य। और सूर्य के होने पर ही हमारा नेत्र देखने में समर्थ होता है, और सूर्य का जो प्रकाश नहीं होता है तो नेत्र देखने में अंधकार में समर्थ भी न्यूनता आ जाती। तो जब हम अपने इस न्यूनता को उसका जो स्रोत है उससे एकीकरण करने लगते हैं, और ये समझ लेते हैं कि उसी का ये अवयव, उसी का अंश है, उससे ये भिन्न नहीं है, तो क्या होता है? तो कहने लगे उसका जो है बल इसको प्राप्त हो जाता। तो अब इस प्रकार से यहां कहते हुए कहा कि ये जो है जीवात्मा है, ये भी कैसा है? बल संपन्न है। लेकिन बल संपन्न कब रहता है और निर्बल कब हो जाता? तो अविद्या को लेकर के ही इसमें निर्बलता, और विद्या को लेकर के ही इसमें बल। और जब इसके जीवन में यह विद्या आती है, और जब वो जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि जो अवस्थाएं हैं, बाल्या युवा वृद्धा आदि अवस्थाओं का अनुभव करते हुए जब ये देखता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, तभी उसके जीवन में क्या आता है? असंसक्तता आती है। और उससे पहले असंसक्तता नहीं आती। और क्या यूं कहने कि जीवन में विद्या आती, और विद्या आती है तो वो समझ लेता है, तब उसके अंतर्गत कर्म को छोड़ देने से, कर्म को न करने से वो प्रसन्न नहीं होता, और कर्म को करने से वो उसमें आसक्त भी नहीं होता। कब? जब विद्या आती। लेकिन हम यदि कहें कि कर्म को हम छोड़ देंगे और प्रसन्न हो तो इससे क्या है, हम निष्कर्मी हो जाएंगे? कहा यह संभव नहीं। असंसक्त तो हो जाओगे? कहा संभव नहीं। और कर्म को करने से आप जो है उसमें आसक्त हो जाओगे? कहा ऐसा भी नहीं। लेकिन इन दोनों के मध्य में हमें क्या देखना होगा? तो ये देखना होगा कि वास्तव में जब इसके अंदर वसुओं को भी पवित्र करने वाला जो आत्मा, जिसे हम जीवात्मा करके कहते, उसके बगैर यह शरीर में कोई भी पवित्रता रह जाती नहीं। उसके होने पर ही ये पवित्र रहते हैं, उसके होने पर ही इसमें जो भी क्रिया हो रही है वो बल को प्राप्त होती है, और उसके न होने पर कोई भी क्रिया बल को प्राप्त नहीं होती। ये सिद्ध होता है, क्योंकि हमारी प्राण वायु भी महान वायु को लेकर के ही प्रबल होती, और आत्मा होता तभी वो करने में समर्थ होती। तो ये सारा का सारा बल किसको लेकर के है? तो आत्मा को लेकर के। अब जिस आत्मा को लेकर के है, उस आत्मा का हमें रूप पता चले कि वो आत्मा क्या है। तो आत्मा क्या है? तो इसके लिए गीता में, उपनिषदों में सर्वत्र क्या कहा कि आत्मा जो है नित्य है, आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो अब जब आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, तो उसका कभी नाश तो होना नहीं, उसका कभी अभाव तो होना नहीं। अभाव किसका होना है? तो कहने लगे आत्मा में जो आरोपित है। इसी को लेकर के जागृत अवस्था का भी अभाव देखा जाता है, स्वप्न अवस्था का भी अभाव देखा जाता है, सुषुप्ति का भी अभाव देखा जाता है, लेकिन इन अवस्थाओं को धारण जो करने वाला उसका, अवस्थाओं को जो धारण करने वाला है उसका अभाव देखा जाता नहीं। उन अवस्थाओं को लेकर के जो अहम को धारण करने वाला है, ध्यान दो, जो मैं हूं इस वृत्ति वाला है, इस अहम को धारण करने वाला है, इस अहम का भी तो अभाव देखा जाता। विचार क्या करना है, इस अहम का भी अभाव उस सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत देखा जाता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, जो वस्तु आने वाली है, जो जाने वाली है, वो कैसी है? कहा वो विनाशी है, अनित्य। आगमा पायनो अनित्य हो, क्या है? जो आने वाली और जाने वाली है, आगमा पाई है, वो कैसी है? कहा अनित्य है। तो ये अहम कैसा हो गया? तर्क के अनुसार हम देखें, जब इस अहम का भी वहां पर जो है अभाव होता है, तो ये जो अहम है वो कैसा है? अनित्य हो गया। लेकिन अहम जिसमें आता है, जैसे कल कहा था, वस्त्र आपने धारण किया, तो आप तो हो लेकिन वस्त्र नहीं रहता हमेशा, आप धारण करते तब रहता है, फिर दूसरा धारण कर लेते, ये सब देखा जाए। ऐसे ही अहम को भी धारण किया गया, और अहम को धारण किया गया तो वो जिसने धारण किया वो तो क्या है, रहता है, लेकिन अहम कभी रहता और कभी जागृत आदि में तो रहता है, लेकिन सुषुप्ति में अहम नहीं रहता। तो ये जो अहम करके हम जो अपने को जानते हैं, ये जानना ही क्या है? अविद्या है। ये जानना ही क्या है? अविद्या। लेकिन अहम का आधार जो है, अहम का आश्रय जो है, जिसको लेकर के अहम प्रस्फुटित होता है, वही क्या है? कहा वो है आत्मा, वो है नित्य, और वो जो नित्य है, ऐसे उसको जान लेने का नाम ही है क्या? विद्या। उसका नाम क्या हुआ? कहा विद्या। और ये जब विद्या आ जाती है तो किसको जाना? तो कहने लगे जो अहम को धारण करने वाला, अवस्थाओं को धारण करने वाला। और एक दिन कहा था, हम धारण करते किस लिए? कार्य विशेष के लिए, एक खेल विशेष के लिए, एक लीला विशेष के लिए, सारी चीजों को हम धारण करते हैं, लेकिन उन्हें धारण ही नहीं किए रहते और तदरूप हम नहीं होते, उनको हम उतार देते हैं, हम उससे सर्वथा पृथक होते। लीला के अंतर्गत जो भी वस्त्राभूषण व्यक्ति धारण करता, तो व्यक्ति वस्त्र आभूषण नहीं है, किंतु उन वस्त्र आभूषणों से सर्वथा पृथक। वो वस्त्र आभूषण सुशोभित कब होते? यदि उसके शरीर पर आते हैं वो धारण करता, तब तो शोभा को देते, लेकिन केवल वस्त्र आभूषण रखे रहे तो सुशोभित होंगे, तब उनकी शोभा नहीं होती। उनकी शोभा भी कब होती है? जब उनको धारण किया जाए। लेकिन उनके अंतर्गत है अनित्यता, और वो धारण करने वाला वो नहीं है, ये सिद्ध होता। ठीक इसी प्रकार से इन वस्तुओं आदि को धारण करके इन्हें पवित्र करने वाला जो है, वो है क्या? आत्मा। और वही है क्या? तुम शब्द से कहा जाने वाला, तू, वही अहम शब्द से कहा जाने, संकेत उसकी तरफ। लेकिन अहम करके हम जिसको, जो आभूषण मात्र को लेकर के हम ले रहे हैं, या जो है हम शरीर मात्र को लेकर के ले रहे हैं, वो अहम कैसा है? वो अनित्य। तब अहम सत्य कौन है? तो जो आत्मा में ही यदि अहम का प्रबोध हो जाए, जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहते, मैं ब्रह्म ही हूं है, जैसे लीला करने वाला कह दे। वो संत लोग एक उदाहरण देते हैं कि एक बुद्धू नाम था व्यक्ति, और उसे रामलीला में कर दिया गया, और रामलीला में कर दिया गया, उसे एक पात्रता दे दी गई, वो पात्र बन गया। उधर जो है जब युद्ध हुआ तो रावण ने हुंकार भरी, और हुंकार भरी, और जैसे ही रावण उस पर टूटा तो वो कहने लगा, नहीं मैं तो बुद्धू हूं है। क्या मतलब? क्योंकि वैसे तो अब जो है, जैसे उसका अभिनिवेश किसमें है? ऐसे ही हमारा अभिनिवेश किस में है और कहां पर हमारी स्थिति है, ये बस विद्या अविद्या का रूप है। और ये चीज हमारी समझ में जब आ जाती है तो प्रकृति भी हमको जो है इसका संदेश देती है, लेकिन उस प्रकृति से भी हम समझ पाते नहीं। और जब प्रकृति का हम विचार करने लगते हैं तो बात समझ में आ जाती है, और जब बात समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता, तो ये होता है, तो सारा जगत हमारे लिए खेल रूप हो जाता है। और खेल रूप हो जाता है तो खेल रूप होने पर खेल में जो भी हमने धारण किया था या जो भी हमने रूप लिया था, उस रूप में हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। हम क्या जानते हैं, वहां हमें बोध होता, मैं तो अमुक व्यक्ति हूं, ये तो रूप मैंने धारण किया। लेकिन दुखद स्थिति वही हो जाती है जहां उस रूप में आसक्ति हो जाए। उस रूप में आसक्ति का होना ही हमारे लिए दुखद है, और उस आसक्ति में कारण क्या है, अविद्या अज्ञान।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Acha. Acha. Acha. अरे दस हजार एक पांच करोड़ दस करोड़ बरस पहले की बात बताता है। पांच दस करोड़ पहले जीव ऐसा था, इस वैसा था, विकास हुआ कैसा हुआ। तो ऐसा कौन सा प्राणी है जो खाने पीने का ज्ञान न हो, ऐसा कौन सा प्राणी है परिवार में आसक्त न हो, ऐसा कौन सा प्राणी है सोना जागना जानता न हो। ज्ञान तो सबका, खाने पीने का ज्ञान, सोने जागने का ज्ञान, संबंधियों का ज्ञान सब में है, परंतु ये ज्ञान तुम्हारा अज्ञान को नाश नहीं करेगा, ये ज्ञान तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान नहीं कराएगा, ये ज्ञान तुम्हारे अविद्या का नाश नहीं कराएगा। विद्या अविद्या निहंती है वह, जैसे सूर्य का प्रकाश होने से रात्रि का अंधकार मिटता है, तो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। अन्य बात, ऐसे स्वरूप विषय के अज्ञान को नाश करने के लिए वेदांत विज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए शास्त्र में लिखता है, सदा विचारयेत, हमेशा विचार करते रहो। क्या विचार करे, जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, ये विचार करते रहो सदा करो। क्यों, बिना विचार से ज्ञान होने वाला नहीं है। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधन यथा पदार्थ भावना में प्रकाश है न बिना कोशित। रात्रि के अंधकार में पड़ी हुई है कोई वस्तु है, उन वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश। क्यों, बिना प्रकाश से आज कुछ नहीं होगा। वो प्रकाश कहाँ से आएगा, अंधकार से प्रार्थना करो, अंधकार तू चला जा, दिया धूप दियो, दीप दियो, सामग्री लगाओ, प्रार्थना करो, ओम जय जगदीश हरे करो, अंधकार मिटेगा। अंधकार का जो विरोधी होगा वही अंधकार को मिटेगा, दूसरा को नहीं मिटाएगा। दिया तो चलाना पड़ेगा, अंधकार का मिटाना होगा तो नहीं बात। तो अंधकार को मिटाने के लिए एकमात्र साधन आपके पास है क्या, प्रकाश। अंधकार को मिटाना हो तो है नहीं बात, और कोई साधन आपके पास आए नहीं, कर्म करो, प्रार्थना करो, है नहीं बात, समाधि लगाओ, इससे कोई अंधकार मिटेगा नहीं। अंधकार कहते हमको मिटाना हो तो हमारे विरोधी को बुलाओ, प्रकाश को बुलाओ, तो प्रकाश बैठे है ना। समझेंगे नहीं तो इसीलिए विचार चाहिए। तो पूछा शिष्य ने क्या विचार करे, हम तो खाते पीते बिना विचार से सब भोजन भी नहीं करते हो, खाने वगैरह खाने के सामान के भी विचार करना पड़ता है, खाने योग्य है कि नहीं है, है? खाने के हम एक बार नेपाल गए काशी से हवाई जहाज में बैठने के लिए, तो हवाई अड्डा में जो गए तो वहां 2 घंटा लेट है गाड़ी हवाई जहाज आने का, तो उन्होंने खाने की व्यवस्था किया, ऊपर जाओ ऊपर उधर अभी 12 बज गया 1 बज गया आपको खाने के लिए वहां बुला रहे, तो अरे सब यात्री जोर जोर जोर जोर जोर कर ऊपर गया, ऐसा मालूम पड़ता गया ऐसा जोर से चला धक्का बक्का धक्का, वहां रखा है टेबल में ऐसा ऐसा ये दाल है चावल है फलन है आइटम का है बहुत से आइटम रखा, तो माताएं क्या कर रही एक दूसरे को धक्का देकर इधर से ले भी इधर से ले भी इधर से ले भी, एक ने वहां गोश्त रखा है मीट रखा है तो माता ने वो ले लिया वे ले लिया ये ले लिया उस जब खाने लगे गब्बास मारता है क्या सीजाई क्या सीजाई, मैंने कहा देखा अभी वो समय लेने के गया देखा नहीं क्या सीजाई खाने से जो है कि नहीं है लेने से जो है कि नहीं है वो नहीं देखा, तो मतलब कहने का मनुष्य को खाने के पर भी विचार करना पड़ता है ये खाने लायक है कि नहीं है, खाने से है कि नहीं है ये विचार करके खाते हैं, और बहुत से आदमी मनुष्य तो विचार कम करते पशु ज्यादा विचार करते, पशु पशु गाय के सामने घास रखो ऐसे सूंघेगा फिर जीभ मारेगा, और कुत्ता को रोटी या बिस्कुट डालते हमने देखा हमारे वहां बहुत से मारवाड़ी है, सुबह उठ करके हम घूमने जाते हैं ना तो वो भी जाते हैं बिस्कुट का थैला ले करके जाते हैं तो कुत्ता को देता है तो कुत्ता सूंघ सूंघ करके फेंक दे खाता नहीं, मैंने कहा कैसा है, मैंने कहा कंजूस है, कंजूस का बिस्कुट कुत्ता भी नहीं खाता है। हाँ हाँ आप देख लेना कभी कंजूस का बिस्कुट तो होते है ना रोटी, और रोटी देता है नहीं खाता, गाय के गाय को रोटी देता है बासी रोटी ला करके देते है ना, तो रात को खाया नहीं है बासी बच गया होगा, सुबह बहुत से आदमी गाय को देता है तो गाय की पड़ती है फिर छोड़ देती है, और 10 दिन का 10 दिन का बासी रोटी वही खाएगा जिसको खाने को नहीं मिलता, तो खाएगी कैसे उसको भी विचार होता है खाने लायक है कि नहीं है, तो खाने लायक है वो खाएगा। अरे देखो भूख लग जाए खा जाना वो आफत काल है, क्या उपनिषदों में भी बात आई है, हाँ उशस्त्र नाम के जो उशस्त्र चाक्रायन नाम का जो ऋषि था वो अपने देश में कुरु देश में जो अकाल पड़ा तो अपने पत्नी को लेकर के चल पड़ा, तो एक जगह में ऐसा आया जो वहां भी अकाली था एक जो है ना वो हाथी चलाने वाला हाथी गान हाँ उड़द का दाल खा रहा था, उड़द का दाल और कुछ नहीं मिलता था, वो अभी झूठा है तो उससे कहा हमको थोड़ा दाल दे, बोले तो झूठा है कैसे दूं तुमको तुम ब्राह्मण हो, बोले इस समय तो तुझे दे मेरा प्राण बचाना है, तो खाया फिर पानी दिया पिया नहीं, बोले क्यों झूठा है, बोले दाल झूठा झूठा नहीं था, तो झूठा दाल तो तुमने खा गया और झूठा पानी नहीं पी सकते, बोले नहीं क्यों पानी सब मिलता है अन्न नहीं मिल रहा था इसीलिए खाया, तो विपत्ति काल में मर्यादा नास्ती, विपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती, आप ट्रेन अभी देखो अभी तो ट्रेन में सब व्यवस्था फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गया वो एसी हो गया, सब व्यवस्था है। पहले हमने देखा गाड़ी में जो आए ना, जो सुराही रखते थे पानी के लिए, सुराही कुंजा, सुराही या कुंजा कहते, कुंजा भी कहते, सुराही भी कहते। अच्छा, जहां गाड़ी रुक गई है ऐसी जगह में, पानी खत्म हो गया सुराही का, कुंजे का, तब उस समय गांव वाला ऐसे गंदा बात्रा में पानी लाता है, लो पानी एक रुपया, पहले एक रुपये में देता था, एक एक है ना मटका, अभी वो देखने में आंख बंद करना पड़ता है, तो उसको कहते इसमें डाल दे, तो उसमें डाल करके लाते हैं पीने के लिए, तो वहां अगर पीता है, वहां नहीं पीता, वहां पीने के लायक नहीं होता है, तो उस अवस्था में वो पानी पीते हम, आपातकाल है, तो आपातकाल में मर्यादा नास्ती, वहां मर्यादा नहीं चलेगा, आपत्ति काल में प्राण निकल रहा है, उस समय क्या करोगे, भूख से प्राण निकल रहा है, भूखा आदमी है, उस समय भलाई खा लो, जब आपत्ति काल नहीं है तो खाओगे क्या है? तो चलो, कहने का मतलब ज्ञान जो है ना उत्पन्न होता है विचार से, नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधन ही, अन्य साधन कर्म उपासना भक्ति आदि कोई भी हो, ये ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, याद रखना। ज्ञान उत्पन्न होगा केवल विचार से, वो कौन सा विचार करोगे, वेदांत वाक्यों का विचार करो, श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य मंतव्य उपपत्ति भी मत्वा सततम धे एते दर्शन हेतवः। श्रुति भगवते कहती है श्रोतव्यम, सुनना चाहिए, किम श्रोतव्यम श्रुति वाक्यभ्य, तुम सुनो सुनो सुनो, क्या सुने, टीवी सुने, रेडियो सुने, भाषण सुने, फलाना सुने, ढेमका सुने, क्या सुने, तो कहते हैं श्रुति वाक्यभ्य, श्रुति का वाक्य श्रवण करो, श्रोतव्यम श्रुति वाक्यभ्य, श्रुति का वाक्य श्रवण करो, एकमेव अद्वितीयम नेह नास्ति किंचन, सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्तमसि अहम अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, ऐसे वाक्यों का श्रवण करो, श्रुत्वा श्रवण करने के बाद मनन करो, मंतव्य मनन करो, कैसे, युक्ति के द्वारा, कहने मात्रा से नहीं, युक्ति ये समय प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् परिच्छिन्नत्वात् घटवत्, ये युक्ति है, तर्क है, युक्ति माने तर्क के द्वारा, हम जो बात को सुना है उसकी वास्तविकता सत्यता को निश्चय कैसे करेंगे, युक्ति के द्वारा, आनी बात, तो युक्ति के द्वारा तुम इसको मनन करो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया, सत्य क्या से जाए, ज्ञान क्या से जाए, अनंतता क्या से जाए, ये सब श्रवण करने के बाद इस पर विचार करो, मत्वा सततम दे, मनन करने के बाद में निश्चय हुआ इसका ध्यान में बैठ जाओ, अहम ब्रह्मास्मि में, आनी बात, इसीलिए सदा विचार है, हमारा विचार करो, देह को देह आत्मा है कि नहीं, विचार करो, देह आत्मा है कि नहीं, क्यों, ना हम देह ना हम जीवा, मैं देह भी नहीं हूं, मैं जीव भी नहीं हूं, तो तुम देह नहीं हो, देह तो तुम्हारा है कि नहीं, आप देह नहीं है, मैं मान लिया, क्यों देह नहीं है, देह इसीलिए नहीं है, देह जड़ है, मैं चेतन हूं, देह जड़ है, मैं देह विकारी है, मैं निर्विकार हूं, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, आनी बात, देह क्या है, दृश्य है, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, जहां जहां दृश्यता होगी वहां वहां मिथ्या होगा, यथा सुक्ति रततम, सुक्ति में सुक्ति को हमने चांदी के रूप में देखा, परंतु क्या मिल गया? चांदी मिला क्यों? तो चांदी तो देखा, सुक्ति क्यों नहीं मिला, चांदी क्यों नहीं मिला? वहां चांदी वहां प्रातिभाषिक है, भास रहा अन्य में, अन्य वस्तु को देखना इसका नाम मिथ्या। तो तुमने आत्मा में देह को देखा, तो आत्मा के संबंध से देह चेतन हो गया, आत्मा के संबंध से देह चेतन भास रहा है। जैसे देखो एक गुड़ है, गुड़ गुड़ के साथ संबंध जिस वस्तु का होगा, गुड़ उसी को मीठा बनाएगा कि नहीं? शक्कर है, और शक्कर को तुम चाय में डालो, दूध में डालो, हलवा में डालो, जिलेबी में डालो, रसगुल्ला में डालो, गुलाब जामुन में डालो, कहीं भी डालो, तो शक्कर का काम है सबको। अगर शक्कर ने मीठा नहीं बनाया तो शक्कर ही नहीं है। जिसने जिस शक्कर ने दूसरा को मीठा नहीं बनाया वो शक्कर ही नहीं है। ऐसे जिस चेतन ने, आत्म चेतन ने मिथ्या को सच्चा सा प्रतीत नहीं कराया, वो चेतन ही नहीं है। तुम चेतन स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारे संबंध से तुम्हारा देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सब चेतन बन गया। वास्तव में चेतन तुम्हारे संबंध से, तुम्हारे सत्ता से सत्तावान होकर के अनिगत ये शरीर, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि काम करता है, चेतन होता है। ऐसे संपूर्ण जगत प्रपंच मात्र में एक ही चेतन है। जिस चेतन से पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता, गुल्म आदि सब के सब भास रहा है, भास रहा है, सत्ता के रूप में भास रहा है, आनी बात चेतन के रूप में भास रहा है। तो इन सब के अंदर कौन से सत्ता है, कौन सी वस्तु है जो सबको चेतन भास रहा है, चेतन प्रदीत करा रहा है? आत्मा, आत्मा। ऐसे तुम्हारे इस शरीर के अहम अहम है, अहम होने के कारण तुम्हारे आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, नाक सूंघता है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि चलता है, और अहम नहीं है तो असुसुप्ति अवस्था में तुम्हारा अहम कहाँ जाता है, या शरीर क्यों नहीं काम करता है? कभी देखा, कभी विचार किया, हम सो करके कहाँ जाते हैं? सोने के बाद में सुसुप्ति में आप कहाँ जाते हो? तीन अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, मूर्छा अवस्था। कमा माने मूर्छा, मूर्छा अवस्था है नहीं बात। आज जैसे सुसुप्ति अवस्था है, समाधि अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था में तुम रहती हो कि नहीं रहती हो? तो हाथ पैर काम क्यों नहीं करता है? सुसुप्ति अवस्था कौन, अविद्या में कौन लीन हुआ? शरीर अंतकर अविद्या में, शरीर तो पड़ा हुआ है मुर्दा जैसे, चिदाभास। हाँ, जीव नहीं रहता उस समय, समझे कि नहीं? जीव अपने कारण में लेन रहता है। सुसुप्ति काले सकले बिलीने तमो विभूत सुखरूप में थी, जीव सैव जागर सबिति प्रबुद्ध, सैव जीव, वह जो जीव है जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पाना दे विचित्र हो गई, सैव जागृत सपति प्रबुद्ध सुसुप्ति काले सकले बिली सपने भी जीव सुख दुख भोक्ता, सैव जागृत सपति प्रबुद्ध। जैसे जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पाना दे नाना प्रकार के भोगों से तुम तृप्त होते हो, ऐसे सपना अवस्था में नाना प्रकार के भोग तुमको मिलता है, स्वप्न में भी सुसुप्ति काले विलीन हो जाता है, कारण वो सब अविद्या में लय हो जाता है, आनी बात अज्ञान में लय हो जाता है। अज्ञान में लय होने के कारण उस अवस्था में आपका इंद्रिया काम नहीं करते, इंद्रिया काम नहीं करते, क्यों? ये इंद्रिया तमाम इंद्रिया अपने कारण में अविद्या में लीन हो जाते हैं। देखने में ये इंद्रिया देखती है, इंद्रिया नहीं है, इंद्रियों का गोलक है ये। ये जो आंख कान नाक आदि है ना, ये गोलक है, गोलक इंद्रियों की वृत्ति की आने जाने की रास्ता है। देखो जब आंख टेस्ट कराने जाते हो ना, आंख दिखाने जाते हो, तो डॉक्टर लोग सामने शीशा रखता है, देखो देखो, हाँ पढ़ो, तुम्हारा क्या है ना, लेंस लगा था ना, क्या आपको काम हो गया कुछ? नहीं, एक रे आता है ना, रे किरण निकलता है ना, लेजर रे किरण निकलता है, वो रास्ता बंद हो गया कहता है, वो रास्ता आप नहीं आएगा कहते, आग तुम्हारा बिल्कुल चला गया। तो मतलब है कहाँ से, भीतर से आता है कि नहीं प्रकाश, आंख के द्वारा बाहर जाता है, जैसे टर्स लाइट आते कि नहीं, टर्स जामर, तो टर्स से बल्ब से प्रकाश बाहर जाता है कि नहीं, टर्स होते है ना, ऐसे मानते हैं बैटरी, हाँ टर्स शीशा से बाहर जाता है, वहां तक शीशा है एक, शीशा में प्रकाश कहाँ से आता है, बल्ब से, बल्ब कहाँ से आता है, बल्ब अपने आप जलता है, वो बैटरी सेल से, सेल के साथ इसका साथ संबंध करते हो, कनेक्शन जोड़ते हो कि नहीं, स्विच दबाते हो कि नहीं, तो सेल में जो प्रकाश है वो तुमको देखता है, क्या देखेगा, हाँ आपके सेल में प्रकाश है कि नहीं, है दिखता नहीं, क्यों? तोड़ करके देखो कहाँ है, तोड़, हाँ तो बल्ब

नमः वारिवस्कृताय नमः उच्चैर्घोषाय नमः घोररूपाय नमः पत्तीशाय नमः पाशा

ईध्रियाय नमः, वृद्धश्रमणाय नमः, जातुकरुणाय नमः, पुरुष्टुताय नमः, आतप्याय नमः, वायवे नमः, अजराय नमः, वात्याय नमः, कात्यायनी प्रियाय नमः, वास्तव्याय नमः, वास्तुपाय नमः, रेश्म्याय नमः, विश्वमूर्ध्ने नमः, वसुप्रदाय

नमः दूरेवधाय नमः वदाय नमः शंभवे नमः मयोभवाय नमः नित्याय नमः शंकराय नमः कीर्तिसागराय नमः मयस्कराय नमः शिवतराय नमः खंडपरशवे नमः।

नमः मोक्षदाय नमः पथ्याय नमः अनर्थघ्ने नमः सत्यसंगराय नमः षष्ठ्याय नमः फेन्याय नमः प्रवाह्योड्डाय नमः सिकत्याय नमः सैकताश्रयाय नमः हिरण्याय नमः ग्रामण्ये नमः पुण्याय नमः शरण्याय नमः शुद्धशासनाय नमः वरेण्याय नमः यज्ञरूपाय नमः यज्ञेशाय नमः यज्ञनायकाय नमः यज्ञकर्त्रे नमः यज्ञभोक्त्रे नमः यज्ञविघ्नविनाशकाय नमः यज्ञकर्मफलाध्यक्षाय नमः यज्ञमूर्तये नमः अनातुराय नमः प्रपथ्याय नमः किंशुकाय नमः मेध्याय नमः गृह्याय नमः तल्प्याय नमः धनाकराय नमः पुलस्त्याय नमः क्षयणाय नमः गेह्याय नमः गोविन्दाय नमः गीतसत्क्रियाय नमः हृदयाय नमः हृद्यकृते नमः हृद्याय नमः गह्वरेष्ठाय नमः प्रभाकराय नमः निवेश्याय नमः नियताय नमः यन्त्रे नमः पागुंसव्याय नमः प्रतापनाय नमः शुष्क्याय नमः हरित्याय नमः पूतात्मने नमः रजस्याय नमः सात्विकप्रियाय नमः लोप्याय नमः उलप्याय नमः पर्णशद्याय नमः पर्णपूर्णाय नमः पुरातनाय नमः भूताय नमः भूतपतये नमः भूयसे नमः भूधराय नमः भूधरायुधाय नमः भूतसङ्घाय नमः भूतमूर्तये नमः भूतघ्ने नमः भूतिभूषणाय नमः मदनाय नमः मादकाय नमः माद्याय नमः मदघ्ने नमः मधुरप्रियाय नमः मधवे नमः।

नमः विष्णुवल्लभाय नमः कमलासनकालाग्नये नमः कमलासनपूजिताय नमः कालाधीशाय नमः त्रिकालज्ञाय नमः दुष्टविग्रहवारकाय नमः नाट्यकर्त्रे नमः नटपराय नमः महानाट्यविशारदाय नमः विराड्रूपधराय नमः धीराय नमः वीराय नमः वृषभवाहनाय नमः वृषाङ्काय नमः वृषभाधीशाय नमः वृषात्मने नमः वृषभध्वजाय नमः महोन्नताय नमः महावक्ष्याय नमः महावीराय नमः महाभुजाय नमः महास्कन्धाय नमः महाग्रीवाय नमः महावक्त्राय नमः महच्छराय नमः महाहनवे नमः महादंष्ट्राय नमः महादोष्टाय नमः महोदराय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम ओम। आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी

ప్రణతం చైశ్వర్యమభ్యాహతం. దక్షిణామూర్తి కా ప్రసంగ చల్ రహా హై. భగవాన్ కి జో మాయా శక్తి హై ఉస్ మాయా శక్తి కి చల్తే बड़े से बड़े विचारक और विद्वान भी व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं. परिणाम ये होता है कि जो वस्तु जैसा है पारमार्थिक, उसको उसी रूप में अनुभव नहीं कर सकते. व्यामोह, माया का व्यामोह है ये. अन्यथा अन्यथा निश्चय करते हैं और यही कहते हैं कि यही मेरा सिद्धांत सत्य है, यथार्थ है. भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भ्रांत पुरुष यदि कोई कह दे कि ये बात सही है तो समझदार पुरुष को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं. भ्रांत पुरुष कोई कह दे कि ये बात सही है तो समझदार पुरुष को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं, नहीं कहना चाहिए. मदिरा के नशे में धुत हुआ हुआ व्यक्ति यदि कोई कह दे कि यह बात है तो नशा रहित व्यक्ति, होश वाला व्यक्ति को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए. फिर क्या करना चाहिए? बोले सभी नशे वाले हैं और सभी यही बात करेंगे तो फिर क्या करना चाहिए? अरे भाई, कोई ना कोई तो एक होश वाला होगा ना. ऐसा तो नहीं है कि जगत में सभी नशे वाले हैं. यदि सभी नशे वाले हैं तो ये सब नशे वाले हैं कहने वाला कौन होगा? हैं? सभी नशे वाले हैं तो फिर ये नशे वाले हैं ये बात कहने वाला कौन होगा? एक तो होश वाला होना चाहिए कि नहीं? हाँ, सबके सब माया के व्यामोह में पड़कर अन्यथा अन्यथा करके निश्चय करके वाद विवाद कर रहे हों तो उन वाद विवाद के बीच में कोई निर्विवाद यथार्थ सत्य को बताने वाला सामने आना चाहिए. और जब सामने वाला आता है और कह देता है कि ये वस्तु तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ये सही है, तब वो बात उन नशे वाले को भी स्वीकार करनी पड़ेगी, तब जब उनके नशा उतर जाता है. तो यही है, सबसे पहले नशा उतारना पड़ेगा. सही बात समझाने के लिए भी होश वाले व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, होश वाले व्यक्ति को, नशेड़ियों को सही बात समझाने के लिए भी सबसे पहले उनका नशा उतारना पड़ेगा, तभी उसको सही बात समझाया जा सकेगा. नहीं तो होश वाला व्यक्ति लाख कोशिश करे, नशा उतारे बिना सही बात समझाने के लिए वो सफल नहीं होगा. तो कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी, नहीं जवाहरलाल नेहरू जी पहले बार रांची गए, कहते हैं है ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद देखें तो सही रांची में उस जेल में रहने वालों का हाल क्या है. रांची में तो पहले तो एक ही हॉस्पिटल था, है ना, रांची में मेंटली हॉस्पिटल, पागलों का हॉस्पिटल था वो पागल खाना. तो वो उसका निरीक्षण करने के लिए चले गए, कहते जब वो अंदर घुसे तो सब पागल लोग हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे. किस लिए हंसने लगे तो पूछा तो बोले एक और पागल आ गया. तो पागलों के समाज में समझदार भी पागल ही होता है, है? इसलिए नशेड़ियों के समाज में होश वाला व्यक्ति भी नशेड़ी ही होता है. तो उनकी बात होश वाले व्यक्ति को अपनी बात समझानी हो तो उनके नशा को उतारे बिना समझाने लगे तो लाख कोशिश करे नहीं समझा पाएगा. तो सबसे पहले उनको उसके नशे को उतारना होगा, तब फिर उसको अपनी बात समझानी होगी. और नशे के उतर जाने के बाद हर व्यक्ति बात समझ जाता है.
ऐसी बात नहीं है कि नशे उतर जाने के बाद न समझाओ, समझ जाता है। ये प्रसंग ठीक लगभग इसी प्रकार का है। ये जो छठा श्लोक है आज की जो व्याख्या श्लोक है छठा, राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादना सन्मात्र करुणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्त पुमान प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इससे पहले ये बात पांचवें श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी ने ये कह दिया है, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह, उस व्यामोह के चलते सभी लोग अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, अन्यथा होता हुआ आत्मा को अन्यथा ही मानता है, सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा को असत जड़ दुख रूप और द्वैत रूप मानने लग जाता है। इसका कारण क्या है? माया शक्ति विलास कल्पित महासम्मोह, इसी के चलते ऐसा हो रहा है। तो उस समझदार गुरु जो दक्षिणामूर्ति गुरु मूर्ति हैं, शिव हैं या गुरु हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सही बात को समझाने के लिए उसकी नशे को उतारते हैं, व्यामोह संहारिणी। भगवान शिव की कृपा हो तब ये अनादि व्यामोह, अनादि व्यामोह उसका संहार होगा, ये जड़ से ये नशा उतरेगा। भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तब जाकर जड़ से ये नशा उतरेगा। गुरु नानक कहते हैं कि दो प्रकार के नशे हैं जगत में, गांजा भांग अफीम मद, गांजा भंग अफीम मद उतर जात प्रभात। ये जो चार नशे हैं ये तो शाम को सेवन करो सुबह उतर जाता है, लेकिन एक नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ा तो फिर कभी नहीं उतरता। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो तो न रात में उतरता है न दिन में उतरता है, एक बार चढ़ना है, बार बार चढ़ना भी नहीं है, एक ही बार चढ़ना है। और ये और जो चार नशे हैं तो बार बार सेवन करो बार बार उतरता है, बार बार सेवन करो बार बार उतरता है। इसी प्रकार के ये माया मोह रूपी जो नशा है वो एक बार चढ़ा था जीव को, पता नहीं कब चढ़ा था, ये तो न जीव को पता है न शिव को पता है, पता नहीं कब चढ़ा था, एक बार चढ़ा था बस, अनादि सृष्टि है। शिव को जीव मानने की जो मान्यता है वो भी अनादि है। आपने अपने को जीव कब से मानना शुरू किया है? आपने अपने को जीव कब से मानना शुरू किया? अनादि है, इसलिए अनादि मोह माया है। ये ऐसा चढ़ गया है कि ये अपने आप उतरने वाला नहीं है, चढ़ तो अपने आप गया है लेकिन उतरेगा नहीं अपने आप, कोई उतारने वाला होना चाहिए, इस नशे को उतारने वाला कोई होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया गीता में, दैवी है सा मम माया दुरत्या गुणमयी, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये अपने आप छोड़कर जाने वाली नहीं है, इसको तो तुम चाहो कि मैं छोड़ू तो भी नहीं छूटने वाली है। होता है ना, आप लोग शादी करते हो तो कभी कोई गलत स्त्री के साथ विवाह हो गया, उसके साथ जीवन व्यतीत करना दुभर हो गया, कठिन होने लगा,
तो मां बाप चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, छूट जाए, तलाक हो जाए। लेकिन कानून यह है कि एक तरफ से होता नहीं है, दो तरफ से होनी चाहिए। तो अभी तो शायद कानून में कुछ सहूलियत कर दिया, ऐसा कुछ दिन पहले के पेपर में था। तो यदि सामने वाले भी राजी न भी हो तो पेपर सबमिट होने के बाद उसको लंबाया जा नहीं सकता, एक तरफी फैसला करके भी डिवोर्स हो सकता है, ऐसा कुछ संशोधन कर रहे हैं, ऐसा सुना है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, या अन्यथा नहीं लेना माताओं, फिर आप लोग ऐसा नहीं लेना, क्योंकि यहां माया का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए मैं माया के बारे में कह रहा हूं। तो आप भी पुरुष हैं, है? इसके सामने, माया के सामने तो आप भी पुरुष हैं, और वो माया आपकी स्त्री है, और क्योंकि वो आपसे चिपक गई है, आप डिवोर्स लेना चाहते, वो मानती नहीं है, है ना? आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो मानती नहीं है, आप चाहते हैं कि छूट के चला जाए, ये इसके साथ मेरा जीना दुभर हो रहा है, कठिन हो रहा है। माताओं, आप लोगों का ऐसा हो रहा है कि नहीं, बोलो, है? उसके साथ शादी करके पश्चाताप हो रहा है कि नहीं? न जाने कब शादी किया था, किया, वो मरती भी नहीं है, है? न वो मरती है न छोड़ती है, मर जाए तो भी झंझट छूटे। नरसिंह मेहता ने कहा, इस तरह प्रसन्न हो गए वो, भलो थयो भागी जंजाल, मर गई तो अच्छा हुआ। और ये स्त्री ऐसी जबरी है कि न मरती है न छोड़ कर जाती है, अब क्या करोगे भाई? तो हैरान पड़, तब फिर एक ही उपाय है, भगवान ने कहा ये तुझे अपने अब छोड़ के भी नहीं जाएगी, और तू यदि उसको धक्का मारकर निकालना चाहेगा तो नहीं जाएगी। फिर महाराज इससे कैसे छुटकारा होगा? तो गीता में कह दिया है, दैवी ऐसा मम माया गुणमयी मम माया दुरत्यय माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरे शरण में यदि तू आ जाएगा तब फिर मेरे इशारा से ये छोड़ देगी, क्योंकि ये जो माया है मेरी माया है, माया मेरी है, तूने न जाने कब भोगने के लिए अपना अपना लिया था, हमने कहा कि तू अपना रहा है, इसके द्वारा सुखी होता है तो हो ले, है? तूने पहले विचार नहीं किया कि इसको अपना से पहले ये किसकी है, हम भी यही करते हैं, उसको अपनाने से पहले विचार नहीं किया कि ये किसकी है, उसी समय विचार किया होता तो आज ये पश्चाताप न होता, सुखदेव को नहीं हुआ, उन्होंने विचार किया किसकी है, है? उन्होंने कहा कि तो परमात्मा की है, परमात्मा की है तो फिर मैं कैसे इसका भोगूं, इसको मैं कैसे अपना सकता हूं, दूसरे की चीज मैं यदि जबरदस्ती इसको अपनाऊंगा तो मुझे दुख होगा, अशांति होगी। तो सुखदेव जी ने कहा कि जिसकी है उसी के पास रहे, हमारे पास ना आवे यही अच्छा है, हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं मिला उसको, नहीं मिला तो सुखी हो गए, वो हुए कि नहीं, सुखदेव सुखी हुए, है? और हमें पता नहीं कहां से हमारी मति मारी गई थी, किस दिन हमारी मति मारी गई, कैसे मारी गई, ये भी हमको पता नहीं है, किस दिन मारी गई ये भी हमको पता नहीं है, क्यों मारी गई ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन मारी गई, हमने अब दूसरे की चीज को चाहा और फंस गए, अब क्या करोगे? तो रो उसके सामने, किसके सामने? बोले जिसकी है उसके सामने, जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसके सामने रोने से फायदा नहीं, वो तो और हंसेगा। तो ये कहा ना गीता में भगवान ने, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है तो वो व्यक्ति इससे आराम से छूट सकता है, माया मेताम एताम मायाम ते तरन्ति ते, आराम से वो छुटकारा मिल सकता है उसको, उसको पता ही नहीं चला गया कि ये माया कब चली गई, भान ही नहीं होगा, चली जाएगी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के संकल्प से परिचालित है। तो ये ईश्वर की कृपा से ही व्यामोह का संहार होगा,
तो ऐसे जो व्यामोही हैं उन लोगों के मत मतांतर को यहां पूर्व पक्ष के रूप में शंकराचार्य जी ने उठाया। ऐसे व्यामोहियों में से शून्यवादी बौद्ध और क्षणिकवादी बौद्ध, बौद्ध का ये दो भेद हैं, एक शून्य को यथार्थ मानने वाले पारमार्थिक मानने वाले, असत को अभाव को शून्य को सारे जगत का उपादान कारण मानकर उसी शून्य से सारा जगत उत्पन्न हुआ ऐसे मानने वाले, दूसरे लोग नहीं क्षणिक विज्ञान को मानने वाले, क्षणिक आत्मा, आत्मा क्षणिक है ना। तो ये दोनों के मोह को भंग करने के लिए शंकराचार्य जी ने इस छठे श्लोक में बड़े सुंदर युक्तियों से उनके व्यामोह को भंग किया है। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान प्रागप्स्वाप्समिति प्रबोध समये या प्रत्यविज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। सबसे पहले दृष्टांत दिया, आप दृष्टांत समझोगे तब सिद्धांत यानी दृष्टांत को आसान से समझ पाओगे। इसलिए वेदांत की प्रक्रिया है कि हर बात को समझाने के लिए कोई न कोई दृष्टांत उपस्थापित करते हैं, दो चीज तीन चीज का प्रयोग करते हैं वेदांत। सबसे पहले तो श्रुति के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण सगवर और प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं, उससे नहीं बना तो श्रुति प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं अपनी बात स्थापित करने के लिए, सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए। दूसरी बात उस श्रुति के अनुसार दृष्टांत को प्रस्तुत करते हैं, और दृष्टांत का शब्द का अर्थ ही होता है आपके द्वारा देखा गया को प्रयोग करना, आपके अनुभव में आए हुए को प्रयोग करना, इसका अर्थ होता है दृष्टांत। दृष्ट अंत सिद्धांत दृष्टांत, आपके अनुभव में आए हुए युक्तियों का प्रयोग करना, आपने देखे हुए को ही प्रयोग करके न देखे हुए को समझाना। देखो न देखे हुए को दिखाने का उपाय क्या है, देखे हुए का प्रयोग करना, देखे हुए का प्रयोग करके न देखे हुए को दिखाना है, अनुभव में आए हुए को प्रयोग करके अनुभव में न आए हुए का को अनुभव में लाना है, इसको कहते हैं दृष्टांत। यहां सबसे पहले शंकराचार्य जी ने दृष्टांत दिया, वो पौराणिक दृष्टांत, आज का वैज्ञानिक दृष्टांत नहीं है, ये वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं मानते, पौराणिक दृष्टांत। ये दृष्टांत कोई वैदिक भी नहीं है, कोई आधुनिक भी नहीं है, ये दृष्टांत पुराण काल का पौराणिक दृष्टांत है। आप लोगों को आपके नाना नानियों ने दादा दादियों ने सुनाया ही होगा, समुद्र मंथन हुआ था, ये भी कहानी सुनाया होगा ना, और उन्होंने नहीं सुनाया होता आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुराणों में पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। एक बार की बात है कि पृथ्वी में कोई ऐश्वर्य नहीं था, जो ऐश्वर्य थे वो 14-14 ऐश्वर्य रत्न वो सब के सब देवताओं के अपराध से चलते पृथ्वी से वह पाताल में चला गया था। ये भी नहीं कि देवलोक में था, देवताओं के अपराध के चलते, गलती के चलते, दुरुपयोग के चलते ये 14 रत्न 14 रत्न पाताल में चले।

0: गरीबी खत्म करना ही नहीं है। किसको? कोई राजकारणी हो तो फिर नाराज नहीं हो जाना, ये राजनेताओं को गरीबी खत्म करना ही नहीं है। गरीबी खत्म हो गई तो राजनीति खत्म हो गई है। तो इसीलिए उनको तो चाहे 500 रत्न आ जाए तो भी देश को गरीब बनाए ही रखना है, उनकी उनके फायदे में, उनके हित में, क्योंकि राजनीति करने को मिलती है। तो चला गया समुद्र में, अब क्या करें? रत्न रहित है, ऐश्वर्य रहित है, और उसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है किसको? तो देवताओं को। तो देवता लोग छटपटाने लगे, गए भगवान नारायण के पास, महाराज हम क्या करें, देखो हमारे सारे ऐश्वर्य गायब हो गए, सारे रत्न गायब हो गए, हम निरीह हो गए हैं, कुछ नहीं है हमारे पास।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kari Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankar Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम और एक महान संत या शिव भक्त की कहानी सुनेंगे जिनका नाम कारियार है। तिरुकड़ूर में जन्मे कारियार का पेरिय पुराणम में अपना अलग स्थान है। अपनी विद्वता और काव्य रचने की योग्यता द्वारा उन्होंने धन अर्जित किया और उससे शिव मंदिरों और शिव भक्तों की सेवा की। कारियार को तमिल भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने ललित, सुंदर और सार्थक पदों की रचना की और संकलन का नाम कारिकोवई रखा। वे अपनी काव्यकृति के अंश चेर चोल और पांड्य राजाओं को सुनाते, उनकी प्रशस्ति प्राप्त करते और इस प्रकार जो धनराशि प्राप्त होती उससे वे मंदिर निर्माण करवाने का नेक काम करते थे। संतों की सेवा और दान धर्म द्वारा वे शिव आराधना करते थे। तमिल के संघकाल में से पूर्व ही पानर, वीरलियर आदि कवि हुए हैं जिन्होंने राजाओं की प्रशस्ति आदि द्वारा धन अर्जित किया। काव्य के अनेक प्रयोजन हो सकते हैं। सत्ता में स्थित नरेश या नेता की प्रशस्ति गायन द्वारा तत्कालीन लाभ प्राप्त करना उनका एक रूप है। संघकालीन काव्यों में तिरुमुरुगार, तरुपेड़ई और परिपाडल के अतिरिक्त अन्य काव्य प्रायः इसी कोटि के हैं। 7वीं शती में तमिल कविता को अपर, तिरुज्ञान संबंधर आदि ने नवीन दिशा दी। मनुष्यों की स्तुति के स्थान पर परमतत्व ईश्वर की स्तुति का विकास हुआ। नर स्तुति को कवि के स्वाभिमान पर कलंक माना गया। 8वीं शताब्दी में सुंदरमूर्ति नायनार ने झूठों की प्रशंसा वर्जित की। मनुष्य का स्वभाव है विविध रूपों में चिंतन करना। कोवई ग्रंथों में मानव को नायक मानकर रचना की गई है। हमारी कथा के नायक कारियार ने माध्यम तो मानव की प्रशस्ति गाने को बनाया पर उससे प्राप्त धन संपदा को श्रेष्ठ धार्मिक कार्यों में व्यय किया। मंदिर निर्माण, संत सेवा आदि में अपनी समस्त अर्जित संपदा लगा देने के लिए प्रिय पुराण में उन्हें 63 श्रेष्ठ भक्तों में स्थान मिला। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
5: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by

ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दैया प्रायोजित परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला अंतर्गत शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए 74वां श्लोक। आशा पास क्लेश दुर्वासनादि

0: आशासाटी कस्य पादारविन्दम् चेतापेटिं वासितां मे तनोतु कल्याणीनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वेङ्गितम् सर्वेङ्गितज्ञाम् अनघम् ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेता समस्तजगताम् वृषभाधिरूढ भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसन्ति कादम्बनीव कुरुते परितोषवर्षम् सम्पूरितो भवति यस्य मनस् तटाग तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत् बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्म सक्ताबधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहितेव शिवमन्त्र जपेन विन्ते आदिगुरु सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। आशा पास क्लेश दुर्वासनाधि वेदो दुक्तेर दिव्य गंधई अमंदही आशा साटी कस्य पादारविंदम चेता पेटिम वासिताम मे तनोतु। एक दृष्टांत से आप इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। आपने एक कमरा बना रखी है घर के लिए, आपको समझ में आवे वो दृष्टांत बता रहा हूं। संयोग से एक हफ्ते के लिए आपको बाहर जाना था और कमरा बंद करके ताला लगाकर जाना था। निकलने से पहले, कमरा ताला लगाने से पहले उस कमरे में एक बिल्ली घुस गई थी। आपको समझ में आए वो दृष्टांत दे रहा हूं। बिल्ली घुस गई थी, अपने उसके बारे में ख्याल नहीं रखा और हतार में फटाफट दरवाजा बंद कर ली, ताला लगा दिया और चल पड़े आप। तो वो बिल्ली चिल्लाने लगी थोड़ी देर के बाद। जब बाहर निकलने की कोशिश किया बिल्ली ने तो कहीं निकलने का रास्ता तो मिला नहीं और चिल्लाने लगी। सुनने वाला कौन है भाई, घर में तो कोई है ही नहीं, ताला लगा दिया, निकलने का रास्ता नहीं है। अब कमरे में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर एक दिन दो दिन तो वह चिल्लाती रही। बाद में किसी अलमारी के कोने में छुपकर मर गई। होता है ना, चूहा मर जाते हैं, छिपकली मर जाती है ना, तो हमने बिल्ली कह दिया और क्या, तो मर गई। अब वो बिल्ली सड़ गई, मरने के बाद तो सड़ना अनिवार्य ही था। पूरा का पूरा कमरा दुर्गंध से भरा हुआ है। जब आप हफ्ता 10 दिन के बाद अपने घर लौटे, ताला खोली और उस कमरे के अंदर घुस गए, तो क्या आनंद आया होगा आपको? नहीं है? आया होगा ना आनंद? दुर्गंध से उस कमरे के अंदर घुसने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। अब करें क्या? ये क्या हुआ? तो पता लगाया कि भाई कुछ न कुछ मरा है। क्या मरा है, कहां मरा है, खोजने लगे तो अलमारी के बीच में वह बिल्ली का अवशेष सड़ा हुआ अवस्था में, सड़े हुई अवस्था में मिल गया। तो पता चल गया ना कि ये बिल्ली मरने के कारण पूरा कमरा दुर्गंध हुआ है। तो अब क्या करोगे? आपके घर में यदि नौकर चाकर हो तो उनको कहोगे कि इसको निकाले फेंको और सफाई करो, और आपके नौकर चाकर न हो तो उसकी सफाई करने का काम खुद को है, खुद ही करना पड़ेगा भाई। तो बड़े मुश्किल से नाक में पट्टी बांधी, हाथ में झाड़ू लिया, उस मरे बिल्ली के सब अवशेष, सड़े हुए अवशेषों को हटाना जरूरी था। तो अपने हाथ से निकालकर ले जाकर बाहर फेंक दिया डब्बे में, घर से बाहर। उसके अवशेषों को तो फेंक दिया, लेकिन कमरे के अंदर दुर्गंध तो यथावत ही है। तो अब क्या करोगे बोलो? उस दुर्गंध को मंद करने के लिए तीव्र सुगंधित द्रव्यों को लाकर छिड़काव करोगे। यही करते हो कि नहीं? बढ़िया अगरबत्ती जलाओगे या कोई बढ़िया इत्र वगैरह, सेंट वगैरह चारों तरफ कमरों में छिड़कोगे। तब बढ़िया सुगंधित द्रव्य के तीव्र वासना से कमरे में विद्यमान दुर्वासना, दुर्गंध को तुम निस्तेज करोगे। हटाओगे तो क्या हटाएगा, जाएगा तो कहां जाएगा, निस्तेज करोगे वो। ये तो हो गया दृष्टांत भाई। शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा इसी भाव को प्रकट करते हैं। जहां तुम रह रहे हो वो कमरा, जिसके लिए इन्होंने, शंकराचार्य जी ने चेतह पेटी कहा। हालांकि हमने कमरे का दृष्टांत दिया है, यहां शंकराचार्य जी ने एक मंजूषा, बक्से का दृष्टांत दिया। चेतक पेटी, पेटी माने मंजूषा, बक्सा। अब उसी का दृष्टांत ही लागू कर लो। संयोग से कोई बक्सा था आपके पास, किसी दिन कपड़े जल्दी निकालने के चक्कर में फटाफट कपड़ा तो निकाल लिया, कपड़े निकालते ही फट से बंद करना था तो तुमने खुला छोड़ दी उसको। घर में एक छोटी सी चुहिया जो है दौड़ती थी, दौड़े दौड़े आपको, अब ये पेटी के साथ मेल खाएगा वो दृष्टांत, अब समझ लो। उसी तुम्हारे बक्स में, उस पेटी में घुस गई वो चुहिया, अब कपड़े के पीछे आराम से छुप के बैठ गई। कुछ दिन के बाद तुमको बाहर जाना था अमेरिका, है ना, लंदन जाना था, अमेरिका जाना था, तो अटल जी को अच्छी तरह बंद कर दी, कमरे को बंद कर दिया। अब वो चुहिया तो उस पेटी के अंदर ही बंद। अब इस बीच में वो मर गई चुहिया। 15 दिन के बाद जब वहां से आए और पेटी खोला तो मरी हुई चुहिया के चलते सारे कपड़े, वो पेटी दुर्गंध से भर गया। ये क्या है भाई, एक एक कपड़ा खंगाला तो चुहिए के, मरे हुए चुहिए के अवशेष मिल गए, उसको तो फेंका, लेकिन पेटी स्वयं ही दुर्गंध से भर गई, कपड़े सब दुर्गंध से भरे हैं। अब संयोग से बढ़िया जो सूट उसी कपड़े में रखा था, शाम को पार्टी में जाना था और दुर्गंध से भरा हुआ कपड़ा, उसको पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे बोलो, अपने कोई ही दुर्गंध से भरा है तो लोग तो कहेंगे। उसके दुर्गंध को मंद करने के लिए उससे तीव्र सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करोगे। दृष्टांत समझ में आया ना, तो पेटी में भी वही सुगंधित द्रव्य छिड़काव करोगे। अब एक पेटी तुम्हारे पास है, उस पेटी का नाम क्या है, चेतह पेटी, सबसे नीचे लाइन में चेतह पेटी का। वो दुर्गंध से भरा हुआ है, दुर्गंध के कारण क्या है, दुर्गंध के कारण ऊपर बता दिया पहले लाइन से, आशा पास क्लेश दुर्वासनादि, आशा रूपी पास से बंधा हुआ है, आशा ही पास, आशा पास, और क्लेश पंच क्लेश, महर्षि पतंजलि का वो सूत्र को याद कर लो, क्लेश का अर्थ पांच भेद का क्लेश है वो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेश, ये पंच क्लेश हैं, यही वो चुहिया है, समझे कि नहीं। अब चुहिया भी एक तो बड़े बड़े चूहे होते हैं, दूसरे छोटी छोटी चुहिया होती हैं, एक और छछंदर बोलते हैं, समझे नहीं, लंबा मुख वाला, हाँ सेब चूहे के जैसे ही होता है लेकिन उसके मुख लंबे होते चोंच, और चूहा जैसे तेज नहीं दौड़ता, वो थोड़ा गति उसकी मंद होती है, ऐसी मान्यता है कि उस चूहे को भले मार लो, छछंदर को नहीं मारनी चाहिए, और यह भी मान्यता है कि छछंदर कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करते, न कपड़े काटते हैं न कुछ काटते, वो घूमते रहते हैं, इधर उधर का कहीं गिरा हुआ है वो तो खा लेंगे छछंदर, लेकिन उसकी एक विशेषता है, वो जहां भी चलेगी छछंदर शरीर से दुर्गंध छोड़ते हुए चलती है, चूहे में दुर्गंध नहीं निकलता, छछंदर में तो जिधर गई कि वो दुर्गंध है, विशेष करके उसको किसी ने देख लिया और वो डर गई तो उसने दुर्गंध छोड़ा शरीर से, तो वैसे ही है ना, दुर्वासना दुर्गंध। आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, नहीं लगेगा लहसुन और कांदा की सब्जी खाकर जब चलते हो तो डकार आता है तो भी दुर्गंध आता है कि नहीं? जो नहीं खाता है उसको तो आएगा। आपका ड्राइवर है वो बीड़ी सिगरेट पीता है और तुरंत कोने में बैठकर बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, तुमने कहा चलो, वो फटाफट उसने बीड़ी सिगरेट फेंका और आगे सीट में बैठकर स्टार्ट किया, उसी के बगल में तुम बैठे तो उसकी बदबू आती है। तो इसी तरह तो है, आशा पास अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का नाम आशा, इष्ट वस्तु प्राप्ति की अभिलाषा यही आशा है। महाभारत में एक श्लोक आया है, संसार में जीवों को जीने का एक ही आधार है आशा, हर व्यक्ति उसी के आधार पर जी रहा है। ये आशा खत्म हो जाए तो व्यक्ति जी भी नहीं पाएगा। मरते दम तक भी जीने की आशा है, उसी के चलते लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, है ना? यह निश्चित है कि मरने की तैयारी है, मरेगा जरूर, मरने दो ना, मरना तो ही है, गीता पढ़ी है, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से च, अब मरने की तैयारी है, मरने दो, मन नहीं मानता, अंतिम दम तक हम कोशिश करें, उपचार करें, क्या पता ठीक हो जाए, क्या पता उस औषधि ठीक हो जाए, क्या पता ये करने से ठीक हो जाए, क्या पता ये करने से ठीक हो जाए। एक बहुत वृद्ध थे बेचारे, अच्छे वेदांति थे, बहुत पुराने सत्संगी और वेदांति और अद्वैत वेदांति, शंकर वेदांति के बड़े निष्ठावान व्यक्ति, 90 साल के लगभग उनकी उम्र हो चुकी है। तो जब हम काठमांडू से आए, यहां प्रवचन शुरू किया, तो उनको फोन किया हमने, तो वह हॉस्पिटल में भर्ती किया है, आईसीयू में भर्ती है। तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया, हमने कहा फलाना भाई कैसे हैं? बोले महाराज तो ठीक न थी। बोले हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तमें आशीर्वाद आपो भगवान थी प्रार्थना करो, सारू थई जाए पाछा घर आवी जाए, ठीक हो जाए, घर में आ जाए, फिर तुम्हें बुलाएं और साथ में बैठकर खाना खाएं। देखो अब हम क्या कहें, अरे 90 वर्ष का हुआ है, आईसीयू में भर्ती है, उसको अब क्या ठीक होने का है भाई, मरने दो, कहा जा सकता है? कहा जा सकता है? ना हम कह सकते हैं, ना वो कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता है। हमने कहा सारू थई जैसे चिंता न करो, ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाएगा, आएगा। आशा, व्यक्ति आशा से जी रहा है और इसी से बना हुआ है वो। क्लेश दुर्वासनादि, ये 5 रूप क्लेश रूपी दुर्वासना, यही तो दुर्वासना, यही दुर्गंधी है। और ये 5 दुर्वासना चेता पेटी चित्त को दूषित कर रहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। भेदो दुक्तेर दिव्य गंधे रमंदे ही। तो चित्त के ये दुर्वासना को हटाने के लिए क्या करना है? आशा साठी कस्य पादार बिंदम। आशा को साड़ी बनाकर जिसने पहन रखा है, आशा साठी कस्य शब्द कैसा प्रयोग किया है देख लो। साड़ी बोलते हैं ना हम लोग, तो संस्कृत में उसको साटिका, साटी और साटी शब्द अपभ्रंश होकर साड़ी हो गया। मूल शब्द है साटी, तो प्रचलित भाषा में उसका नाम हो गया साड़ी। और सामान्यतः साड़ी महिलाएं पहनती है ना, पुरुष तो नहीं पहनते ना है? चलो धोती को ही साटी कह दो, अब और क्या कहोगे? अब भगवान शिव क्या पहनेंगे है? अरे बाबा, अर्धा नारीश्वर है, आधा साड़ी पहनना पड़ेगा आधा धोती पहनना पड़ेगा कि नहीं? शिव अर्धा नारीश्वर है कि नहीं बोलो ना? आधा महिला है आधा पुरुष है, आधा स्त्री आधा पुरुष, अर्ध नारीश्वर। तो आधा तो साड़ी पहनना पड़ेगा और आधा धोती पहनना पड़ेगा। लेकिन इस झंझट से बचने के लिए भगवान शिव ने क्या किया पता है? न धोती पहनी है न साड़ी पहनी। पहनोगे तो धोना पड़ेगा कि नहीं? मुसीबत बोलो एक टांग में साड़ी पहन लो, एक टांग में पॉइंट पहन लो, फिर कैसा लगेगा भाई? और शिव जी ऐसे करेंगे, बोले झंझट की बात है, छोड़ दो, जाने दो। फेंक दिया साड़ी को भी, फेंक दिया धोती को भी, तो फिर क्या पहन लिया? आशा साठी पहन ली। आशा शब्द का अर्थ होता है आकाश। तो दिगंबर बोलते हो नहीं है? दिगंबर का मतलब क्या हुआ? आशा साठी कस्य है? आकाश को जिन्होंने वस्त्र बनाकर पहना रखा है, ऐसे भगवान शिव दिगंबर। और क्या, जिसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है उसी के शरीर का नाम आशा साटिकस्य आकाश वस्त्र। और उनके आशा साटिकस्य पादार बिंदम, चरण रूपी फूल में ऐसी सुगंध है, ऐसे सुगंध है। दूसरी लाइन से उस फूल के विशेष, दिव्यर गंधे ही अमंदे ही भेद युक्ता। देखो इस फूल में कितनी सुगंध है, लेकिन इस फूल का जो सुगंध है काफी मंद पड़ चुका है। बगीचे से जिस समय उसको तोड़ा होगा तो कितना तीव्र सुगंध होगा इसमें, और कब तोड़ा है, तीन चार दिन पहले तोड़ा होगा, कहां मार्केट कहां कहां से होते हुए यहां आया, तो यहां सुगंध है। तो जिस समय पहले तोड़ा होगा वहां कितनी सुगंध होगी बोलो? अमंदई दिव्यई गंदई, क्या दिव्य सुगंध रहा होगा उसमें। शुभ प्रवचन होता है ऊपर तीन चिड़ माले में, एक बहन नागफणी फूल लेके आती है, रख देती है ना शिवलिंगी, अंदर शिवलिंग रहता है और उसका नाग का फण रहता है, फिर ऊपर चारों तरफ फूल के पंखड़ी का सिंहासन रहता है, क्या सुंदर, क्या बढ़िया फूल है वो, उसमें भी सुगंध बहुत तीव्र है भाई, है बहुत सुगंध है उसका भी। शंकराचार्य जी कहते हैं तुम्हारे चित्तरूपी पेटी में, बक्से में आशा पास से ताला लगाकर बधे हुआ वो बक्सा में पंच क्लेश रूपी दुर्वासना दुर्गंध से इतना दुर्गंधी हुआ हुआ है कि न तुम रह सको न परमात्मा रह सके। और वही चित्त में तुम परमात्मा को बुलाना चाह रहे हो, जब तुमको ही रहना मुश्किल हो रहा है तो परमात्मा कैसे रहेगा। और यदि परमात्मा को बुलाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो दुर्वासना दुर्गंध है पंच क्लेशों के चलते चित्त जो दुर्गंध युक्त हो चुका है, पहले तो उन पंच क्लेशों को हटाओ, मरे हुए चूहे को हटाओ, उसके चलते जो चित्त दुर्गंध हो गया है दूषित हुआ है उसको सुगंध से भरो। तो सुगंध कहां से लाओगे, तो बोले वो शिव के पादारविंद।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.

ऋजं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदय शमनिजो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पति सन्नो भवतु भुवनस्यस्पति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैष्टुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। जैसा कि हमारे आदरणीय गिरीश भाई जी आप लोगों को संबोधित करते रहते हैं कि स्वनाम धन्य बंबई में इस प्रेमपुरी रूपी कल्प वृक्ष के बीजारोपण करने वाले, जिसे हम संस्थापक भी कहते हैं, प्रेमपुरी जी महाराज की यह स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। उपनिषद में बात आती है ह्यात्मज्ञम अर्चयेत भूति काम, उपनिषद का ये मंत्र है। जो लोग स्वाध्याय करते उन्हें श्रवण करने का मौका मिला होगा। यदि आपको भूति का अर्थ है दैवित मानुषवित्त, दैवित और मानुषवित्त हासिल करना है तो विधान किया है आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति काम, ऐश्वर्य की कामना से आत्मज्ञानी की अर्चना का विधान है। क्योंकि श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, अन्यत्र भी आता है, वहां शंका किया है कि आत्मज्ञानी को पाप पुण्य लगते नहीं है, पर ज्ञान होने के अनंतर जो पाप होते हैं पुण्य होते हैं उसका फल किसे मिलेगा। चलता है पैसे चीटी मरेगी, कुछ इस तरह के स्वाभाविक कृत्य होते हैं। तो वहां पर श्रुति कहती है कि जो उसके सेवक हैं, उससे प्रेम करने वाले हैं, साधु कृत्याम उसके पुण्य कर्मों के फल को लेते हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ याग करा रहा है या ज्ञान यज्ञ कर रहा है तो उस ज्ञान यज्ञ की जो महिमा है अनंत फल होता है, उस अनंत फल का अधिकार उसके सेवक या उसके अर्चना करने वाले प्राप्त करते हैं। द्विषंतः साधु कृत्याम, और जो द्वेष ईर्षा करते हैं उन्हें वह पापीय कर्म प्राप्त होता है।
क्योंकि ज्ञानी को पाप और पुण्य कर्म संश्लिष्ट नहीं होते हैं, इसलिए जैसा कि विधान है और इस वर्ष है बड़ा ही सुंदर स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है। अन्यत्र भी श्रुति कहती है कि यज्ञ महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, यज्ञ महोत्सव के द्वारा ब्राह्मीयम का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान की अनुकूल अपने अंतःकरण को संपादित करना चाहिए। हम जब व्रत महोत्सव मनाते हैं उससे हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, इसी के माध्यम से कम हम संसारी काम धंधों को छोड़कर के इधर अग्रसर होते हैं, क्योंकि संसार में इतने काम धंधे जंजाल हैं कि मनुष्य को मौका ही नहीं मिलता है। परंतु जैसे देखो आज अनंत गणेश चतुर्थी है, कहीं नवरात्रि है मनाते हैं, दीपावली है, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, शिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी है, तो ये ऐसे ही एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार जो व्रत करते हैं, इस व्रत उत्सव के माध्यम से हम जो है संसार के कार्यों से जरा विराम प्राप्त करके इधर लगते हैं। ऐसे छोटे बच्चे को जो विद्यालय में नहीं जाता है, साक्षरता की महिमा को नहीं समझता है, उसे हम मिठाई देकर, खिलौना देकर, फुसला करके उधर लगाते हैं। जैसे विद्या की महिमा समझ लेता है वैसे अपने आप जाता है। तो हमारे ऋषियों ने मनुष्यों ने व्रत का यज्ञ का ये जो समायोजन का तरीका बताया है, इसके द्वारा हम अंतर्मुखता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां वयभूत हैं, प्राण चिखाने व्यतिणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्चिदिनांतरात्मन, इंद्रियां स्वभाव से बाहरी विषयों को ही ग्रहण करती हैं, चिंतन करती हैं और हमेशा विषयों को पाने के लिए लालायित रहती है। हालांकि ये विषय बिल्कुल व्यर्थ है, विषय से सुख असंभव है, फिर भी अनादिकाल से सुखाध्यास है। सुखाध्यास का मतलब होता है कि सुखत्व के अभाव वाले संसार में विषय में सुख बुद्धि हो रही है, तो सुखाध्यास से हमारे मन को हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए, यथार्थ ज्ञान कराने के लिए ऋषियों ने यज्ञ याग व्रत उत्सव महोत्सव का विधान किया है, जिसके जरिए हम लोग अंतर्मुखता को प्राप्त होते हैं। और अंतर्मुख होते ही जो जीवन का परम लक्ष्य है आत्मानंद, उसकी झलक मिलती है। तो आइए जो प्रकृति प्रसंग है, हम लोग शिव महिमन के ऊपर विचार कर रहे हैं। छठवां श्लोक चल रहा था, उच्चारण पहले कर लें। अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्र त्यमरवर संशेरत इमे। अजन्मानो लोकः किम अवयवन्तोऽपि जगताम्। पहले इसका शब्दार्थ देख लें अन्वय के साथ, क्योंकि संस्कृत के श्लोक होते हैं उनका अन्वय करना पड़ता है। अन्वय दो तरह होता है, दंडान्वय खंडान्वय। भगवान भाष्यकार अक्सर श्रुतियों का या उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, जहां भी भाष्य लिखते हैं वो जो है दंडान्वय है, खंडान्वय नहीं, मतलब सीधा अन्वय करते हैं सुविधा के लिए। पर श्लोक में तो दोनों होता है, दंडान्वय खंडा। दंडान्वय बोलते हैं डंडा सीधा होता है, सीधे करना, और खंडान्वय मतलब कि आगे पीछे जहां जैसी सुविधा हो। तो यहां पर देखो खंडान्वय दंडान्वय नहीं है। अमरवर संबोधन बिल्कुल नीचे आया है, अंतिम है ना, यह तो मंदास त्वाम प्रत्यमरवर, तो अमरवर को पहले रखना पड़ेगा अन्वय करने के लिए। अमरवर मतलब कि देवताओं में श्रेष्ठ, अवयवंत का अर्थ है जो टूट न सके,
कहा अमरवर नीचे है अव्यंतो ऊपर है, फिर भी अन्वय करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हे देवाधिदेव महादेव, देवताओं से पूज्य, यह जो अवयवंत संसार है, जो अवयव होता है वही जुड़ता है और टूटता है। ये संसार अवयव वाला है, जैसे हमारे हाथ पाद आंख नाक कान सब अवयव हैं, शरीर से जुड़े हैं, अलग भी हो जाते हैं, ऐसी संसार भी अवयव वाला होने से इसका नाश भी होता है। अपि मतलब भी, लोकाकार ये जो आपके 14 भुवन हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, अतल नीतल सुतल गभस्तिमान तलातल महातल पाताल, इस 7 नीचे, और भूर भुव स्व मह जन तप सत्यम, इस 7 ऊपर है, ये 14 जो लोक है। अजन मानह किम, क्या यह बिना उत्पत्ति के हो सकता है? तार्किक आक्षेप करता है तो कहते हैं कि नहीं, असंभव है। जो भी अवयव वाला होता है उसको कोई न कोई बनाने वाला होता है। जगताम भव विधि, जगता मतलब संसार का, भव विधि का अर्थ है उत्पत्ति, सृष्टि क्रिया। अधिष्ठातारम अनादृत्य, अधिष्ठाता जो कार्थे कर्ता, उसका अनादृत कार्थे तिरस्कार करके, उसके बिना किम भवति, क्या संसार उत्पन्न हो सकता है? तो कहते नहीं, असंभव है। वा मतलब अथवा, अनिशा भुवन जन्ने कुरियात, अनिशा मतलब कि ईश्वर से भिन्न, चाहे वह परमाणु हो, प्रधान हो, या शून्य हो, या स्वभाव हो, कुछ भी ईश्वर से भिन्न है, वह क्या संसार को बना सकता है? कहते ये भी असंभव है। और बनाएगा तो कह परिकरा, सामग्रियां क्या होगी? यतः इमे मंदा, जिस कारण से, इमे मल ये जो मंद बुद्धि वाले हैं, ये लोग आपके प्रति, त्वाम प्रति संशयरते, ऐसा अन्वय करना, त्वाम प्रति संशय रते। देखो त्वाम पहले है, संश्रेति में बाद में है, तो आपके प्रति इस प्रकार से संदेह किया करते हैं। ये तो हो गया शब्दों का अर्थ। अब जरा इसके ऊपर हम लोग विचार कर ले। सबसे पहला शब्द है कि यह जो अजन मानो लोका किम अवयवंतो पि जगताम, ये संसार है अवयव वाला, जो भी अवयव वाला होता है वह उत्पन्न होता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके माता पिता न हो। तो इतना बड़ा संसार जो बना है उसके भी कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। जैसे कि एक घड़ा है या मकान है, छोटे से घड़े को भी बनाने के लिए कारीगर की जरूरत पड़ती है। एक मकान को तैयार करने के लिए कुशल कारीगर को ढूंढते हैं। ऐसे ही यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई कारीगर होगा। हम लोगों में से कोई भी सब ब्रह्मांड को बना नहीं सकता है, क्योंकि जो हिमालय की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, ये नदियों का प्रवाह है, इसको जीव बना नहीं सकता है। एक छोटा सा चना है, उस चने को हम धरती में डालते हैं, उसमें से अंकुर निकलता है। उस अंकुर को किसने उत्पन्न किया? नैयायिक लोग अनुमान करते हैं, क्षित्यंकुरम सकर्त्रिकम कार्यत्वाद घटवत। ये क्षिति मतलब पृथ्वी में जो अंकुर उत्पन्न हो रहा है, उसको जो बना रहा है वही ईश्वर है। चाहे वह भले ही हमें दिखाई न पड़े, परंतु नास्तिक लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, ये तो अवयव का पुंज है, परमाणुओं का पुंज है। परमाणु से द्वेणुक हुआ, द्वेणुक से त्रिणुक, पंचाणुक, इस क्रम से ये पृथ्वी बन गई। तो ये जो जैन बौद्ध दार्शनिक है, इनका कथन है कि ये जो है परमाणुओं का पुंज है, उसको संघातवाद कहते हैं। इनका शब्द संघातवाद है, संघात का अर्थ समुदाय हिंदी भाषा में।
तो जैन बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि संघातवाद ये जगत है, परमाणु के समुदाय से संसार उत्पन्न हुआ, इसके लिए अलग से परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर इसको नहीं बनाता है, स्वाभाविक है। सृष्टि ये केवल परमाणु से नहीं बन सकता, जल चीज में तो संभव है, पर जो चेतन मनुष्य है ये चेतन में परमाणु से होना संभव है, ये परस्पर एक दूसरे के अदृश्य से बनता है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। संघातवाद का खंडन हमारे पूर्व मीमांसक जैमिनीय दर्शन करता है, वह कहता है कि बिना अदृष्ट के संसार उत्पन्न नहीं हो सकता है। अदृष्ट बोलते हैं पाप पुण्य धर्माधर्म, जैसे कि हम गाय को घास खिलाते हैं, घास खिलाने के बाद गाय हमें दूध देती है, यदि गाय दूध न दे तो कोई भी घास नहीं खिलाएगा, उसको गौ माता भी नहीं बोलेंगे लोग। ये परस्पर उपकार उपकारक भाव है, गाय को हमने घास खिलाई, गाय ने दूध दिया, तो दूध से हमारा उपकार हो रहा, घास से गाय का। ऐसे ही ये मीमांसक मानते हैं कि जीवात्माओं की अदृष्ट से उस चैतन्य में संकल्प हुआ और उस परमात्मा के अदृष्ट से ये जीवात्मा उत्पन्न हुए, तो जगत का मूल अदृष्ट मानता है, परस्पर उपकार उपकारक भाव, ये पूर्व मीमांसक ऐसा कहा करते हैं। परंतु वेदांत इसके विपरीत कहता है, वेदांत कहता है कि स्वयं ऋग्वेद की श्रुति है, पुरुष एवेदम इदम सर्वम, ये सब कुछ परमात्मा ही है, जितना भी जल चेतन आपको दिखाई दे रहा है ये परमात्मा का स्वरूप, और वास्तव में देखा जाए तो ये जड़ है नहीं, क्योंकि अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, ये वेदांत का सिद्धांत है। दृष्टांत के तौर पर हमारे सिर में जो जू होती ना, जो काटती है, यदि आप उस जू से पूछें कि बताओ भाई तुम कहां रहती हो, तो क्या बोलेगी कि मैं जंगल में रहती हूं। ये जो हमारा बाल है ना, बाल उस जू के लिए बड़ा भारी जंगल है। अब आपके सर में कोई फोड़ा हो जाए तो जू को कोई लेना देना नहीं, उसके लिए एक जंगल है, बढ़िया और हो गया फोड़ा हो गया तो। ऐसे ही अज्ञानियों के दृष्टि से जैसे जू को ये आपका सर और बाल ये जंगल है, पहाड़ है, क्योंकि वह छोटी सी जो जीव है जू, वो आपके पूरे अंग का अनुभव नहीं कर सकती, सामर्थ्य नहीं है। ऐसे जीवात्मा उस व्यापक चैतन्य के सत्ता का अनुभव न होने से ये कहता कि जड़ है और चेतन है। इसी बात को कविकुल तार्किक कालिदास जी ने अपने निबंध में लिखा है, अस्तुत्तरस्याम दिशिदेवतात्मा हिमालयोनाम नगाधिराज, अत्यंत प्रमाणिक श्लोक है। जब भारत का वर्णन करते हैं महाकवि कालिदास जी, तो वे कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में एक साक्षात देवस स्वरूप है हिमालय, जो कि पर्वतों का राजा है, नगाधिराज। हम महाकवि कालिदास जी ने भी हिमालय को जड़ नहीं माना है, बल्कि उसको कहा है कि साक्षात ये चैतन्य का स्वरूप है जो शत्रुओं से रक्षा किया करता है। अंतर्यामी ब्राह्मण में बृहदारण्यक के अंतर्गत जो आता है वहां भी आया है कि यह पृथिव्याम तिष्ठन, यम पृथ्वी न वेद यस पृथ्वी शरीरम तयेश आत्मा अंतर्यामी अमृतः। बहुत लंबा प्रसंग है। अंतर्यामी ब्राह्मण के पाठ करने से जो है कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होता है। हमारे दशम कैलाश पिताश्वर जी महाराज प्रत्येक दिन किया करते थे, कई बार हमने देखा। छोटा सा अंतर्यामी ब्राह्मण है, उसमें बार बार बतलाया है कि वह परमात्मा मतलब कि विशिष्ट और सामान्य रूप से व्यापक है। पहले विशिष्ट वस्तु का चर्चा किया है पृथ्वी आदि का, फिर अंत में कह दिया कि वह सर्वत्र व्यापक है। तो जो पृथ्वी के अंदर परमात्मा है, पृथ्वी जिसका शरीर है, जिसको पृथ्वी देवता जान नहीं पाते हैं,
वही तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं प्रत्येक दिन, और भक्त लोग प्रातःकाल उठने के बाद प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्थम क्षमस्मे, प्रार्थना करते हैं ना। समुद्र तो आपका वस्त्र है, पर्वत आपके स्तन हैं, आप भगवान विष्णु की पत्नी हो, पर मैं मजबूर हूं, क्या करूं, बिना पैर रखे काम नहीं चल सकता है, आप इस अपराध को क्षमा करना। जहां पर हम रात दिन रह रहे व्यवहार कर रहे, उस देवी का भी हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, बस मान करके क्रिया करते हैं। तो विचार कीजिए, कोई चंद्रमा में जाए चंद्र लोक में, और वहां कहे कि चंद्रमा का दर्शन नहीं हुआ, जब बेचारा इतना बुद्धिमान

देता हूं, तब जाकर तू इसका अनुभव कर सकेगा। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, तब जाकर अर्जुन को उस विराट रूप का दर्शन हुआ। विराट मतलब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वत्र चेतन रूपता को से अनुभूति हुई। तो वेदांत का सिद्धांत है कि ये जो जगत है चिन्मय है, ये पूरा ब्रह्ममय है। ये जो आकार प्रकार दिखाई दे रहा, जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर अपने लिए तो ये जो इसमें चैतन्यता अनुभूति प्रतीति है। कहीं इंग्लिश में वो कहानी पढ़ाते हैं ना कि कहीं व्यक्ति सागर के उस पार चला गया तो वहां के बहुत छोटे छोटे जीव चींटी जैसे उसके ऊपर चढ़ गए। बहुत लंबी कहानी है, अंग्रेजी में आती है। तो देखो, उन जीवों के लिए हमारा शरीर पहाड़ बन गया, उनके लिए यही शरीर पहाड़ है। ऐसे ही जितना भी चराचर जगत है परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए वेदांत कहता है कि जगत का कारण अभिन्न निमित्तोपादान ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी हो नहीं सकता। ये वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत तर्क देता है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई माँ बाप न हो, कोई नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि ईसा मसीह बिना माँ बाप के पैदा हुए, पर गॉड को तो मानते हैं ना, उनसे पैदा हुए। आखिर में मजबूर होकर मानना पड़ा कि उनके पिता गॉड हैं, भगवान हैं। तो ये जो संसार है अवयव वाला है, इसलिए इसका भी कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। पारिशिष्या तो इसका कर्ता वह परमात्मा ही है। आगे आता है, अधिष्ठातारम अनादित्य किम भवविधि भवती। उस अधिष्ठाता को छोड़कर जगतकर्ता को क्या यह संभव है कि जगत उत्पन्न हो सके? जैसे कि हम घड़ी बनवाते हैं, तो घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी वाले के पास जाते हैं, उससे कहते घड़ी बना दो। तो क्या बोलता है कि मेरे पास घड़ी बनाने के भी औजार नहीं है, बिना औजार के मैं घड़ी ठीक नहीं कर सकता। वैसे उस वह जो ब्रह्म है परमात्मा है, इस संसार को बनाया तो कौन से हथियार थे जिससे कि संसार का निर्माण किया? ये दूसरे पद से ऐसा शंका किया है। तो यहां पर उत्तर दिया कि वह है माया शक्ति, तब ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य मतलब माया शक्ति से बनाता है। तीसरे तार्किक ने शंका किया, अनिशो वा कुरियाद, ये जीवात्मा ही संसार को बना दे, क्या फर्क पड़ना? इसे हम छोटे हैं, कोई बड़ा भारी हमसे जी होगा, उसने संसार को बना दिया। तो कहते हैं यदि उसने बनाया तो यह बताओ कि जब बनाया तो परिकर क्या था? परिकर बोलते सामग्री को, कौन सा धातु लिया, पदार्थ लिया, इसको लेकर के उस इस ब्रह्मांड को बनाया। और बनाने यदि आप ऐसा मानते जीवात्मा ने बनाया, या जो है कहते शून्य से हो गया, परमाणु से हो गया, क्षणिक विज्ञान से उत्पन्न हुआ, तो फिर चैतन्यता कैसे हो रही है? हमारे पूरे शरीर में चैतन्यता है। यदि हम चैतन्य को कारण नहीं मानेंगे तो चैतन्यता नहीं बन सकती है। रूस में एक बड़ा भारी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कुछ परीक्षण किया। एक कुत्ता को लिया, कुत्ते के पेट में एक यंत्र लगा दिया और दूर एक घंटी बांध दी। ठीक समय से घंटी बजाते 11-12 बजे और उसको भोजन देते। उन्होंने यह परीक्षण किया कि हम देखते हैं कि घंटी के साथ इस कुत्ते के पेट में क्या स्राव होता है। टाइम बांध दिया कि 12 बजे भोजन देना है, शाम को 4 बजे दूध पिलाना है, इसके बाद उसको मांस खिलाना है, 3 टाइम बांध दिया। जैसे ही घंटी बजती, उन्होंने यंत्र के माध्यम से देखा कि कुत्ता कान से घंटी सुनता, सुनने के बाद तत्काल, यंत्रों को हमेशा देखते थे, घंटी सुनते ही उसके पेट में एक विशेष स्राव होता था। जैसे हम लोग कोई नींबू काटता है ना तो देखते हैं तो जीभ में पानी अपने आप आता है, जीभ में जल का स्राव होता है। या सौंदर्युक्त पदार्थ देखे तो मन में मोह होता है, देखा देखी आंख ने रूप को पर मन में मोह हुआ। कोई मान लो हमारा दुश्मन हो जा रहा हो तो देखा हमने आंख से, पर विक्षेप कहां होता है? अंतःकरण में।

0: कि आंख लाल हो जाती है, शरीर तमतमा जाता है। तो यही परीक्षण किया कुत्ते के ऊपर कि जैसे घंटी बजती उसके पेट में विशेष प्रकार से स्राव होता। कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, घंटी तो बजाए पर भोजन न दे, तो स्राव होता था, फिर कुत्ता चिल्लाता था, और बिना टाइम के फिर भोजन दे तो कुत्ता फिर बीमार हो गया। तो विचार कीजिए, आंख पेट से अलग है, कान भी अलग है। आंख ने घंटी सुनी, पेट में विशेष प्रकार से स्राव हुआ, और आंख इधर उधर देख रही है कि भोजन आ रहा कि नहीं आ रहा। तीनों एक दूसरे से भिन्न है, आंख कान से अलग है और ये दोनों पेट से अलग है, फिर भी एक ऐसा चैतन्य तत्व है जो तीनों का संबंध बनाता है, और तीनों के संबंध होने के कारण से एक साथ क्रिया होती है। तो बात धोकर के हमें यह मानना पड़ता है कि जगत कर्ता को एक नियंता है जो चैतन्य है। जड़ को मानेंगे तो संबंध नहीं बन सकता है, परमाणु को माने तो भी इस संबंध बनना असंभव है। इस श्लोक में नास्तिकों के तर्क वितर्क को दिखलाया। अब आप सातवें श्लोक में देखिए, वहां पर ये बतलाएंगे कि आस्तिक लोगों की क्या मान्यता है।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन तैत्रियोपनिषद प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आनंद अंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: भक्त शक्ति संताओ वासल में माताओ स्नेह वेनो आप सर्वबंधु, तो तैत्रीय उपनिषद को लेकर के प्रसंग चल रहा है। ऋषि प्रार्थना करते हुए संकेत कर रहा है कि जो वेदांत का रहस्य है या जो वेदांत तत्व है, ऐसे उस वेदांत तत्व का जिन हमारे पूर्व ऋषियों ने पूर्व आचार्यों ने पद वाक्य के रहस्य को बतलाते हुए और प्रमाण पुरस्सर जिसका निरूपण किया है, जिसकी चर्चा की है, ऐसे उन ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा यहां संकेत किया। थोड़ा सा विचार ये करना है, ये वेदांत और वेदांत को लेकर के सीधा कह दिया जाता है कि तत्वमसी आदि महावाक्य जो है इसके विशेष प्रमाण हैं, कहा तू ही ब्रह्म है। लेकिन ये बात जब हमारे सामने आती है तो हमको ऐसा लगता नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूं। हम सुन लेते हैं और जो है इसकी चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में घटित नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर कहीं न कहीं संशय बैठा रहता। तो इसके लिए ही संकेत ये किया गया कि संसार के अंतर्गत विद्या अविद्या, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये जो दो रूप बतलाए गए वो विद्यमान हैं, और वो जो विद्यमान हैं ये दो रूप वो क्या हैं, तो इनके रूपों को यदि हम समझ लें तो इनके रूपों को समझने पर हमें पता चल जाता है कि वास्तव में मैं क्या है और वो ब्रह्म क्या है। और जब तक इसके दोनों ये रूप हमारी समझ में नहीं आते हैं, तब तक ये बात हमारे जो है निश्चय में नहीं आ पाती। और इसका निश्चय ही होना, निश्चय हो जाए तो सब हो गया, यदि निश्चय नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए अन्यत्र भी शास्त्रों में चर्चा आती, संकेत किया गया कि बसव अष्ट बसव, कितने वसु हैं तो संकेत किया आठ, और आठ वसुओं को बतलाते हुए फिर संकेत किया कि ये जो आठ वसु हैं ये क्या करते हैं, तो सबको बसाने का काम, सबको सत्ता देने का काम करने वाले कौन हैं, तो कहा ये वसु है। क्योंकि जो भी अंतरिक्ष आदित्य चंद्रमा नक्षत्र वायु अग्नि ये जो सब बतलाए गए, पृथ्वी आदि, इनको ही वसु शब्द से कहा गया। और ये वसु जो है वही क्या करते हैं, तो सबको बसाते, सबको बसाने वाले, ये संकेत किया गया। लेकिन एक बड़ी विलक्षण बात कही, वो विलक्षण बात क्या है, तो वेद के अंतर्गत एक मंत्र आया है, उस मंत्र में सबसे पहले यही चर्चा की, वसोह पवित्र मसी। पहला ही उसका शब्द है वसोह पवित्र मसी। जो ये आठ वसुओं के द्वारा ये सारा का सारा संसार बसा हुआ है, लेकिन वो वसु जो है उन वसुओं के लिए पूछा गया तो क्या कहा गया, तो कहने लगे वसोह पवित्र मसी। तो पवित्र मसी और असी क्रिया जो है वो मध्यम पुरुष की क्रिया है, उसके साथ जब कर्ता का अध्याहार होगा तो किसका होगा, तो तुम का होगा, अन्य का अध्याहार नहीं होगा, क्योंकि असी क्रिया है, तो असी क्रिया के साथ में असी क्रिया मध्यम पुरुष की है, इसलिए कर्ता भी मध्यम पुरुष का है। तो जब वहां पर कर्ता का अध्याहार होगा कि बसोह पवित्र मसी, वसुओं को पवित्र करने वाले हो। कहा कौन पवित्र करता है इन वसुओं को, तो वहां पर तुम शब्द का ही प्रयोग होगा। तो वहां इसका अर्थ दिया गया कि तू वसुओं को पवित्र करने वाला, और तू शब्द से हम किसको लेते हैं, कहा जीव को। जहां तत्त्वमसी आदि भी जो वेदांत के वाक्य हैं, वहां भी तू शब्द से किसको लिया, तुम शब्द से किसको ग्रहण करते, तो कहा जीव को। और वहां पर यह कहा गया कि तू जो है वसुओं को पवित्र करने वाला, और क्रम से संकेत कर दिया आगे, देवरसी पृथ्वीरसी मातृस्वनो धर्मो असी, और जो है आगे संकेत कर दिया विश्वधा असी, तू ही क्या है। तो कहने लगे इस देव को पवित्र करने वाला तू है, इस वायु को पवित्र करने वाला तू है, और इसी प्रकार से सभी जो वसु अंतरिक्षादि उनके लिए संकेत कर दिया, और अंत में कह दिया कि जो है विश्वधा या असी, तू ही सारे विश्व को धारण करने वाला, ये वहां मंत्र कहा गया। अब इसको हम देखें ये हमारे जीवन में कैसे, क्या ये जो कथन है वो सत्य है, तो आप विचार करके देखो। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का निर्माण किनके द्वारा है, इस शरीर की सत्ता किसको लेकर के, पंचभूतों को लेकर के, और वो भूत आदि जो है किसको लेकर, तो माने मूल रूप से वसुओं को लेकर के, उसी को कह दिया। तो अब जो वसु जो है उन वसुओं को लेकर के ये शरीर है, लेकिन वह जो वसुओं को लेकर के शरीर है उन वसुओं को भी पवित्रता देने वाला कौन है। जब ये प्रश्न आया तो कहा गया तू, तू का मतलब जीवात्मा, यह जीवात्मा ही क्या करने वाला है, कहा वसुओं को पवित्र करने वाला है। जब तक इस शरीर के अंतर्गत जीवात्मा है तब तक शरीर कैसा पवित्र है, यह सब मानते हैं। और इस जीवात्मा के न रहने पर क्या होता, यह शरीर ही क्या हो जाता, अपवित्र हो जाता। और इतना ही नहीं, इन सारे के सारे वसुओं को या शरीर को धारण करने वाला भी कौन है, तो जीवात्मा। शरीर रूपी जो वसु जो धारण किए हुए हैं, ये वसु भी कब तक हैं और कब तक पवित्र हैं, ये तो कहने लगे जब तक जीवात्मा। और जीवात्मा यदि नहीं है तो क्या होता, तो ये वसु भी बिखर जाते हैं, वो शरीर भी फिर जो है शरीर की स्थिति में रह जाता नहीं, सड़ने लगता है, गलने लगता है, इसकी दुर्दशा होने लगती, ये शरीर भी बिखर जाता, ये संकेत किया गया। अब जो है कहा कि यह जीवात्मा ही किसको धारण किए है, तो आगे ये भी संकेत कर दिया कि देव को भी धारण किए हुए, और जो है वायु को भी धारण किए हुए, तो देव, और देव क्या है, तो देवाह करके वहां संकेत किया गया, पुह माने इसके मस्तिष्क में ही सारे देव विद्यमान, अर्थात जो स्वर्ग लोक भी विद्यमान है, कहा वो भी क्या है, इसका मस्तिष्क है। जब तक मस्तिष्क की स्थिति है तब तक वहां देवत्व है, और मस्तिष्क की स्थिति न रह जाए तो देवत्व भी नहीं। इसी प्रकार से श्वास का आगमन और निर्गमन किसके बल पर होता है, तो कहा उसी जीवात्मा के बल पर, यदि जीवात्मा न हो तो श्वास का आगमन और निर्गमन भी नहीं होगा। और उस वायु को भी उष्णत्व देने वाला कौन है, जो वायु है जो प्राण वायु है उसे भी उष्णता देने वाला कौन है, तो ये जीवात्मा ही। और जीवात्मा यदि उसको उष्णता देना बंद कर दे तो क्या होता है, वायु ठंडी हो जाती है, तो बाप कहते शरीर ठंडा पड़ गया, इस सारी की सारी। तो वहां वेद के अंतर्गत कहा कि वसुहो पवित्र मसी, तुम सारे वसुओं को पवित्र करने वाले हो, और यही है अविद्या, हम इसी चीज को जान पा रहे नहीं। और इसको जानने तो आ जाती है विद्या, अब ये विद्या अविद्या इसी को लेखे प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म अधर्म आदि, अब यहां संकेत ये कर रहे हैं कि ये विद्या अविद्यात्मक धर्मों वाला जो ये जीवात्मा,
4: सारे वस्तुओं को पवित्र करने वाला। और भगवान ने गीता में भी अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन भी अविद्या को लेकर के ही शोक से ग्रसित हुआ, तो भगवान ने जब फटकार लगाई तो क्या कहा, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, क्या कहा, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, माने तू अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग कर। और दुर्बलता क्या है, तो दुर्बलता है अविद्या। यदि उसके अंदर ये विद्या आ जाए, ये ज्ञान आ जाए कि इन वस्तुओं को पवित्र करने वाला मैं हूं, तो क्या होगा। उसके बाद भगवान ने आगे जाके संकेत किया कि नाभिनंदन्ति नैष्कर्म्यम, नाभिनंदन्ति नैष्कर्म्यम और न कर्मसु अनुसज्जते। जब ऐसी विद्या उसके अंतर्गत आ जाती कि मेरा बल क्या है, तब कहने लगे वो जो है नैष्कर्म को लेकर के, कर्म को छोड़ करके भी प्रसन्न नहीं होता, माने कर्म की स्थिति को छोड़ करके भी प्रसन्न नहीं होता है। और कहने लगे कर्म में आसक्त भी नहीं होता, ये स्थिति उसकी होती। और ये जब स्थिति होती है तब उसके लिए संकेत कर दिया सुसमो, वही क्या है, सुसमो यह परित्यागी। और ऐसा जो अपने में समन करता हुआ, इस अविद्यात्मक प्रवृत्ति का जो जिसने समन कर लिया है, और ऐसा समन करने वाला जो है वही वास्तव में क्या है, परित्यागी है। और वही क्या है, असंसक्तो, सो असंसक्तः इति स्मृतः, उसी को असंसक्त कहा गया, आसक्ति से रहित कहा गया। और इसके लिए जो निर्देश दिया गया कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, तुम असंग शस्त्र से तो असंगता कब आएगी, असंसक्तता कब आएगी, ये सारे के सारे भेद बतलाए। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है कि पहले तो ये बतलाने जा रहे हैं कि वास्तव में तुम क्या, और यही जो है बात भगवान ने जब प्रारंभ उपदेश किया तो क्या कहा, वेदा विनाशिनम नित्यम यये नमजम अव्ययम, क्या कहा, तुम क्या हो, कहा आत्मा हो, और आत्मा कैसा है, तो कहा नित्य है। और वेद क्या कहता है, कहा ये जिसे तुम जीवात्मा कह के कह रहे, ये जीवात्मा भी कोई सामान्य चीज नहीं है, क्या है, कहा उसी महान आत्मा का अंश ही तो है, मवयु अंश होकर के जो संकेत करते। और जब अंश है तो अंश होने पर क्या है, जो स्थिति उसकी है वही कार्य इसका, जैसे एक महान जो है प्रज्वलित अग्नि जो कार्य करती है वही उसकी चिंगारी भी काम करती, उसके अंदर उष्णता धर्म है तो उस चिंगारी के अंदर भी क्या है, उष्णता धर्म विद्यमान। ठीक इसी प्रकार से जिसे हम महान आत्मा कहते हैं उसके अंदर जो धर्म विद्यमान है वही धर्म किसके अंदर विद्यमान, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। अब विचार करो, यहां पर वेद के अंतर्गत कहा गया नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुं शीष्णो द्यौ संवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशा करके संकेत किया गया। तो क्या मतलब, वहां उस विराट पुरुष के वर्णन को करते हुए कहा कि अंतरिक्ष जिसका नाभि है और देव जो है देवलोक स्वर्गलोक आदि जो है जिसका सिर है और पैर ही जिसके भूलोक है पृथ्वी लोक, तीनों लोकों की कल्पना कर दी। ठीक इसी प्रकार से जो शब्द कहा जाता यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जैसा वहां पिंड में वैसा ही ब्रह्मांड में, जैसा ब्रह्मांड में वैसा पिंड। तो यहां पर भी संकेत करते हैं तो देवानाम पू करके संकेत कर दिया वहां वेद में कि ये जो मस्तिष्क है वही क्या है, समस्त देवताओं का वास है, वही एक स्वर्ग की तरह से है। अब जो है कब, तो पूह शब्द का प्रयोग किया, जब मस्तिष्क के अंतर्गत पवित्रता रहती है माने विद्यात्मक स्थिति होती है तब वो स्वर्ग है, और जब उसी मस्तिष्क के अंतर्गत अविद्यात्मक स्थिति हो जाती है तब वही क्या हो जाता है, नरक। और नरक शब्द का अर्थ क्या है? नरक शब्द का अर्थ जी है वो क्या है, तो नर शब्द है और नर शब्द से अल्पार्थक का प्रत्यय होता है। तो जो नर को अल्प बनाए, जो नर को परिच्छिन्न बनाए उसका नाम नरक है। और नर को परिच्छिन्न बनाने वाला कौन है? तो अज्ञान। अज्ञान अविद्या ही नरक है और विद्या ही स्वर्ग है। अब ये जब चीज हमारी समझ में आ जाती है कि वाहन वायु कहां है, तो जो विराट का वर्णन किया गया उस आकाश में, और उसी का अंश रूपी वायु कहां है, कहा जो जीवात्मा का हृदय है वहां तक जाती, उसकी नाभि में वही विद्यमान है और श्वास के द्वारा बाहर जाती। लेकिन अब करना क्या है, उस महान वायु के द्वारा हमारी जो इस परिच्छिन्नता में आने वाली वायु यदि सिद्ध हो जाती है, फिर महान में जाती है तो फिर शुद्ध होकर के आती है और अपने को शुद्ध करती है, ये नियम है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उस महान वायु से जब हम अपनी वायु को मिला देते हैं तो उसमें बल आ जाता है, उसमें क्या आता है, वो बलवान हो जाती। और इसी प्रकार से केवल वायु ही नहीं, ये प्राणायाम की प्रक्रिया भी इसीलिए बतलाएगी। इसी प्रकार से जब हम अपने नेत्र के द्वारा देखते हैं, और उसका नेत्र क्या है, तो सूर्य ही उसका नेत्र, उसका नेत्र क्या है, सूर्य। और सूर्य के होने पर ही हमारा नेत्र देखने में समर्थ होता है, और सूर्य का जो प्रकाश नहीं होता है तो नेत्र देखने में अंधकार में समर्थ भी न्यूनता आ जाती। तो जब हम अपने इस न्यूनता को उसका जो स्रोत है उससे एकीकरण करने लगते हैं और ये समझ लेते हैं कि उसी का ये अवयव, उसी का अंश है, उससे ये भिन्न नहीं है, तो क्या होता है, तो कहने लगे उसका जो